पौड़ी सब को आखे अपना सुनाई सोचन कड़ी है किताब अपना पे ही लेखा संडी है जा रहना नहीं है जगता कायद गर्भ हंडी है मंदा किसने आखिए पड़ख रहे बुझिए मूर्ख नाला लुझिए मूर्ख नाला लुझिए।

ਨਾਮ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ।

पौड़िया पे ही करना क्यों कला पे ही तय तारी है। देखे की ता अपना तरक अच्छी पक्की सारी है। जो आया सो चल सी

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस बुध रहा 9870 किलोहर्ट्ज से तय का समय तव आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप एंड डिफरेंट ते बुध सकंदा प्रोग्राम शुरू थी चुको है तफसील कुछ हिंदत रहा थोड़ी देर में तव हमेशा भगत करम साहब के बुधा तैखा कोई तबसरो पेश कंदा पोए कुछ गीत कलाम भजन पेश कंदा खास खास खबरों प्रोग्राम के आखिर में नशर में वेंदी जैसे असा प्रोग्राम की विचूड़ तव आकाशवाणी की सिंधी सर्विस बुध हिंसर अचो तो भगत कोराम साहब जन के मिठड़े आवास में कलाम बुदूँ

भगत कारम साहब जन जे मिठड़े आवाज में कलाम दी रही आकाशवाणी जी सिंधी सरसाई और पेश है तफसरो। अगस्त से भोपाल में भारत जे ब्रिक्स सरबराई तहत यारहें ब्रिक्स सकाफती वजीरन की गर्जियाणी पूरी थी। तहिं में भोपाल ऐलान के अख्तियार कया वो, यानी कि भोपाल डिक्लेरेशन के अख्तियार कया वो। तहिं में एक प्रैक्टिकल ए अगते वधंदड़ ढांचे के खयो वो है, जैं ब्रिक्स मेंबर मुल्कन ए भाईवार मुल्कन मंझ सकाफती ताउन अञा वधीक पुख्तो थे। भारत जे सरबराई तहत ब्रिक्स

0: गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की यात्रा कई तंखा पोए वजारत गजण थी तंखा पोए मेड़ सांची की यात्रा कई जिते उन्होंने बुद्धिस्ट हेरिटेज के डिठो तंखा पोए भौमिक एकता की पण 9 अगस्त से यात्रा रखल हुई जिते यात्रा ते आयल मेड़ भारत के प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर्स के ए सकाफती हेरिटेज के डिठो
1: अफसर बुझी रहा।

0: हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़ ते। तंहिंखां अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो।
1: कुछ कलाम भजन आवाज़ करें कमला झांझण की आवाज़ सां।

आकाशवाणी जी सिंधी सर से पेशेंट खास खास खबरों। बोलविया के अवामी सेहत सेवा में इमदाद देने के लिए भारत 8 मैट्रिक टन जिंदगी बचाने वाली दवाओं मोकलियो हैं। इन चवण है तो अमेरिका से इन वक्त सीधी तरह गाल मेरुदल को फकत इंटरमीडिएट जरिए ज्ञापन की मटसट कर रहा है। इजराइल अमेरिका के 15 नुकतन वाले गाजा अमन रिथा के थुड़े छो है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है तो अमेरिका ईरान खिलाफ नई फौजी कार्रवाई चढ़त के को डी रो है जो अजा ताई स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से छकतान ईरान से हली रही है। अज का वी करे कोची में भारत ए अमेरिका की नेवीज पान में गड़जी करे मशकू कंदियों। वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के बसंत कुमार मेघवाल हाई जंप में चाइनीज बिलो खटो है। होना शाहनवाज खान लॉन्ग जंप में कांस्य जो बिलो खटो है।

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस बुधी रहा हिं असा के प्रोग्राम जो वक्त पूरो थी रो है वहीं असा गडजानी थी सुणी सुबह जो यानी कि भारतीय वक्त मुताबिक 4:30 बजे तेसी तीन ईशा सदाई गड।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेता खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी।
1: जो खेलेगा

0: वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
1: इस अवसर पर युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से मौजूद थे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान कल से शुरू हो गया। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।

0: गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1,00,00,000 से ज्यादा आवास बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले महीने की 31 तारीख को हासिल की गई ये ऐतिहासिक उपलब्धि 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि देश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। उत्तराखंड सरकार ने कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए 20 साल की उत्तराखंड कृषि कार्य योजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है। इस योजना में राज्य के सभी 13 जिले शामिल होंगे। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. शिवेंद्र कुमार कश्यप को परियोजना का समन्वयक नियुक्त किया गया है। भारतीय नौसेना और अमरीकी नौसेना का विस्फोटक आयुध निरोधक ईओडी अभ्यास कल से 14 अगस्त तक दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि में आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं की विशेषज्ञ गोताखोरी और ईओडी टीमों के बीच अंतर संचालन बढ़ाना और पेशेवर सहयोग को मजबूत करना है। हॉर्मुज जलडमरू मुद्दे को लेकर जारी तनाव के बीच अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के प्रति संयम बरत रहा है और फिलहाल कोई नया सैन्य हमला करने की योजना नहीं है। ट्रंप ने कहा कि ईरान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, उसके पास अपने सैनिकों को वेतन देने के लिए पर्याप्त धन भी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि अमरीकी नौसैनिक नाकेबंदी ने ईरानी सरकार की आर्थिक चुनौतियां बढ़ा दी हैं। रूस ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए हिंद महासागर और भारत तक रेल मार्ग विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। रूस के उप प्रधानमंत्री मराट खुसरोलिन ने कहा कि वैकल्पिक मार्ग हॉर्मुज जलडमरू मध्य और बोस्फोरस जलडमरू मध्य सहित दो रणनीतिक जलमार्गों से जुड़े जोखिमों को कम करने में सहायक हो सकता है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज और कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi met the medalists of the Commonwealth Games 2026 at his residence in New Delhi yesterday. During the interaction, the medal winners shared their experiences from the Games with the Prime Minister. In a social media post, Mr. Modi said that each one of them has made the nation proud through their exceptional performances and their success will motivate many youngsters. Mr. Modi shared a video message and said that those who will play will flourish and appealed to the citizens to always cheer for Bharat.
2: जो खेलेगा वो खेलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
1: Youth Affairs and Sports Minister Mansukh Mandaviya and Minister of State for Youth Affairs and Sports Raksha Nikhil Kharse were present on the occasion. India finished at the fourth spot on the medal table during the games held between 23rd of July and the 2nd of this month at Glasgow in Scotland. Indian athletes won 39 medals including 13 gold, 17 silver and 9 bronze across various sports. Prime Minister Narendra Modi has urged citizens to participate enthusiastically in the Har Ghar Tiranga movement and renew their collective resolve to contribute towards building a Viksit Bharat. In a social media post, Mr. Modi said, "Our tricolour is our pride and a constant source of inspiration to always give our best for the nation." Prime Minister said he is glad that this year's efforts are dedicated to Vande Mataram, and that too at a time when we are marking its 150th anniversary. The Culture Ministry said the Har Ghar Tiranga campaign this year would seek to bring the spirit of patriotism to streets and homes across the country through Tiranga Yatras, Tiranga rallies, Tiranga concerts and mass singing of Vande Mataram. India has crossed 300 gigawatts of non-fossil fuel-based installed electricity generation capacity. The landmark achievement was reached on the 31st of last month. It represents India as achieved more than 60% of its 500 gigawatt target set for 2030. The Ministry of New and Renewable Energy in a statement said that the share of non-fossil fuel-based electricity capacity in the country's total installed electricity generation capacity has reached over 54%. The ministry added that the growth in clean energy generation has been driven by strong contributions across sectors. Solar energy remains the key growth engine. Jharkhand police has imposed prohibitory orders around the assembly premises and made elaborate security arrangements across Ranchi. The measures have been taken in view of today's Vidhan Sabha march called by students who have been protesting for more than 2 weeks against alleged irregularities in recruitment exams in the state. A prohibitory order has already been promulgated within a 750-meter radius of the Vidhan Sabha building from 6th to 12th of this month. Protesters allege that hundreds of students coming to the state capital from different parts of Jharkhand are being stopped by the police forcefully. The students' protest entered its 17th day today, while six of them are on hunger strike, protesting against alleged irregularities in the recruitment exams. BJP leader Amar Bauri alleged that the party's state unit president Aditya Sahu has been put under house arrest. The Indian Navy, U.S. Navy Explosive Ordnance Disposal Exercise 2026 will be conducted at Southern Naval Command, Kochi, from today till the 14th of this month. The Defense Ministry said the bilateral exercise aims to enhance interoperability and strengthen professional cooperation between the specialist, diving and EOD teams of the two navies. The five-day exercise will comprise subject matter expert exchanges, cross-training, equipment demonstrations and scenario-based practical exercises. In squash, India settled for the silver medal in the team event at the FISU World University Championships in Mumbai yesterday. The Indian quartet of Om Sainval, Shamina Riaz, Suraj Kumar Chand and Nirupama Dubey lost the final to Hong Kong China on a game difference after the tie ended 2-2. And that is the end of this news bulletin.
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर. अब प्रस्तुत है कार्यक्रम संगीतिका. इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे अलीश मोहन द्वारा गाए शिव भजन. आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम और उनकी अलीश मोहन की आवाज में शिव भजन.

इसी के साथ आज का संगीति का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंटरप्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

की तो भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूँ मैं आज आपकी दोस्त शोभा शर्मा। तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों सुबह हो चुकी है, सूरज बाबा भी बिल्कुल सामने आ चुके हैं, धूप भी निकलने लग गई है और मौसम बहुत प्यारा सा है। और हम तो कहेंगे कि बिस्तर को टाटा बाय बाय कहिए, क्योंकि सूरज खिड़की पर दस्तक दे रहा है और आपका चाय का कप कह रहा है कि अब तो चुस्की ले लो। और सच में सुबह एक और शुरुआत है नए दिन की और नई तरह से सोचने के लिए, तो बिल्कुल बहुत प्यारी सुबह होनी चाहिए। और सबसे पहले उसमें यूँ कहे कि शांत होकर बैठना चाहिए और एक बार के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। तो चलिए हम भी अपने कार्यक्रम का आगाज करते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

एकदम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, और वही हमारे को ठंडक पहुंचाते हैं। उनका नाम ध्यान बहुत अच्छा लगता है और बहुत प्यारी सी की ये जो पंक्तियाँ हैं, और यूँ कहें ये गीत बहुत ही प्यारा है, दिल को छू लेते हैं और हम भी कहीं खो जाते हैं। बिल्कुल, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग, और आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त शोभा शर्मा। और दोस्तों, मैं देख रही हूँ कि खिड़की से जो आती है चमकीली धूप है और ठंडी हवा थोड़ी थोड़ी बिल्कुल थोड़ी सी कह रही है कि अब ज़रा मुस्कुराने और गुनगुनाने का वक्त हो गया है। बिल्कुल, बहुत ही प्यारा गीत अगला हम आपके लिए लेकर आए हैं गाइड फिल्म से, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

तो जिंदगी बहुत छोटी है और उसे उदास होकर बिताने का तो बिल्कुल भी चांस नहीं होना चाहिए आपकी जिंदगी में। और आज का जो ये नया सवेरा है हमसे कह रहा है कि सारी चिंताओं को छोड़ो और खुलकर जीना शुरू करो।

हाँ, खुशियाँ बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए, यूं ही आगे बढ़ती रहनी चाहिए। और जो खुशी मिलती है तो हमें लगता है कि ये इससे ज्यादा खुशी हमें कभी नहीं मिली, और फिर और चीजों की तलाश होती है, और फिर हम नई चीजों के लिए प्रयास करते हैं, जब उसमें सफल होते हैं तो और खुश होते हैं। और मैं तो कहूंगी कि आप हमेशा खुश रहें और आगे आपको सफलता मिलती रहे और जीवन में आप उन्नति करते रहे। तो आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग, और अब समय आ चुका है कि हम आपसे विदा चाहेंगे, परंतु एक प्यारा सा गीत आपके लिए छोड़े जा रही हूँ, और मुझे यानी शोभा शर्मा को अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: और अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब आप कुछ ही पलों में समाचार सुनेंगे।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य
2: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने और घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। भारत में गैर जीवाश्मी ईंधन आधारित बिजली उत्पादन की क्षमता 300 गीगावाट का आंकड़ा पार किया। भारतीय और अमरीकी नौसेनाओं

0: का विस्फोटक आयुध रोधक अभ्यास आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू। रूस ने भारत के लिए हॉर्मुज जलडमरू मध्य जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए रेल मार्ग का प्रस्ताव रखा और ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए अपने सामूहिक संकल्प को नवीकृत करने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा हमारा गौरव है और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि इस वर्ष के प्रयास वंदे मातरम को समर्पित हैं और वो भी ऐसे समय में जब हम इसकी 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
1: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
2: संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन के माध्यम से देश भर की सड़कों और घरों में देशभक्ति की भावना लाने का प्रयास करेगा। इस वर्ष के समारोहों का एक प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। इसे मंत्रालय ने अपनी तरह की पहली पहल बताया है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों को तिरंगे के वैश्विक उत्सव में एकजुट करना है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। समाचार कक्ष से कृष्ण का।
1: हर घर तिरंगा।
0: महाराष्ट्र में देशभक्ति के उत्साह के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो गया है। राज्य के कई जिलों में स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगा रैलियां और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बीड में जिला प्रशासन, जिला खेल अधिकारी कार्यालय और विभिन्न खेल संगठनों ने मिलकर जिला खेल परिसर से एक तिरंगा रैली आयोजित की। बिहार में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज पटना में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इसका नेतृत्व करेंगे।
3: कला संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से आयोजित ये यात्रा सुबह 10 बजे जेपी गोलंबर से रवाना होकर कारगिल चौक पहुंचेगी। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत हर प्रखंड को जीविका के माध्यम से 4000 तिरंगे उपलब्ध कराए गए हैं। गौरतलब है कि तिरंगा यात्रा का बिहार में विशेष महत्व है क्योंकि 11 अगस्त 1942 में बिहार के 7 वीर विद्यार्थी तत्कालीन पटना सचिवालय पर तिरंगा लहराने के क्रम में अंग्रेजों की गोलियों से एक एक कर शहीद हो गए थे। की शान के लिए जान की बाजी लगाने वाले इन छात्रों की याद में पटना विधानमंडल के सामने शहीद स्मारक बनाया गया है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: मणिपुर में भी हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया गया है। ये अभियान 17 अगस्त 2026 को समाप्त होगा। अभियान के दौरान नागरिक अपने घरों पर तिरंगा ध्वज फहराएंगे। मुख्यमंत्री युवराम खेमचंद ने इम्फाल पश्चिम जिले के गाजामी स्थित अपने आवास से अभियान में भाग लेते हुए लोगों से पहले खुद को भारतीय और फिर मणिपुरी मानने का आग्रह किया। दिल्ली मेट्रो रेल ने स्वतंत्रता की भावना का उत्सव मनाने के लिए येलो लाइन पर हर घर तिरंगा थीम से सजी एक विशेष मेट्रो ट्रेन शुरू की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डीएमआरसी ने बताया कि भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रमों के तहत इस ट्रेन को तैयार किया गया है। लोकसभा में आज 4 विधेयक पेश किए जाएंगे। इनमें ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026, खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026, केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 शामिल हैं। राज्यसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बैंकर बही साक्ष्य विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और पारित करने के लिए पेश करेंगी। भारत में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले महीने की 31 तारीख को हासिल की गई ये ऐतिहासिक उपलब्धि 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। एक रिपोर्ट।
4: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि देश की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। सौर ऊर्जा प्रमुख विकास इंजन बनी हुई है, जिसकी वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग 165 गीगावाट है।

0: ये 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट थी। मंत्रालय ने कहा कि 2025-26 के दौरान देश में जीवाश्म ईंधन रहित बिजली उत्पादन क्षमता में रिकॉर्ड 55.29 गीगावाट की वृद्धि हुई, जिसमें सौर ऊर्जा का 44.6 गीगावाट और पवन ऊर्जा के 6 गीगावाट का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये 2014-15 में लगभग 191 अरब यूनिट से बढ़कर 2025-26 में 477 अरब यूनिट से अधिक हो गई है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: झारखंड में पुलिस ने विधानसभा परिसर के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी है और रांची में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। एक रिपोर्ट।
2: झारखंड में कथित भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर छात्र आंदोलन आज 17वें दिन भी जारी है। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों और झारखंड सरकार के बीच लगातार 3 दौर की वार्ता में परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की जांच, प्रभावित परीक्षाओं को रद्द करने, दोषियों पर कार्रवाई और परीक्षा प्रणाली में सुधार पर चर्चा हुई। सरकार ने 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने, टीडीपीएल से जुड़ी परीक्षाओं की विस्तृत जांच और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग पर सरकार ने कहा कि मामला उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की निगरानी में है, इसलिए इसे सीधे रद्द करना संभव नहीं है। उधर छात्रों ने सरकार के प्रस्ताव को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है और आज विधानसभा घेराव के अपने कार्यक्रम पर कायम है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय नौसेना अमरीकी नौसेना का संयुक्त विस्फोटक आयुध रोधक अभ्यास आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू होकर 14 अगस्त तक चलेगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं की ईओडी टीमों और विशेषज्ञ गोताखोरों के बीच अंतर संचालनीयता को बढ़ाना और पेशेवर सहयोग को मजबूत करना है। रूस ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए हिंद महासागर और भारत तक रेल मार्ग विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। रूस के उप प्रधानमंत्री मराट खुसलुनी ने कहा कि वैकल्पिक मार्ग होर्मुज जलडमरू मध्य और बोस्फोरस जलडमरू मध्य सहित दो रणनीतिक जलमार्गों से जुड़े जोखिमों को कम करने में सहायक हो सकते हैं। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार श्री खुसलुनी ने कहा कि भारत तक पहुंच प्रदान करने के लिए तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से होकर गुजरने वाले रेलमार्गों का पता लगाया जा सकता है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलक महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने स्नैच में 128 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 157 किलोग्राम भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 285 किलोग्राम भार उठाया। वियतनाम के वांग थाश ने 291 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2 दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
3: मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम सक्रिय है। मॉनसून टर्फ और निम्न दबाव क्षेत्र के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज 21 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं राजगढ़, विदिशा, सीहोर, हरदा और देवास में मौसम विभाग ने अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट दिया है। इन जिलों में अगले 24 घंटे में 8 इंच तक बारिश होने का अनुमान है। भोपाल और उज्जैन संभाग में रात से बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में तेज बारिश का दौर अगले 2 दिन तक रह सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मूसलाधार बारिश की संभावना के मद्देनजर अधिकारी कमजोर तटबंधों और निचले इलाकों पर कड़ी नजर रख रहे हैं।
4: ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर फिर से बढ़ रहा है, जबकि भद्रक और जाजपुर में बैतरणी, सालंदी और कानी नदियों के पानी ने गांवों, खेतों और सड़कों को जलमग्न कर दिया है। केंद्रापड़ा के कई इलाकों भी प्रभावित हुए हैं। आईएमडी ने अगले 24 घंटे के दौरान कई उत्तरी और पश्चिम जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है और मौसम प्रणाली के कारण आने वाले दिनों में भी राज्य में बारिश जारी रहने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, विदर्भ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में आज बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। आज सावन माह का दूसरा सोमवार है। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने श्रद्धालुओं और कांवड़ियों के लिए व्यापक व्यवस्था की है। एक रिपोर्ट।
5: कांवड़ यात्रा ऐप श्रद्धालुओं और प्रशासन के बीच संवाद की सीधी कड़ी बन गया है। तीर्थयात्रियों को उनके मोबाइल फोन पर जरूरी जानकारी मिल रही है। वहीं नियंत्रण कक्ष और फील्ड अधिकारी एक साथ ही जमीनी व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। ये ऐप श्रद्धालुओं को एक क्लिक पर यात्रा से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी उपलब्ध करा रहा है। ऐप में पूरे रास्ते का मानचित्र, मंदिर, शौचालय, चिकित्सा सुविधाएं और भोजन की व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई है। श्रद्धालु शिकायत या आपात स्थिति में तत्काल सहायता प्राप्त करने के लिए भी इस ऐप का उपयोग कर सकते हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में अंगदान, मिथक तोड़ना, जीवन बचाना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉ अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के डॉ राजेश सिन्हा भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहतनाज।
6: धन्यवाद विशाल। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। जनसत्ता की सुर्खी है, झारखंड में झुकी सरकार, जेपीएससी के सभी सदस्यों का इस्तीफा, 3 परीक्षाएं रद्द करने पर सहमति, प्रदर्शनकारी सीबीआई जांच पर अड़े। बिहार में शिक्षा परीक्षा सुधार के लिए बनेगी समिति, नवभारत टाइम्स लिखता है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़, गुणवत्तापूर्ण और छात्र केंद्रित बनाने के लिए 4 बड़ी घोषणाएं की। संसद के मॉनसून सत्र को भी अखबारों ने सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका के अनुसार संसद में सरकार और विपक्ष के बीच टूट सकता है गतिरोध, लोकसभा में आ जाएंगे 4 विधेयक, मिर्जा को भारतीय कानूनों का करना होगा पालन, दैनिक जागरण की खबर है। फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की टर्बुलेंस फ्लाइट के मुख्य पायलट का ड्रग स्क्रीनिंग टेस्ट संदिग्ध पाया गया, दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार परीक्षण की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार, जांच और परीक्षण प्रक्रिया पूरी होने तक डीजीसीए ने उड़ान चालक दल के दोनों सदस्यों को ड्यूटी से हटाया। डीमैट और म्यूचुअल फंड में नॉमिनी जोड़ना ही होगा, हिन्दुस्तान के बिजनेस पन्ने पर है, बाजार नियामक सेबी के नए नियम 1 सितम्बर से लागू होंगे।
1: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने और घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। भारत में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन की क्षमता 300 गीगावाट का आंकड़ा पार किया। भारतीय और अमरीकी नौसेनाओं का विस्फोटक आयुध रोधक अभ्यास आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू। रूस ने भारत के लिए हॉर्मुज जलडमरू मध्य जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए रेल मार्ग का प्रस्ताव रखा। और ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अर्जेस पीपल टू जॉइन हर घर तिरंगा मूवमेंट एंड होइस्ट द ट्राइकलर एट होम्स। India crosses 300 gigawatts of non-fossil fuel-based installed electricity generation capacity. Indian and US Navy's explosive ordnance disposal exercise to begin today at Southern Naval Command in Kochi. Russia proposes railway route to India to reduce dependence on strategically important maritime routes like Strait of Hormuz. And Maharajan Arumuga Pandian clinches silver medal in men's 65 kg category at Asian Junior Weightlifting Championships in Tashkent. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has urged citizens to participate enthusiastically in the Har Ghar Tiranga movement and renew their collective resolve to contribute towards building a Viksit Bharat. In a social media post, Mr. Modi said, "Our tricolour is our pride and a constant source of inspiration to always give our best for the nation." The Prime Minister said he is glad that this year's

0: मुस्लिम ने बताया कि मुतबादी लाशों से आमनाए हुरमुज और आमनाए फास्फोरस समेत दो किस्मी आबी गुजरगाहों से जुड़े खतरनाक रास्तों से गुजरने के खतरे में मदद मिल सकती है। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक जनाब खुसुमिल ने बताया कि तुर्कवानिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से गुजरने वाले रेल रास्तों का पता लगाया जा सकता है ताकि भारत को आसानी से रसाई फराहम की जा सके। ये तजवीज मजबूरी एशिया में जारी जंग के पेश नजर सामने आई है, जिसने आबनाए हुरमुज के रास्ते जहाजों के गुजरने में रुकावटें खड़ी कर दी हैं। मुजवजा रेल रास्तों से वसी जोग्राफियाई, सियासी और माशी मुजमरात पैदा हो सकते हैं, क्योंकि ये वस्ती और जनूबी एशिया के जरिए बहरे हिंद के लिए रूस को एक मुतबादल बहरी रास्ता फराहम हो सकता है। भारत ने बोलीविया को जिंदगी बचाने वाली और लाजमी दवाएं रवाना की हैं। भारत ने ये 8 मैट्रिक टन दवाओं की खेप हिफ्जान सेहत के तहत सलाहियत और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रवाना की हैं। वजारत खारजा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारत इस भारी यकजहती और मुश्तरका तरक्की के जरिए दूसरे मुल्कों को तआवुन जारी रखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। उज़्बेकिस्तान के शहर ताशकंद में एशियन जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मर्दों के 65 किलोग्राम जुमरे में भारत के वेट लिफ्टर महाराजन अरमुगा पांडियन ने चांदी का तमगा जीता है। भारतीय वेट लिफ्टर ने इस मैच में 128 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 157 किलोग्राम वजन उठाया। इस तरह उन्होंने मजमूरी तौर पर 285 किलोग्राम वजन उठाकर बेहतरीन जाति रिकॉर्ड बनाया। वियतनाम के हुआंग टेक ने कुल 291 किलोग्राम वजन उठाकर सोने का तमगा जीता। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं हुसैन अख्तर।
1: शुक्रिया असदुल्ला। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इंकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने भारत की जंग आजादी के तनाजुर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को सफाए अव्वल पर शाया किया है कि भारत छोड़ो तहरीक में शामिल लोगों की कुर्बानियों और उनका अज्म आने वाली नस्लों को मुतासिर करता रहेगा और हर भारतीय शहरी में आजादी के तहत नई तवानाई पैदा करेगा। रोजनामा प्रताप ने अगस्त क्रांति के तनाजुर में हर घर तिरंगा मुहिम के तहत नायब सदर जमहूरियत सीपी राधाकृष्णन के इस बयान को सफाई अव्वल पर शाया किया है कि भारत एक है और हमेशा एक ही रहेगा। इसी अखबार की एक और खबर के मुताबिक वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय मुसल्ला अफवाज ने बेमिसाल शुजात का मुजाहरा किया और भारत अपने शहरियों की सलामती और उनकी हिफाजत के लिए अहदबंद है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत मुस्तफिदीन को 1 करोड़ से ज्यादा मकान उनके सुपुर्द किए गए, इस खबर को आज के अखबारों ने नुमाया किया है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि वो हर घर तिरंगा तहरीक में शामिल हों और अपने घरों में तिरंगा लहराएं। भारत में गैर रिवायती ईंधन वाली बिजली पैदावार की सलाहियत 300 गीगावाट से ज्यादा हो गई है। भारत और अमरीका कोची में जुनूबी बहरी कमान में आज धमाका खेज हथियारों के बंदोबस्त की मशक शुरू करेंगे। रूस ने आबनाए हुरमुज जैसे दिफाई एतबार से अहम समुद्री रास्तों पर इन्हिसार को कम करने के लिए भारत तक रेल रास्ते की तजवीज रखी है। और महाराजा उरुमुग पांडे ने ताशकंद में एशियन जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप्स में मर्दों के 65 किलोग्राम जुमरे में चांदी का तमगा जीता है। इसी के साथ आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 8:45 और ठीक 15 सेकेंड। अब प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे पंडित प्रशांत मलिक और पंडित निशांत मलिक से राग ललित। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।
3: नमस्कार, मैं प्रशांत मलिक।
4: मैं निशांत मलिक।
3: आज की सुबह की सभा में हम दोनों भाई ध्रुपद गायन प्रस्तुत करेंगे राग ललित, जो कि एक सुबह के प्रहर का राग है। इसमें ध्रुपद परंपरा के अनुसार 4 चरण की आलाप, तत्पश्चात एक चौताल की रचना प्रस्तुत करेंगे, जिसके बोल हैं देखो सखी वृंदावन में मोहन रास रचायो। हमारे साथ पखावज पर संगति दे रहे हैं पंडित अनिल चौधरी जी और तानपुरे पे मौली गर्ग। धन्यवाद।

देखो देखो देखो साहिबे।

Gracias.

0: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर उर्दू सर्विस की पहली मजलिस का अब आगाज होता है। नजर डालते हैं आज की मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों पर। अब से थोड़ी ही देर के बाद सुबहगाही प्रोग्राम में आप सुनेंगे हमद बारी ताला और नाते रसूल करीम। 9:45 पर आज सवेरे प्रोग्राम होगा। खबरें नशर होंगी 9:50 पर और 10 बजे आप सुन सकेंगे अकबाल जर्री का प्रोग्राम शम्मे फरोजा। 10:05 पर हुस्ने गजल प्रोग्राम नशर किया जाएगा, इसमें आप सुनते हैं गैर फिल्मी गजलें। 10:30 पर हम आपको एक गीतों भरी कहानी सुनवाएंगे जिसका उन्वान है उदासियां। 11 बजे मेरी पसंद प्रोग्राम में फिल्मी नगमे नशर होंगे और 11:30 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर। दिन में 12 बजे खबरें नशर की जाएंगी और 12:10 से प्रोग्राम होगा मेरे सुर मेरा तुम्हारा। दौरानी प्रोग्राम 12:30 पर तारीख साज प्रोग्राम होगा। आज का मौजू है साबरमती आश्रम। 12:45 पर आप सुन सकते हैं प्रोग्राम सुर्खियों में आलमी खबरें। दिन में 1 बजे नशर की जाएंगी और 1:15 पर आज की पहली मजलिस खत्म हो जाएगी। ये थी एक नज़र इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों पर। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है प्रोग्राम सुबहगाही। हम दोबारी ये ताला और नाते रसूल पेश कर रहे हैं जनाब अफजल मंगलौरी।
1: हमद शरीफ पेश कर रहा हूँ। अज़ीम रब्बे दुआलम

नात शरीफ पेश कर रहा हूं। या सरवर आलम तेरी

है अपनी गदाई पे मुझे नाज भी है अपनी गदाई पे मुझे नाज के मैं भी

روزے کے تیمم سر مسجد نبوی، روزے کے تیمم سر مسجد نبوی، میں خود سے

मैं खुद से ही खुद अपना पता पूछ रहा हूं, और हासिल है मुझे तुर्बत जहरा की जियारत हासिल है।

0: हम दोबारी ताला और नाते रसूल अभी आपने सुनी पेश कर रहे थे डॉक्टर अफजल मंगलोरी। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है प्रोग्राम आज सवेरे।
1: और अब आइए इतिहास में हम कुछ और पन्नों को पलट लेते हैं और बात करते हैं 10 अगस्त 1793 की।
2: वेल राइट, द लूवर म्यूजियम सेंट्रल डेज आर्ट वाज सिंबॉलिकली ओपन ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड ट्रांसफॉर्म्ड अ फॉर्मर रॉयल पैलेस इनटू अ म्यूजियम रिप्रेजेंटिंग द आइडिया दैट आर्ट एंड कल्चर बिलोंग टू द पीपल।
1: 1792 की अगर शगुन बात की जाए तो आज ही के दिन फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने तुइलरी महल पर धावा बोला, जिससे फ्रांसीसी राजशाही का पतन तेज हुआ और गणतंत्र की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। 1948 में आज ही के दिन भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग यानी एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना की गई। और 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पारित किया, जिससे उत्तराखंड के अलग राज्य के रूप में गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ। और अब हम याद कर रहे हैं हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई को। हिंदी के पहले रचनाकार थे ये, जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया और उसे हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उभारकर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा। उनकी व्यंग्य रचनाएं हमारे मन में गुदगुदी ही पैदा नहीं करती, बल्कि हमें उन सामाजिक वास्तविकताओं के सामने लाके खड़ा करती हैं, जिनसे किसी भी व्यक्ति का अलग रह पाना लगभग बिल्कुल असंभव है। लगातार खोखली होती जा रही हमारी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में और एक मध्यम वर्गीय मन की सच्चाइयों को हरिशंकर परसाई ने बहुत ही नजदीक से देखा। सामाजिक पाखंड और रूढ़िवादी जीवन मूल्यों को उन्होंने बहुत ही सकारात्मक तरीके से प्रस्तुत किया। और श्रोताओं, अब हम याद कर रहे हैं जिनकी ऐसी शख्सियत को जिनकी चर्चा करना बहुत आज के टाइम में जरूरी हो जाता है। इस समय हम लोग शगुन हर घर तिरंगा अभियान भी चल रहा है, तो तिरंगे की बात की जा रही है। हम आपको बता दें कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये गीत जो जिसने लिखा था उनकी हम बात कर रहे हैं, उनको हम याद कर रहे हैं आज, श्यामलाल गुप्त पार्षद की जी। ये पत्रकार भी रहे, समाजसेवी भी रहे, अध्यापक भी रहे, बहुत सारे पद इन्होंने संभाले। और 5वीं कक्षा में जब थे ये, तो उन्होंने कविता लिखी थी, परोपकारी पुरुष मुहिम में पावन पद पाते देखें, परोपकारी पुरुष मुहिम में पावन पद पाते देखें, उनके सुंदर नाम स्वर्ण से सदा लिखे जाते देखें। तो आइए सबसे पहले ये गीत ही सुन लेते हैं।

0: इसके अलावा इन्होंने स्त्री शिक्षा और दहेज विरोध में भी अपने सक्रिय योगदान दिया। विधवा विवाह को सामाजिक मान्यता दिलाने में इन्होंने सक्रिय योगदान दिया। इसके अलावा वैश्य पत्रिका का जीवन भर संपादन किया। रामचरितमानस उनका प्रिय ग्रंथ था।
1: बिल्लिया श्यामलाल गुप्त विनोहन भाई इस पेन नेम पार्षद लिरिसिस्ट पेन द फेमस पेट्रियोटिक फ्लैग सॉन्ग विच वी आर लिसनिंग इन द बैकग्राउंड एंड दिस सॉन्ग इट एक्टेड एज अ कैटलिस्ट ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट एंड दिस वॉज ओरिजिनली पेन्ड इन 1924।
0: जी, और देखा जाए तो जितनी भी पेट्रियोटिक मूवीज होती हैं उसमें ये गीत अलग अलग जो गीतकार हैं वो गाते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये लिखा किसने है, तो आज हमने वो भी अपने श्रोताओं को बता दिया।
1: राइटली

और श्रोताओं, अब हम याद कर रहे हैं हिंदी फिल्मों के पहले राम को, यानी कि प्रेम अदीप को। जी, प्रेम अदीप को राम के रूप में उनकी भूमिका के लिए याद किया जाता है। उनकी फिल्म शोभना समर्थ के साथ पर्दे पर राम की भूमिका में नजर आई और ये फिल्म बहुत ही मशहूर भी हुई, राम राज्य। आइए सुन लेते सबसे पहले इसी फिल्म से ये गीत।

0: अश्व के रथ पर सारथी अरुण।
1: जो बहुत ही शालीन किस्म के थे, शगुन कहा जाता है, और उनकी जो आवाज थी बहुत ही कोमल थी, और इसी वजह से उनको राम के किरदार के लिए चुना गया था। और दिल को छू लेने वाले उनके अभिनय न सिर्फ इन्हें फिल्म जगत में एक विशेष स्थान दिलाया बल्कि सदा के लिए अमर भी कर दिया। उनकी बहुत सारी फिल्में रही, सागर, मूवी टोन की भोले भाले, साधना, घूंघट वाली, तो आइए सुने तो उन्हीं की कुछ चुनिंदा फिल्मों से ये की।
0: आई आई पसंद जी बेला लगन लगा फूलों का बन बन मेला मगन बन।

0: उन।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारी नशरियात आप सुन रहे हैं। अब खबरें नशर की जाएंगी।
2: हुसैन अख्तर से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि वो हर घर तिरंगा तहरीक में शामिल हों और अपने घरों में तिरंगा लहराएं। भारत में गैर रिवायती ईंधन वाली बिजली पैदावार की सालाना 300 गीगावाट से ज्यादा हो गई है। भारत और अमरीका कोची में जुनूबी बहरी कमान में आज धमाका खेज हथियारों के बंदोबस्त की मशक शुरू करेंगे। रूस ने अबनाए हरबूद जैसे दिफाई एतबार से अहम समुद्री रास्तों पर इंसार को कम करने के लिए भारत तक रेल रास्ते की तजवीज रखी है और महाराजा उर्मुग पांडियन ने ताशकंद में एशियन जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में मर्दों के 65 किलोग्राम जुमरे में चांदी का तमगा जीता है। खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा मुहिम में जोश व खरोश के साथ शिरकत करने और विकसित भारत की तामीर में अपने ताउन के इज्तिमाई अहद का इरादा करने की अपील की है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि तिरंगा मुल्क की शान है, नीज ये मुल्क के लिए हमेशा अव्वलीन तरजीह देने की तहरीक का एक जामे वसीला है। वजीर आजम ने यह कहते हुए मसर्रत का इजहार किया कि इस साल की काविशें वंदे मातरम के लिए वक्फ हैं क्योंकि ये इसकी 150वीं सालगिरह है। पिछले महीने आकाशवाणी पर मन की बात के अपने प्रोग्राम में जनाब मोदी ने आवाम से अपील की थी कि वो अपने घरों में तिरंगा परचम लहराएं। सकाफत की वजारत ने कहा है कि इस साल हर घर तिरंगा मुहिम तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा प्रोग्रामों और वंदे मातरम के गीत के जरिए मुल्क भर में सड़कों और घरों में हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करेगी। वजारत ने कहा है कि वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह शहरियों को मौका भी फराहम करेगी ताकि वो यौम आजादी के त्यौहार के हिस्से के तौर पर कौमी गीत गाकर जश्न मना सकें। हर घर तिरंगा मुहिम यौम आजादी की तकरीबात से जुड़े मुल्कगीर आवामी शिरकत की एक पहल के तौर पर उभरी है जिससे शहरियों को कौमी परचम की नुमाइश करने और मुल्क के साथ अपनी वाबस्तगी का इजहार करने का हौसला मिलेगा। महाराष्ट्र में हर घर तिरंगा मुहिम बुलवतनी के जज्बे के साथ शुरू हो गई है। बीड, थाने और बुलढाणा समेत महाराष्ट्र के मुख्तलिफ जिलों में तिरंगा रैलियों का एहतमाम किया गया जिसमें तलबा, खिलाड़ियों, NCC कैडेट्स और शहरियों ने पूरे जोश व जज्बे के साथ शिरकत की। थाने में एक साइकिल रैली के जरिए माहौलियात के तहफ्फुज़ और सेहतमंद जिंदगी को फरोग दिया गया। बिहार में हर घर तिरंगा मुहिम के तहत आज पटना में एक बड़ी तिरंगा यात्रा का एहतमाम किया जाएगा। हमारे नामा निगार ने इत्तला दी है कि वजीर आला सम्राट चौधरी इस मुहिम की क्यादत करेंगे। मगरबी बंगाल में भी हर घर तिरंगा मुहिम के हिस्से के तौर पर आज कोलकाता में तिरंगा यात्रा का एहतमाम किया जा रहा है। वजीर आला शोभिंदु अधिकारी जुलूस की क्यादत करेंगे जो गैस्थो पाल सरानी से दोपहर में शुरू होगी और विक्टोरिया मेमोरियल पर खत्म हो जाएगी। मुख्तलिफ महकमों के वुजरा, इंतजामिया के सीनियर एहलकार और शहरियों की एक बड़ी तादाद इसमें शिरकत करेगी। वजीर आला ने उम्मीद जाहिर की कि तकरीबन 50,000 लोग यात्रा में शिरकत करेंगे। मणिपुर ने भी मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ हर घर तिरंगा मुहिम के इनेकाद में शिरकत की। ये प्रोग्राम 17 अगस्त 2026 को इख्तिताम पजीर होगा। इस मुहिम का मकसद भारत के इत्तेहाद का जश्न मनाना और तिरंगा के तई गहरे एहतराम का मुजाहरा करना है। भारत गैर रिवायती ईंधन पर मबनी बिजली की पैदावार की 300 गीगावाट की सलाहियत से आगे बढ़ गया है। इस सुनयाबी से 2030 के 500 गीगावाट सलाहियत के निशाने में से 60% से ज्यादा हिस्सा पूरा हो चुका है। नई और बार बार इस्तेमाल होने वाली तवानाई की वजारत ने कहा कि मुल्क की बिजली पैदावार की कुल सलाहियत में गैर रिवायती ईंधन पर मबनी बिजली सलाहियत का हिस्सा 54% से ज्यादा हो चुका है। वजारत ने यह भी कहा कि साफ सुथरी तवानाई की पैदावार में बहुत से शोबों का ताउन रहा है। गैर रिवायती ईंधन की मजमू सलाहियत में शमसी तवानाई इस मैदान की तरक्की में पेशरफ्त रही। वजारत के मुताबिक 2025-26 के दौरान मुल्क में गैर रिवायती ईंधन की 55.29 गीगावाट की सलाहियत का इजाफा हुआ है। लोकसभा में आज चार बिल पेश किए जाएंगे। इनमें ट्राइब्यूनल्स में इसलाहत का 2026 का बिल, कानून और मादनियात के फरोग और मुतालिका जब्तों में तरमीम का 2026 का बिल, केराला का नाम तब्दील किए जाने से मुतालिक 2026 का बिल और इमदाद बाहमी के फरोग के कौमी कारपोरेशन में 2026 का बिल शामिल है। राज्यसभा में मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन बैंकों के रिकॉर्ड के शवाहिद से मुतालिक 2026 का बिल पेश करेंगी। ऐवान में टैक्सेशन और दीगर कानून में तरमीम का 2026 का बिल भी पेश किया जाएगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। जेपीएससी जेएसएससी इम्तहान में मुबैना बदनवानियों पर तलबा और झारखंड के दरमियान तीसरे दौर की बातचीत के बावजूद तातुल अब भी जारी है। तलबा ने हुकूमत की तजावीज को पूरी तरह नहीं तस्लीम किया है और आज विधानसभा के घेराव के अपने प्रोग्राम पर बाजिद है। झारखंड में एहतजाज का आज 17वां दिन है। तलबा और झारखंड सरकार के दरमियान बातचीत में मुबैना बदनवानियों की तहकीकत, इम्तहान की मनसूखी, कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई और इम्तहान के निजाम में इसलाह पर तवज्जो मरकूज की गई। हुकूमत ने 14वीं जेपीएससी प्रीलिमिनरी इम्तहान मनसूख करने से इत्तफाक किया है और तफसीली तहकीकत का हुक्म दिया है। तलबा के जारी मुजाहिरों के पेश नजर झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी के तीन मुलाजमीन ने अपने हुजूर से इस्तीफा दे दिया है। भारतीय बहरिया और अमरीकी बहरिया की जानिब से धमाका खेज मवाद को नाकारा बनाने से मुतालिक मुश्तरक मशक ईओडी 2026 आज से 14 अगस्त तक कोची में वाकई जुनूबी बहरी कमान में मुनाकिद की जाएगी। वजारत दिफा के मुताबिक इस बाहमी मशक का मकसद दोनों बहरी अफवाज के माहिर गोताखोर और धमाका खेज मवाद को नाकारा बनाने वाली टीमों के दरमियान बाहमी ताउन और अमली हमा आहंगी को मजीद मुस्तहकम करना है। 5 रोजा इस मशक के दौरान माहिरीन के दरमियान तजर्बात और मालूमात का तबादला, मशरकी मुश्तरका तरबियती सरगर्मियां, मुख्तलिफ आलात का अमली मुजाहरा और सूरत हाल पर मबनी अमली मशकें की जाएंगी। भारत के महकमे मौसमियात ने आज मशरकी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मगरबी मध्य प्रदेश में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात ने आज से पहले दिल्ली के कुछ इलाकों में मुतदिल बारिश की पेशगोई की है। ओडिशा में सैलाब की सूरत हाल लगातार संगीन बनी हुई है क्योंकि बहुत से अजला सैलाब के पानी में डूबे हुए हैं, जबकि आने वाले दिनों में मजीद बारिश की पेशगोई की गई है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में

आप सुन रहे थे अकवाले जरी का प्रोग्राम शब में फरोजा। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है गैर फिल्मी गजलों का प्रोग्राम हुस्ने गजल। आज के प्रोग्राम में सुनिए ताज अहमद की आवाज में मिर्जा गालिब और दाग दहलवी का कलाम, और अंजना चोपड़ा पेश करेंगी जानिसार अख्तर और नजीर बनारसी का कलाम।

अपने वतन से दूर इस परदेश में आकर जीनत खुशी से उछल पड़ी। ऊंची ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कों पर तेज रफ्तार से भागती गाड़ियां, रोशनी में चकमगाते शहर को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। ऐसी चकाचौंध उसने पहले कभी नहीं देखी थी। जीनत की खुशी की एक वजह और भी है। कल तक हमीद नाम के जिस शख्स से वो वाकिफ भी नहीं थी, आज वही उसका शौहर बन उसे इस परदेश में ले आया है। घर पहुंचते ही हमीद के दोस्तों ने गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया। शाम को एक दावत मुनक्कत हुई जिसमें दोस्तों ने इस नई जोड़ी को मुबारकबाद दी।

0: पलक बंद कर लूं कहीं झलक ही न जाए, पलक बंद कर लूं कहीं झलक ही न जाए।
1: एक दो दिन तो घर में ही जश्न का माहौल रहा। उसके बाद हामिद ने जीनत को शहर के मुख्तलिफ इलाकों की सैर कराई। कुदरत के खूबसूरत नजारों को देखकर जीनत बहुत खुश होती। हामिद रोज जीनत के लिए कोई ना कोई तोहफा लाता।
2: जीनत देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ।
3: क्या लाए हैं? जरा पैकेट खोलकर दिखाइए।
2: ऐसे नहीं, पहले वादा करो कि इसे पहनकर तुम मेरे साथ पार्टी में चलोगी।
3: पहले दिखाइए तो सही। क्या इसमें मेरे लिए खूबसूरत गहने हैं?
2: नहीं नहीं, इस वक्त तो मैं तुम्हारे लिए लेटेस्ट डिजाइन की एक ड्रेस लाया हूँ।
3: अरे ये क्या, ये तो मिनी स्कर्ट है। और मैं
2: तुम इसे पहनोगी?
3: मैंने साड़ी सूट सलवार के अलावा दूसरी कोई ड्रेस नहीं पहनी। क्या मैं इस रिवायती लिबास में अच्छी नहीं लगती?
2: अच्छी लगती हो, लेकिन पार्टी में देखना, ज्यादातर लोग इसी तरह के लिबास में मिलेंगे।
3: मुझसे यह नहीं होगा, इस लिबास में मेरे सारे बदन की नमाइश होगी। नहीं, मैं इसे हरगिज नहीं पहनूंगी।
4: जैसा देश वैसा भेष, फिर क्या डरना।

0: सहूलियतें?
1: कंपनी की तरफ से ये सहूलियतें मिली हैं।
0: इतना बड़ा धोखा? नहीं,
1: देखो देखो, अब रोनित होने से कुछ नहीं होगा। मेरा कहना मानोगी तो हम बेशुमार दौलत हासिल कर सकते हैं।
0: नहीं, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे मेरे घर पहुंचा दीजिए, मैं यहाँ नहीं रहूंगी।
1: ओहो, देखो देखो जीनत, बात मानो, हमारा पासपोर्ट वीजा कंपनी वालों के पास है। जब तक हमारे कॉन्ट्रैक्ट की मियाद पूरी नहीं हो जाती, हम अपने मुल्क नहीं जा सकते।

0: बहुत खुश नजर आ रही हो बेटी।
1: अब्बू मैं स्कूल में फर्स्ट आई हूँ।
0: शाबाश बेटी, तुमने आज मेरा नाम रोशन कर दिया।
1: अब मैं शहर जाकर ऊंची तालीम हासिल करूंगी।
0: ख्वाहिश तो मेरी भी यही है बेटी, लेकिन मेरी इतनी हैसियत नहीं।

0: मैं मजबूर हूँ।
1: मजबूर? कैसी मजबूरी अबू?
0: तुम्हारे छोटे भाई बहन भी हैं, इतने बड़े परिवार की परवरिश करने के लिए मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। खेती बाड़ी करके दो वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा
1: और क्या अबू?
0: तुम्हारे लिए एक उम्दा रिश्ता आ रहा है। लड़का विलायत से कुछ दिनों के लिए आ रहा है। उसका वह बहुत बड़ा कारोबार है, उसकी फैक्ट्री है, आलीशान मकान है। शादी के बाद तुम्हारी जिंदगी ही बदल जाएगी।
1: मैं अभी शादी नहीं करूंगी, मुझे अभी आगे पढ़ना है।
0: समझने की कोशिश करो बेटी, इस वक्त ये रिश्ता हाथ से निकल गया तो शायद ऐसा मौका दोबारा ना मिले।
1: अब ये नहीं तो कोई और रिश्ता आ जाएगा।
0: इस रिश्ते से तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी बेटी, हमारी गरीबी भी दूर होगी, तुम्हारी और बहनों की शादी भी आसानी से हो जाएगी।
1: अबू, आप मेरे अरमानों का गला घोट रहे हैं।
0: नहीं बेटी, तुम मेरी मजबूरी तो समझती हो।
2: सचमुच जीनत के अरमानों का गला घुट चुका था। जीनत मन महसूस कर दिन बिताने लगी। उधर हमीद का वैशीपन बढ़ने लगा। वो नशे में धुत होकर आता और सीरत से मारपीट करता। आखिर सहने की भी एक हद होती है। जीनत हमीद के इस रवैये को जब समझ नहीं पाती तो वो उसके बारे में और तफ्तीश करती है। हमीद की मौजूदा नौकरी की मियाद खत्म हो चुकी है, वो अब गैर कानूनी काम करने लगा है। वह शराब और जुए जैसी बुरी लत के चुंगल में फंस चुका है। आखिर में जीनत हमीद को सही रास्ते पर लाने की कोशिश करती है। वो हमीद के लाए लिबास को पहनकर उसी होटल में पहुंच जाती है जहां हमीद जुआ खेल रहा होता है।
3: जब अपने हो जाए बेवफा तो दिल टूटे, जब

0: Con Zinat, Zinat, तुमने आज मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। क्या जरूरत थी तुम्हें इस तरह हंगामा करने की? बोलो।
1: आपने मुझे मजबूर कर दिया था। आप ऐसे रास्ते पे चल पड़े थे जहाँ से कोई वापस नहीं आता।
0: मैंने कोई गलत काम नहीं किया। अरे गलत तो ये लोग हैं, ये धोखेबाज हैं, ये कंपनी वाले।
1: मुझे मालूम है आपकी नौकरी की मियाद खत्म हो गई है, आपने मुझे बताया तो होता।
0: तुम क्या करती हैं? वापस अपने मुल्क जाने की गुजारिश करती हैं? लेकिन तुम ये नहीं जानती यहाँ आने के लिए मेरे घर वालों ने कितनी तकलीफें उठाई हैं। उन्होंने कर्ज लेकर मुझे यहाँ भेजा है।
1: और बदले में आपने उन्हें क्या दिया?
0: कंपनी वालों ने मुझे धोखा नहीं दिया होता तो मैं उनके सारे अरमान पूरे कर देता, सारे। मेरी कोशिश तो अब भी है।
1: इस गलत रास्ते पे चल के क्या आप उनके अरमान पूरे कर देते? काम धंधे तो और भी हैं। आप मुझसे बात तो करते।
0: अब तो तुम्हें सब मालूम हो ही गया है ना? अब तुम जो कहोगी मैं करने को तैयार हूँ जीनत, तैयार हूँ।
2: जीनत हामिद को लेकर अपने देश की एम्बेसी में जाती है। कमिश्नर साहब उनकी दास्तां सुनते हैं। वो जीनत की तारीफ करते हैं जिसने सही वक्त पर सही जगह दरियाफ्त की। कमिश्नर साहब उन तमाम लोगों पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं जो परदेश की चकाचौंध और बेशुमार दौलत के लालच में फंस जाते हैं। अपने वतन में चाहे किसी के पास में बढ़िया नौकरी हो या उनका अपना काम धंधा हो, वो सब परदेश के सब्ज बाग दिखते ही अपना सब कुछ छोड़कर परदेश भागते हैं। वो परदेश में आकर दर बदर भटकते हैं, गैर कानूनी काम करते हैं और पकड़े जाने पर जेल में तकलीफें सहते हैं। हालांकि चंद ऐसे भी लोग हैं जो अपनी मेहनत, अपने हुनर से एक मुकाम हासिल कर लेते हैं। यह तो एक रेतीला रास्ता है, इस पर जितना चलोगे पांव उतना ही धंसते चले जाएंगे। कमिश्नर साहब की मदद से जीनत और हामिद को एक इदारे में काम मिल जाता है। जीनत कंप्यूटर सीखकर उस पर उम्दा काम करने लगती है और दिनों दिन तरक्की करती जाती है। दोनों दिन भर सख्त मेहनत करते और रात को अपने दोस्तों की महफिल में शिरकत करते।

0: पासपोर्ट और वीजा मिल जाता है। हामिद तो खुश हो जाता है, लेकिन जीनत अपने काम में इतना मसरूफ हो जाती है कि वो काम छोड़ना नहीं चाहती।
1: जीनत, ये तुम क्या कह रही हो? तुम तो हमेशा अपने घर, अपने वतन जाने को बेताब रहती थी।
2: हाँ, पर आज मैं उस मंजिल पर पहुँच गई हूँ जहाँ से वापस जाना मुझे मुनासिब नहीं लगता।
1: आखिर तुम्हें भी यहाँ का नशा चढ़ ही गया, लेकिन अब तो हमें वापस जाना ही होगा।
2: हाँ, काश हम यहाँ और रुक सकते, लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने यहाँ जो हुनर सीखा उसका इस्तेमाल मैं अपने देश की तरक्की के लिए कर सकूंगी।
0: और आखिरकार जीनत और हामिद अपने देश के लिए चल पड़े। एरोप्लेन से उतरते ही दोनों अपने देश की मिट्टी को चूम लेते हैं। उस मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू पूरे माहौल को खुशगवार बना देती है।

आप सुन रहे थे गीतों भरी कहानी उदासियां। तहरीर जनाब जितेंद्र पाल सिंह की थी। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारी नशरियात जारी हैं। अब पेश है फिल्मी नामों का प्रोग्राम मेरी पसंद। प्रोग्राम की पहली पेशकश मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म है आप आए बहार आई।

सुहानी सफर फिल्म का नगमा आपने सुना मोहम्मद रफी और साथियों का गाया हुआ। अब सुनिए प्रोग्राम की अगली पेशकश लता मंगेशकर को, फिल्म का नाम है मेरा साया।

पर साया।

दो खिलाड़ी फिल्म का नगमा आपने सुना मोहम्मद रफी का गाया हुआ। आज के प्रोग्राम के आखिरी पेशकश लता मंगेशकर की आवाज में है, फिल्म है मिस्टर एक्स इन बॉम्बे।

0: सरनामे के साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म हुआ। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर के गुज़श्ता शुमारे की रिकॉर्डिंग। कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। मुस्कान सिर्फ चेहरे की नहीं आत्मविश्वास की भी पहचान होती है। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में और मैं हूँ आपकी मेजबान शिल्पा गुप्ता। एक सवाल जो मैं अपने श्रोताओं से करना चाहूंगी कि हम रोज अपने चेहरे की तो खूब देखभाल करते हैं लेकिन क्या हम अपने दांतों का भी उतना ही ध्यान रखते हैं? अक्सर जवाब होता है नहीं। और फिर छोटी सी लापरवाही, कभी कैविटी, कभी मसूड़ों की बीमारी तो कभी दांत खोने जैसी समस्या का कारण बन जाती है। हमारे आज के रेडियो डॉक्टर का विषय है डिफेंडिंग योर स्माइल, यानी अपने दांतों की देखभाल कर हम अपनी मुस्कान बनाए रख सकते हैं। जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं दंत विशेषज्ञ डॉक्टर रेखा गुप्ता, प्रोफेसर इन हेड डिपार्टमेंट ऑफ प्रोस्टोडोंटिक्स मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और साथ हैं डॉक्टर हरमीत सिंह डेंटल स्टाफ सर्जन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: थैंक यू।
0: आज हम बात करेंगे डिफेंडिंग योर स्माइल पे, यानी मुस्कान को खूबसूरत बनाए रखने के लिए दांतों को कैसे सुरक्षित रखा जाए। तो डॉक्टर हरमीत, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मौखिक स्वास्थ्य को क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और ये बाकी स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है?
1: मौखिक स्वास्थ्य है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम जानते हैं कि ओरल हेल्थ इज अ मिरर इमेज ऑफ जनरल हेल्थ, मीन्स अगर मुख स्वस्थ तो जनरल हेल्थ भी स्वस्थ रहेगी। तो इसके लिए आपको, अगर आपके माउथ में कोई भी इन्फेक्शन या ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बाकी जनरल हेल्थ भी ठीक रह सकती है। जैसे कि ये एक गेटवे है, ओरल कैविटी जो है गेटवे है टू द एयर एज वेल एज टू द फूड। थ्रू एनी इन्फेक्शन इन द ओरल कैविटी और क्रोनिक इन्फेक्शन इन द कैविटी, इट कैन इन्फेक्ट द थ्रोट, द लंग्स, इट कैन इन्फेक्शन गो टू द लंग्स और इट कैन गो टू द इंटेस्टाइन ऑल्सो। सो ओरल कैविटी की जो केयर है बहुत जरूरी है। और बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं ओरल कैविटी में जो डेंटिस्ट जो है स्पॉट कर सकते हैं कि अगर उसको कोई जनरल बीमारी तो नहीं है, कोई क्रोनिक बीमारी तो नहीं है। जैसे कि अगर किसी को डायबिटीज है उसमें ड्राई माउथ हो जाता है, और किसी को ल्यूकेमिया है या एचआईवी एड्स है उसके साइन एंड सिम्टम्स मुंह के अंदर दिखाई देते हैं। तो इस तरह से ओरल कैविटी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। और आप जानते ही हैं कि पुराने जमाने में जब डॉक्टर के पास जाते थे तो वो सबसे पहले किसी को फीवर है, कोई बीमारी है तो मुंह खोल करके टॉर्च से चेक करते थे, तो उससे काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ओरल कैविटी, जिससे हमारी जनरल हेल्थ के बारे में पता चलता है।
0: तो डॉक्टर रेखा, आपसे जानना चाहेंगे कि आमतौर पर ओरल डिजीजेस कौन कौन सी होती हैं?
2: ओरल डिजीज पांच तरह के होते हैं, जो कॉमनली नॉर्मल लैंग्वेज में जैसे हम पायरिया से अगर शुरू करें, जिसको कि हम जो मसूड़ों की बीमारी है एक तरह से, जो हड्डी तक भी जा सकती है अगर सही समय पे उसका ट्रीटमेंट ना किया जाए। इसके अलावा दांतों में कीड़ा लगना, तो अगर हम एक मोटे मोटे तौर पे बात करें, देखिए मुंह के अंदर दांत है, हड्डी है, मसूड़े हैं और उसके आसपास हमारे गम सॉफ्ट टिश्यू है जैसे कि चीक और टंग, तो कोई भी बीमारी जो इससे रिलेटेड है, हार्ट टिश्यू को अफेक्ट करने वाली डेंटल कैविटीज जैसे मैंने कहा दांतों में कीड़ा लगना, सॉफ्ट टिश्यू यानी मसूड़े को अफेक्ट करने वाला या गम्स को अफेक्ट करने वाला पायरिया या जिंजिवाइटिस या पेरिओडोंटाइटिस जिसको बोलते हैं, जिससे मसूड़ों की सूजन, खून आना, दर्द होना, दांतों का हिलना, हड्डी का गलना, ये सब शुरू हो सकता है। देन कहीं पर देखा गया है कि जीभ और जो आपके गाल का टिश्यू है बकल मुकोसा, उसके ऊपर कई तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं, खासकर तंबाकू खाने वाले लोग या बीड़ी पीने वाले लोग, उनमें कई तरह के व्हाइट लीजन्स और इस तरह के प्री कैंसरस लीजन्स भी देखे गए हैं। सो बहुत किस्म की बीमारियां मुंह में देखी जा सकती हैं। और जैसे डॉक्टर हरमीत ने अभी कहा कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो खुद से मुंह की बीमारी नहीं है, शरीर में कुछ बीमारियां हैं बट जिसके लक्षण मुंह में देख सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर। हेलो। नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
3: हाँ जी, मेरा नाम राजेंद्र है और मैं करमपुरा दिल्ली से ही बोल रहा हूँ।
0: जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
3: हाँ, सबसे पहले तो एंकर मैम बोला डॉक्टर साहिबान को नमस्कार।
0: नमस्कार। नमस्कार।
3: मेरे चार सवाल है। पहला सवाल तो मेरा ये है कि जो कई शख्स ऐसे होते हैं मुंह में जो है वो दांतों के बीच में गैप होता है स्पेस, और कई होते हैं उनके बीच में नहीं होता, और किसी के मुंह में 28 दांत होते हैं, किसी में 32 दांत होते हैं, तो इसमें मतलब इंसान की शख्स की अपनी कोई प्रॉब्लम होती है कि ये विरासत में माँ बाप की वजह से मिलता है, ऐसा कुछ क्या है, मतलब ये लिख दूर करे। दूसरा सवाल मेरा ये है कि ऑस्ट्रेलिया वाले जो होते हैं वो दांतों की एक्सरसाइज के लिए माउथ की, मुंह की, जबड़े की और बसुड़ों की तो चिंगम का इस्तेमाल करते हैं, तो ये कहाँ तक ठीक है। और दूसरा सवाल ये कि ये जो आपका मौलाना अबुल कलाम डेंटल सेंटर है इसका टाइमिंग क्या है, और आप दांत जो रीप्लांट करते हैं उसमें समय पजर क्या होता है, कितना समय लगता है, तो जरा ये बताएं, प्लीज गाइड करें, बड़ी मेहरबानी होगी।
1: बहुत सारे सवाल कर दिए एक बार में आपने। तो पहला सवाल जो आपका ये था कि आपका दांतों में गैप है, तो ये डिपेंड करता है एज के हिसाब से। अगर तो छोटे बच्चों में है वो तो नॉर्मल ही होता है दांतों के बीच में गैप, अगर कोई बड़े हैं उनके दांतों के बीच में गैप है तो जनरली मसूड़े कमजोर होने की वजह से दांत जो है फ्लेयर कर जाते हैं, तो उसकी वजह से गैप आ जाता है। तो मेन है कि आपको अपने मसूड़ों का केयर करना है, मसूड़ों को टाइट करना है कि जो दांत फ्लेयर हो गए हैं और फ्लेयर ना हो उसको प्रिवेंट करना है, और ज्यादा हिलने से बचाने के लिए और गैप और ज्यादा प्रिवेंट करने के लिए। और अगर दांतों के बीच में कुछ कैविटी है इन बिटवीन एरिया में साइड में से, तो उसकी वजह से भी गैप हो सकता है, तो वो आपको एक चेकअप कराना पड़ेगा आपके डेंटिस्ट के पास जाकर के, और अगर कोई एक्सरे की जरूरत पड़ेगी तो वो करा करके देखना होगा गैप का कारण क्या है और उसका फिर समाधान क्या होगा। और दूसरा आपने पूछा 23 और 32 दांत, देखिए पहले जो जॉ का साइज जो है बड़ा होता था क्योंकि इंसान जो था वो रॉ फूड खाता था और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स है वो, तो अभी क्या है कि अभी सब सॉफ्ट फूड पे आ गए हैं, सब खाना पका करके खाते हैं, तो आप 32 की अब ज्यादा जरूरत रही नहीं है, तो ईयर बाय ईयर वो दांत जो है 28 होते जा रहे हैं, और जो बाकी के जो पीछे के दांत है अक्लदार जिसको हम कहते हैं वो तो यहाँ पे इम्पेक्टेड रह जाते हैं बोन के अंदर ही और फिर वो प्रॉब्लम करते हैं, और ये एक नॉर्मल है, अगर 28 भी है तो कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। और मीट्स के टाइमिंग जो है वही है, मॉर्निंग 9 o'clock से ओपीडी स्टार्ट होता है, डेली होता है, आप किसी भी दिन आ सकते हैं वर्किंग डेज पे।
2: जिसमें मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगी कि सैटरडे को शनिवार को भी खुला होता है अस्पताल, बट हाफ डे होता है, बाकी दिन ये 4 बजे तक चलता है, पर ओपीडी टाइमिंग जनरली 9 से 1 ही होता है और सैटरडे को हाफ डे है।
0: अच्छा, डॉक्टर रेखा, जैसे कि इन्होंने इम्प्लांट के बारे में भी पूछा था, तो ये डेंटल इम्प्लांट, ब्रिज और डेंचर में क्या अंतर है और किन कंडीशंस में किया जाता है?
2: देखिए, दांतों को लगाने का, किसी आदमी का जब दांत निकल जाते हैं तो उसे हम आर्टिफिशियल दांतों से लगाते हैं, लगाने के अलग अलग तरीके होते हैं। सो कितने दांत निकले हैं, बाकी दांतों का क्या कंडीशन है, डिपेंडिंग अपॉन दैट हमारे पास बहुत से ऑप्शन होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं डेंचर की बात करूं, तो निकालने लगाने वाला डेंचर सबसे पुराने समय से जो चला आ रहा है, जिसको हम 32 भी कहते हैं, तो एक दांत से लेकर 32 दांत तक हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। ये पेशेंट को हर रोज निकालना होता है और लगाना होता है। उसके बाद अगर हमें ब्रिज या क्राउन की जो हम बात करते हैं, तो अगर किसी का 1, 2 या मैक्सिमम 3 दांत तक निकले हैं, तो हम उसको ब्रिज से रिप्लेस कर सकते हैं, जिसमें हम आसपास वाले दांतों से सपोर्ट लेके जो मिसिंग दांत है उसे लगाया जाता है और ये मुंह के अंदर फिक्स हो जाता है, पेशेंट को उसे निकालना नहीं पड़ता। तीसरी ऑप्शन आती है इम्प्लांट। सो इम्प्लांट जो ट्रीटमेंट है उसमें जब आपका असली दांत निकल गया, सो एक तरह से आप ये कहें कि हम उसका एक कृत्रिम तरीका, एक स्क्रू जैसा होता है टाइटेनियम का, जिसको हड्डी के अंदर लगा देते हैं। इट इज एज गुड एज सिमिलर टू जो आपके दांत की जड़ होती है, उसके ऊपर जब इम्प्लांट हड्डी के साथ जुड़ जाता है,

0: उसके ऊपर फिर दांत बनाया जाता है। ये इम्प्लांट का जो ट्रीटमेंट है ये सभी दांतों को रिप्लेस करने के लिए भी यूज किया जा सकता है, जैसे मैंने 32 की बात कही, और ये एक दांत को रिप्लेस करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। और इवन इम्प्लांट के साथ भी पूरा फिक्स भी हो सकता है और निकालने वाला दांत भी इम्प्लांट से सपोर्ट लेके बनाया जा सकता है। तो ये सिचुएशन पे, पेशेंट की जरूरत पे और बहुत से और फैक्टर्स हैं उन पे डिपेंड करता है कि किस तरह का ट्रीटमेंट पेशेंट के लिए चूज किया जाएगा। तो कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें इम्प्लांट नहीं किया जा सकता, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
1: मैं अमीन भाई रेडियो वाला।
0: जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
1: मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसे हम पान गुस्सा बिल्डिंग कुछ भी नहीं खाते, तब भी दांत पीछे से ला नहीं सकते हैं, जैसे कुछ लोगों को जानना चाह रहा हूँ, जैसे कुछ बच्चों के दांत टूट जाते हैं तो वो आते ही नहीं है, बड़े हो जाते हैं बच्चे, इसका भी क्या कारण है, चाहिए बताए।
0: मैं इसका जवाब देती हूँ, अगर दो ही आपके सवाल है तो देखिए, अगर जो पान सुपारी कुछ तम्बाकू नहीं खाते फिर भी आपने कहा लाल दांत, जो दांतों का रंग अमूमन लाल नहीं होता, तो कोई ना कोई एक्सटर्नल फैक्टर या कोई ना कोई कारण जरूर होगा, जैसे कि कृपंत मंजन एक है जो, या तंबाकू वाले पेस्ट कुछ होते हैं जिसे पेशेंट यूज करते हैं, तो कई बार वो भी दांतों का डिस्कलरेशन कॉज कर देते हैं। इसके अलावा जो दांत की ऊपरी परत घिसने लगती है तो जो नीचे से परत निकल के आती है वो थोड़ा पीलेपन पे होती है, तो वो भी उस सिचुएशन में भी आपको ऐसा लगता है कि दांतों का रंग बदल गया है। और कुछ हिंदुस्तानी खान पान तरीके ऐसे होते हैं जो बहुत सारी तरह की स्टेनिंग कॉज कर सकते हैं, जैसे हमारे खाने में हल्दी बहुत होता है, चाय कॉफी हम बहुत पीते हैं, तो इवन ये वाली चीजें भी दांतों की डिस्कलरेशन कॉज करती है। फिर आपने दूसरा सवाल पूछा कि बच्चों के दांत टूटने के बाद नहीं आते, ऐसा हो सकता है कि दूध का दांत था और वो टूटा तो पक्का दांत नहीं आया, तो ये वाली चीज एक्सरे से कंफर्म किया जा सकता है, क्योंकि इसके कई कारण है, कई सिचुएशंस में तो दांत बनता ही नहीं है, पक्का दांत बना ही नहीं तो वो कभी भी नहीं आएगा, बट कई सिचुएशन में ऐसा होता है कि वो हड्डी के अंदर टेढ़ा है या अगल बगल वाला दांत उसको ऊपर आने से रोक रहा है, तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो कई बार हम उसे सर्जिकली या ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट से बाहर भी निकाल सकते हैं, रिलैक्स करा सकते हैं। तो अगर ऐसा है कि बच्चे का दांत नहीं आया है दूध का दांत टूटने के बाद, तो आपको जाके डॉक्टर से उसकी जांच करानी चाहिए कि उसका कारण क्या है। जैसे कि कई बार होता है बच्चे खेल रहे हैं, खेलते खेलते दांत टूट गया, या कोई बड़े भी है वो बाइक पे जा रहे हैं या कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, इंसिडेंट हो गया, दांत टूट गया, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है, उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है?
2: देखिए, बहुत सारे स्पोर्ट्स भी हैं और एक्सीडेंट में भी हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनका कि दांत या तो टूट जाता है या पूरा का पूरा ही दांत उखड़ के बाहर आ जाता है। तो कोई भी अगर पार्ट आपका दांत का टूट गया है या दांत उखड़ के बाहर आ गया है, तो सबसे पहली केयर तो ये करनी है, उसको ट्रांसफर करना है उस टूथ को। तो सबसे बेस्ट मीडियम जो है ट्रांसफर करने के लिए वो है मिल्क, कोल्ड मिल्क। कोई छोटा सा कप लीजिए, उसमें मिल्क कहीं भी आसपास से लेकर के उसके अंदर स्टोर करके नियरेस्ट डेंटिस्ट को आप अप्रोच करें। तो अगर टूथ बाहर रहता है ओरल कैविटी से, तो विदिन 30 मिनट्स उसके जो लिगामेंट है वो डिजनरेट होना शुरू कर देते हैं, तो उसके चांसेस ऑफ सर्वाइवल जो है बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। तो मिल्क जो है बेस्ट स्टोरेज मीडियम है, हर स्कूल में या कॉलेज में जहां भी स्पोर्ट्स खेला जाता है घर के आसपास, तो वहां पर मिल्क होता ही है नॉर्मली, तो उसमें स्टोर करके आप नियरेस्ट डेंटिस्ट को विदिन 1 आवर अगर आप रीच करते हैं, तो चांसेस है कि हम उस टूथ को दोबारा से रीइम्प्लांट करके उसको जो है 10 डेज के लिए वायर से फिक्स कर देते हैं, ताकि वो दोबारा से बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट ऐसा हम जनरली परमानेंट टीथ में करते हैं, जो डेसिड्यूस टीथ होते हैं, जो मिल्क टीथ होते हैं, उनको हम रीइम्प्लांट नहीं करते हैं। इसके अलावा जैसे कोई दांत टूट गया है, फ्रैक्चर हो गया है, तो आजकल टेक्निक है कि हम फ्रैक्चर पोर्शन को भी मटेरियल के साथ फिक्स करके, और उसमें रूट कैनाल की जरूरत पड़ती है, आरसीटी करने की जरूरत पड़ती है, एक्सरे कर करके हम देखते हैं, तो वो भी करके उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो तुरंत डेंटिस्ट के पास आना चाहिए।
0: एक कॉलर और हमारे साथ लाइन पर। हेलो, नमस्ते, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
3: नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं यूपी गाजियाबाद से उमेश बोल रहा हूँ।
0: जी बताइए उमेश जी, क्या प्रश्न है आपका?
3: मेरा डॉक्टर साहब से प्रश्न है कि ब्रश करते समय कभी कभी नटोड़े में सूजन आ जाती है, तो डॉक्टर साहब एक दो फ्लैट देते चली जाती है, क्या इससे अलग भी कोई और टेस्ट कराना चाहिए, अंदर से क्या बीमारी है?
0: क्या आप अपना सवाल एक बार रिपीट करेंगे? आपने कहा मसूड़े में सूजन आ जाती है, उसके बाद आपने क्या कहा?
3: ब्रश करने पर कभी कभी सूजन आ जाती है, ठीक है, तो डेंटल डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक दो खुराक दे देते हैं, सही हो जाती है।
0: ओके ओके,
3: इससे आगे क्या कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए जिससे पता पड़ेगा क्यों हो जाती है?
0: देखिए, अगर आपको एक ही मसूड़े पे बार बार सूजन आ रही है एक ही जगह पे, तो फिर इसका मतलब उसमें कोई ना कोई तरह का इन्फेक्शन है, जो बार बार मसूड़े की सूजन

0: कॉज कर रहा है, कई बार मसूड़े के अंदर या हड्डी के अंदर पस पड़ जाता है, जिसको हम एब्सेस बोलते हैं। जो आपने कहा कि ब्रश करते हुए, तो वो कई बार तो ब्रश करते हुए अगर मान लीजिए ब्रश जोर से लग गया या ऐसा हुआ तो उससे भी हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कि अगर एक ही मसूड़े पे बार बार आ रहा है और सूजन दिख रही है, बड़ी सूजन दिख रही है जो दवा देने से ठीक हो जाती है, इन ऑल प्रोबेबिलिटी आपको एंटीबायोटिक दिया गया होगा तो उससे वो थोड़ा सा ठीक हो जाता है, पर वो पूरी तरह नहीं जाएगा जब तक कि उसका जो कारण है वो नहीं जाना जाएगा और उसको नहीं हटाया जाएगा। तो उस दांत में इन्फेक्शन है, इसका मतलब या तो मसूड़े में या नीचे हड्डी में, तो आपको डॉक्टर के पास जाके सबसे पहले उसकी क्लिनिकली जांच करानी चाहिए और एक छोटा एक्सरे कराना चाहिए जिस मसूड़े के आसपास वो सूजन आती है उस एरिया का, सो दैट हमें उसका कारण पता चल सके और अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। आज रेडियो डॉक्टर में हम बात करें डिफेंडिंग योर स्माइल, कि अपनी मुस्कान को कैसे बनाए रखें और अपने कैसे दांतों को सुरक्षित रखें। तो डॉक्टर रेखा, हम जैसे की बात कर रहे थे डेंटल इम्प्लांट पर, तो आपने हमें बताया कि कब करा सकते हैं, कैसे करा सकते हैं, अगर कुछ डेंटल इम्प्लांट नहीं करा सकते कुछ कंडीशंस में तो उनके लिए क्या ऑप्शन है?
1: उनके लिए डेंचर्स, जो कन्वेंशनल निकालने लगाने वाले डेंचर, वो लगाए जा सकते हैं, जो सबसे सिंपल प्रोसीजर है। और अगर कुछ ही दांत मिसिंग है तो हम क्राउन एंड ब्रिज की हेल्प से, जिसमें आसपास वाले दांतों से सपोर्ट लेके हम दांत लगाते हैं, वो भी किया जा सकता है। एक चीज मैं यहाँ और मेंशन करूंगी, जैसे कई बार होता है कि पेशेंट्स के 3-4 दांत बचे हैं, ज्यादातर निकल चुके हैं, तो ऐसी कंडीशन में एक ऑप्शन होती है जिसको हम आजकल नेचुरल इम्प्लांट, में अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि ये आपके नेचुरल इम्प्लांट्स हैं, अगर वो दांत हेल्दी हैं तो उनको हम बचा सकते हैं और उसके ऊपर डेंचर लग जाता है जिसको कि ओवर डेंचर बोलते हैं। तो ये कुछ एक ऑप्शंस हैं जो इम्प्लांट के बिना भी की जा सकती है।
0: एक मैसेज हमारे पास, ये लिखते हैं, एक दिन में कितनी बार ब्रश करना अच्छा होता है टीथ की हेल्थ के लिए? मोहित काम्बोज, विलेज जोधाबंस, सहारनपुर, यूपी। जी डॉक्टर अमित बताइए।
2: हाँ जी मोहित जी, ब्रश जो है दिन में 2 बार करें, रूल ऑफ 2 बोलते हैं इसको, ब्रश दिन में 2 बार करना चाहिए और 2 मिनट के लिए करना चाहिए और हर साल 2 बार ही डेंटिस्ट के पास विजिट करना चाहिए, तो रूल ऑफ 2 है। और ब्रश करने के लिए अलग अलग टेक्निक होती है, वो हम एज, पेशेंट की एज देख करके और उसका जनरल कंडीशन देख करके बताते हैं किस किस तरह से ब्रश टेक्निक है, बट जनरली हम मॉडिफाइड बास टेक्निक जनरली हम एडवोकेट करते हैं कि पेशेंट्स को इसमें क्या है, ब्रश के ब्रिसल्स जो है 45 डिग्री एंगल्स पे रखना होता है गम्स पे और उसको वाइब्रेटरी मोशन से स्वीप मोशन के साथ डाउन मूव करके उसको क्लीन करना होता है टीथ के सर्फेसिस को। वैसे भी इसको गूगल पे सर्च करके मॉडिफाइड बास टेक्निक आप सर्च कर सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएंगे किस तरह से करना चाहिए। और छोटे बच्चों में जनरली हम उसको चार्टर टेक्निक बोलते हैं, उसमें जो है सर्कुलर मोशन के साथ बच्चे को टीथ को क्लीन करना चाहिए। और वही टूथपेस्ट के बाद, टूथपेस्ट जो है फ्लोरिडेटेड होना चाहिए, फ्लोराइड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है टीथ के एनेमल की सेफ्टी के लिए, जो एनेमल जो है हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना होता है और जो फ्लोराइड जब हम यूज करते हैं वो हाइड्रोक्सी एपेटाइट को फ्लोरो एपेटाइट में कन्वर्ट करता है, विच इज मोर स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल एनेमल, तो इसलिए जो है हमेशा फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट यूज करना चाहिए। और उसकी कंसेंट्रेशन अलग अलग टूथपेस्ट में अलग अलग होते हैं, तो जनरली हम जो बच्चे न्यू बॉर्न है, नए अभी टीथ आए हैं, नॉर्मली 10 महीने के आसपास छोटे बच्चों में टीथ आ जाते हैं, तो जनरली कहते हैं 18 महीने की उम्र तक बच्चे को ब्रश जो है सुपर सॉफ्ट ब्रश करना चाहिए और बिना टूथपेस्ट के कर सकते हैं। 18 महीने से 6 साल के एज तक के बच्चों को 500 ppm का टूथपेस्ट आता है, 500 ppm जिसके अंदर फ्लोराइड होता है वो यूज करना चाहिए, और उसके बाद 6 साल से ऊपर सभी को एडल्ट टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं। ये है नॉर्मली, अगर कोई ज्यादा केरिस प्रोन है जिसमें ज्यादा कैविटीज होती है तो उसके लिए हम मोर फ्रीक्वेंट या हाई फ्लोराइड कंसेंट्रेशन का भी टूथपेस्ट एडवाइस करते हैं, बट वो क्लिनिकली पेशेंट को देखने के बाद ही। और ब्रश करने से एक बात बताऊंगा, उससे सिर्फ 60% ऑफ द टीथ सर्फेसिस जो है क्लीन होते हैं, तो आपको कंप्लीट क्लीनिंग के लिए फ्लॉस करना मस्ट है, फ्लॉस इज मैंडेटरी, तो फ्लॉस करना जरूर कभी ना भूलें, ब्रश करने के साथ साथ फ्लॉस भी करना है, जो इन बिटवीन सर्फेसिस है टीथ के तो फ्लॉस से उसको जरूर क्लीन करना है। और रेगुलर माउथ वॉश जो जनरली लोग यूज करते हैं वो नहीं यूज करना चाहिए जब तक कि डॉक्टर की सलाह ना हो। और दूसरा, माउथ वॉश जो इंडिया में मोस्ट पॉपुलर है वो गर्म पानी में हल्का सा नमक डाल के उससे रिंसेस कर सकते हैं, दैट इज द बेस्ट माउथ वॉश फॉर इंडिया।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर, हेलो।
3: जी मैम नमस्कार।
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
3: जी मैम मेरा नाम सोनू पासवान है, मैं दिल्ली आजादपुर से बात कर रहा हूँ।
1: जी बताइए क्या प्रश्न है आपका?

0: मैं ये जानना चाहता हूँ मेरे राइट साइड में दांत के ऊपर वाले दांत के राइट साइड के सेकंड दांत में एक अजीब सा उठा हुआ सा घाव टाइप का है या क्या है नहीं पता, लेकिन उसमें दर्द नहीं होता, लेकिन वो उठा हुआ सा है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो कभी कभी। ब्रश करते हैं तो सही से सफाई नहीं हो पाती उस दांत की, या जो भी कह रहे हैं, बिल्कुल जिसे हम लोग शुद्ध देशी भाषा में कहें तो खोरी टाइप का निकला हुआ है, तो वो कैसे ठीक होगा, उसके लिए क्या करना चाहिए?
1: जो पासवंत जी आपने ये बोला, एक बार बताएं क्या ये दांत के ऊपर है कि मसूड़े के ऊपर है?
0: ये दांत के ऊपर है।
1: तो ये नॉर्मल है, आप कह रहे कि उसमें दर्द नहीं होता और ये बहुत टाइम से वैसा ही बना हुआ है, ना घटा है ना बड़ा है, उसके आसपास कोई सेंसिटिविटी नहीं है, कोई कैविटी नहीं है। तो ये दांत जब बन रहे होते हैं, इनामल डिपॉजिट हो रहा है, उसके ऊपर मिनरल डिपॉजिट होते हैं, तो वो कई बार अलग अलग शेप में डिपॉजिट होते हैं।
0: लेकिन ये पहले नहीं था, ये कुछ सालों से ये है, ये अचानक हुआ है। पहले कुछ हल्का सा दबा था दांत पर, फिर अचानक ये उठने लगा।
1: दांत खुद से नहीं उठता है जनरली, मगर देखिए दो चीजें जो मैं सिर्फ सुन के इमेजिन कर सकती हूँ। एक तो ये कि हो सकता है उसके ऊपर कुछ कैलकुलस डिपॉजिट हो, कई बार वो इतना हार्ड हो जाता है कि वो दांत का हिस्सा ही लगने लगता है अगर उसको समय पे साफ ना कराया जाए। क्योंकि दांत के ऊपर एक बार जब दांत इरप्ट हो गया, बन गया, तो उसके ऊपर कुछ भी उसकी शेप वैसे चेंज होना, गड्ढा हो सकता है पर उठेगा नहीं। तो अगर आपको वो तकलीफ दे रहा है और अभी कुछ टाइम से आपने नोट करना शुरू किया है, तो प्लीज एक बार किसी भी डेंटिस्ट के पास जाके उसकी जांच कराएं। पर जहां तक मुझे आपके सिम्टम से समझ आ रहा है, कुछ घबराने वाला तो नहीं होगा, बिकॉज कोई दर्द नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर फिर भी एक बार आप उसे जाके जरूर से दिखाएं।
0: ठंडा पानी या कोई भी गर्म चीज हल्की फुल्की लग जाती है तो लगता है।
1: हाँ, तो फिर आप दिखा लीजिए, क्योंकि उठने का कारण अगर देखिए ठंडा गर्म जैसे आपने कहा लगता है, तो वो ना कई बार दांतों में कीड़ा जिसमें लगा होता है उसमें ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है, या दांत ऊपर से कई बार घिस जाते हैं जिसके बहुत से कारण होते हैं, तो ऊपरी परत जो सख्त परत होती है जिसको इनामल कहते हैं, उसके घिसने के बाद भी ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। पर जो आप क्लिनिकल अपीयरेंस बता रहे हैं वो आप उल्टी बता रहे हैं, इन सब चीजों में कम होगा दांत, बढ़ेगा नहीं। सो अगर ये बढ़ रहा है कोई भी एक हिस्सा, सो मेरे को लगता है क्वाइट पॉसिबल कि वो टाटर डिपॉजिट या कैलकुलस डिपॉजिट हो सकता है।
0: मैंने एक प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया था इस चीज के लिए, तो उन्होंने बोला कि इसमें मसाला भरा नहीं जा सकता, अगर इसमें मसाला भरा जाए तो दर्द होगा, आप इसको बस नॉर्मली सफाई करते रहे या अपने आप ठीक हो जाएगा, फिर अगर आपको मुझसे वो नहीं गया तो आप किसी अच्छे डॉक्टर को और दिखा
1: सकते। आप किसी और को जरूर से दिखा लें। मसाला हम हर दांत में भर सकते हैं, पर सिर्फ इतना होता है कि जब दांत में जो कीड़ी है वो गहरी होती है, पल तक चली जाती है, तो फिर सिंपल मसाला भरने से उसमें दर्द बढ़ सकता है। ऐसी सिचुएशन में कई बार रूट कैनाल कराना पड़ता है और उसके बाद मसाला भरा जाता है। मसाला जो मसूड़े के बीच में जगह बन जाती है, उस जगह पे हम नहीं भरते कभी भी, वो हम मना करते हैं कि उस स्पेस को हम मसाला भर के खत्म नहीं कर सकते। एक मैसेज है हमारे पास, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे ब्रशिंग टेक्निक पे, तो उन्होंने लिखा है, यह है ज्योतिका, ये लिखते हैं क्या कभी कभी एडल्ट टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं बच्चे? मेरी बेटी 2.5 साल की है।
2: नहीं, 2.5 साल के बच्चे में जनरली जो है हम किड्स टूथपेस्ट एडवाइस करते हैं, जिसमें 500 से 550 ppm फ्लोराइड होता है, और बच्चों में तभी हम एडवाइस करते हैं एडल्ट टूथपेस्ट अगर उसमें जब बहुत ज्यादा कैविटीज हैं, बहुत ज्यादा केरिस प्रोन है, और वो भी पेरेंट्स के सुपरविजन में एडल्ट टूथपेस्ट यूज करना है और उसको इमीडिएटली स्पिट करना होता है, बट अपने आप आपको एडल्ट टूथपेस्ट बच्चे को नहीं देना चाहिए।
1: मैं इसमें थोड़ा सा कुछ और एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि देखिए बच्चे और एडल्ट का अलग अलग क्यों होता है टूथपेस्ट, क्योंकि बच्चे कई बार उसको थूक नहीं पाते, स्वेलो कर लेते हैं। तो जैसे डॉक्टर हरमीत ने कहा, अगर फ्लोराइड कंटेंट ज्यादा है और बच्चा उसे स्वेलो कर लेता है, ठीक से थूक नहीं पा रहा, तो वो फिर उसको कुछ शारीरिक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। बट अगर आपका टूथपेस्ट उसमें फ्लोराइड नहीं है, नॉर्मल है, जैसे बड़े लोग भी कई बार बहुत सारे कंपनीज के आते हैं जिसमें अलग अलग फ्लेवर वाले, बट अगर उसमें फ्लोराइड या कोई मेडिकेशन नहीं है और आपका बच्चा 2.5 साल का है और अच्छे से थूक सकता है, स्वेलो नहीं कर रहा है, तो आप छोटा अमाउंट, बहुत छोटा, जैसे हम जिसे कहते हैं पी शेप वाला, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं यूज करना, छोटा सा उसको दे सकते हैं। एक और मैसेज हमारे पास, ये लिखते हैं, डॉक्टर नमस्ते सर, मेरा सवाल ये है कि बच्चों के दांत जो बाहर की तरफ आ जाते हैं सर, इसका कारण क्या है और इससे कैसे बचें? और एक सवाल ये है कि मेरे दांत में कभी कभी ठंडा पानी लगता है, ऐसा क्यों और इसका क्या उपाय है बताएं प्लीज। आसिफ सैफी फ्रॉम

0: पीरियड।
1: नहीं, बच्चों के दांत बाहर आने में बच्चे की एज के बारे में अगर हम बात करें, क्योंकि दांत बाहर आने के बहुत से कारण होते हैं। अगर बच्चा छोटा है कि जब दूध का दांत टूटा और पक्का दांत आया, तो कई बार ऐसा लगता है कि दांत बाहर आ गए, क्योंकि दूध के दांत छोटे होते हैं साइज में और जो आपके परमानेंट टीथ होते हैं वो बड़े होते हैं, तो इसमें फर्क नजर आने लगता है। ठीक है, एक कारण ये हो सकता है। एक है कि दांत इरप्ट होने के बाद धीरे धीरे बाहर आने शुरू हो गए, तो वो कई बार कुछ हैबिट्स के कारण भी ऐसा हो जाता है। जैसे कि कई लोगों को, जिसे हम टंग थ्रस्टिंग कहते हैं, कि जीभ से दांतों को बाहर पुश करने की आदत होती है, या कई बार लोग बच्चे मुंह से जो सांस लेते हैं, माउथ ब्रीदर्स, तो उसमें कई बार दांतों की पोजीशन चेंज हो जाती है। तीसरा सबसे कॉमन कारण है अगर पेडोंटल प्रॉब्लम, जो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि छोटे बच्चों में इतना जल्दी नहीं होगा, बट अगर मान लीजिए सफाई न रखी जाए, मसूड़े की प्रॉब्लम होके वो बढ़ती जाती है, हड्डी घिसने लगती है, तो उस सिचुएशन में दांत अपनी जगह से हिल के थोड़ा सा अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं या बाहर की तरफ आने लगते हैं। तो ये कुछ कारण है। और कई बार जब दूध से, मैंने कहा दूध के दांत से पक्के दांत पे जाते हैं, तो कई बार देखा गया कि दूध का दांत नहीं टूटता और पक्का दांत आना शुरू हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में वो पक्का दांत कहीं से भी आ सकता है और ज्यादातर वो बाहर की तरफ निकल के आता है। तो कभी भी ऐसा अगर देखें, इसके प्रिवेंशन की अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर सिचुएशन की, तो आपको ध्यान रखना होगा जब आपके बच्चे के दूध के दांत टूट रहे हैं, तो देखिए अगर पक्के दांत नजर आना शुरू हो गया और दूध का दांत वहीं पड़ा है, तो कई बार हमें उसे डॉक्टर के पास ले जाके दूध के दांत को निकलवाना पड़ता है, ताकि पक्का दांत अपनी सही जगह पे आ सके, बाहर की तरफ ना आए। एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो
2: जी मैम।
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: नमस्कार मैम, और रविंद्र कुमार दिल्ली से बोल रहा था, नारायण से।
1: अच्छा जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका?
2: प्रश्न ये है मैम कि जैसे चार पांच सालों से मैं खाना चबाते समय दोनों साइड में चौबर से दाल के मसूर दाल के मसूर मांस कट जाते थे, तो मैंने दांत को घिसवा दिया। दांत घिसवाने के बाद थोड़ा सा नुकीला हो गया, तो गाल में रगड़ पड़ता है खाना चबाते समय अंदर साइड में, तो नलिमा से बना हुआ, उससे कोई दिक्कत नहीं?
3: हाँ जी, जरूर दिक्कत है उसके साथ। अगर आपका चीक बाइट बोलते हैं उसको, कि अगर आपके लास्ट वाले टीथ जो है, जनरली ये विजडम टीथ जो होते हैं आपका दांत, उसके साथ एसोसिएट होता है, और आपके चीक को बाइट करता है, तो उसकी वजह से अगर उसमें अल्सर बन जाता है, और कोई भी अल्सर जो है दो हफ्ते से ज्यादा है, दो से तीन हफ्ते, तो उसका जो है बायोप्सी होना मस्ट होता है, ये गाइडलाइंस है। तो आपको तुरंत नियर बाय डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और अगर वहां पर कुछ रेडनेस या अल्सर बन रहा है तो उसका चेकअप कराएं, और अगर वो रिपीटेडली टूथ को ट्रोमा कॉज कर रहा है और विजडम टीथ है, तो ऐसे केस में हम एक्सरे करा करके साधारण सा तो उस टूथ को रिमूव भी कर सकते हैं। जो विजडम टीथ होते हैं वो वेस्टिजियल होते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं, उसकी हमारे को जरूरत भी कई बार नहीं होती, बाकी वो आपको क्लिनिकली देख कर ही बता सकते हैं कि इसका कारण क्या है इसका।
2: जी डॉक्टर, मैं एक बार दिखाया था, तो ये बीच बीच में क्या होता है, 15-20 दिनों सही हो जाता है, जैसे नेचुरली होता है वैसे हो जाता है, और कभी कभी हर चीज खाने की वजह से बाद में ऐसे नलिमा से बन जाती है।
3: तो अगर बार बार चीक बाइट हो रहा है आपको, तो आपको उसका चेकअप करा करके ट्रीटमेंट कराना होगा, चाहे और दांत को घसना हो या दांत को निकालना हो, बाकी अगर अल्सर बना हुआ है चीक के ऊपर, वो एक खतरनाक साइन है।
2: नहीं सर, अभी तो फिलहाल लेग दो महीने से तो नॉर्मल है, एकदम सही हो।
3: तो फिर आप चेकअप कराइए।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात करें तो ओरल हाइजीन की, आपने अभी बताया माउथ अल्सर के बारे में, तो ये माउथ अल्सर क्या है और किस तरह के होते हैं और कैसे इनसे प्रिवेंट किया जा सकता है?
3: जनरली अल्सर जो है, मोस्ट कॉमन जो है एक्ट्रेस अल्सर होते हैं, वो कॉमनली होते रहते हैं जनरली, और वो उसका मेन कारण होता है स्ट्रेस की वजह से हो जाता है, नींद पूरी ना होने की वजह से एक्ट्रेस अल्सर हो जाते हैं, और इसके अलावा कोई डेफिशियंसी है, बी कम्प्लेक्स की डेफिशियंसी, उसकी वजह से हो जाता है, तो उसको तो एक्ट्रेस अल्सर बोलते हैं। वो नॉर्मली 3 to 5 days में हील हो जाते हैं, तो उसके लिए हम कुछ मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं, माउथ वॉश या जेल, तो उससे पेन रिलीफ हो जाता है, अल्सर हील हो जाते हैं।
1: एक और मैसेज हमारे पास, ये लिखते हैं रविंद्र पाठक, आशा पाठक फ्रॉम नीदरलैंड, वेरी रिस्पेक्टेड शिल्पा मैम जी एंड डॉक्टर मैम जी, डॉक्टर सर जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार जी। नमस्कार। हमारा प्रश्न है कि मैं आशा डायबिटिक पेशेंट हूँ, क्या इस सिचुएशन में दांतों पर भी कुछ गलत प्रभाव हो सकता है? इस हालत में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? वेरी थैंक्स एंड वेरी रिगार्ड्स। देखिए, अगर आप डायबिटिक हैं और वो कंट्रोल में है तो जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं होता, पर डायबिटिक पेशेंट में दांतों के ऊपर नहीं पर मसूड़ों के ऊपर और हड्डी के ऊपर जरूर फर्क पड़ता है। अगर आपका शुगर कंट्रोल में नहीं रहेगा, शुगर लेवल ब्लड में बहुत ज्यादा है, तो वो एक कारण बन जाता है, जिसको हम जैसे प्री डिस्पोजिंग फैक्टर कहते हैं।

0: प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं अगर आप डायबिटिक हैं। और एक जो प्रॉब्लम और डायबिटिक में देखी गई है, मुंह का सूखना, ड्राइनेस ऑफ माउथ, वो डायबिटिक पेशेंट में जिसको जीरोस्टोमिया कहते हैं बहुत कॉमन होता है। सो आपको शायद वाटर इनटेक अपना बढ़ाना पड़े, या एक आर्टिफिशियल सलाइवरी सब्स्टिट्यूट भी आता है, वो भी यूज किया जा सकता है अगर आपको ज्यादा ड्राइनेस हो रही है तो। दोस्तों उम्मीद है कि इस बातचीत से आपको डेंटल केयर के सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर मेल कीजिएगा। हमारा मेल आईडी है healthaiadelhi@gmail.com। इसी तरह स्वास्थ्य से जुड़ी उपयोगी जानकारी के साथ फिर मिलेंगे आपके अपने कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में। और इसी के साथ मैं शिल्पा गुप्ता आपसे लेती हूँ इजाजत। स्वस्थ रहें, सजग रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम के गुज़श्ता शुमारे की रिकॉर्डिंग। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नश्र की जाएंगी।
2: आदाब, ये आकाशवाणी है। अब आप असदुल्ला से खबरें सुनिए। पहले खास खबरों की सुर्खियां। भारत ने बोलीविया की सरकारी हिफ्जान सेहत की सलाहियत में तआवुन देने की खातिर उसे 8 मैट्रिक टन जिंदगी बचाने वाली और लाजमी दवाओं की खेप भेजी है। भारत और अमरीका कोची में जनूबी बहरी कमान में आज धमाका खेज हथियारों के बंदोबस्त की मशक शुरू करेंगे। रूस में आबनाए हुरमुज जैसे दिफाई एतबार से अहम समुद्री रास्तों पर इन्हिसार को कम करने के लिए भारत तक रेल रास्ते की तजवीज रखी है। शदीद समुद्री तूफान डॉल्फिन चीन के मशरकी साहिल पर पहुंच गया है, जिससे चीन के मशरकी साहिल पर शदीद बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं। और महाराजा उर्मू पांडियन ने ताशकंद में एशियन जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मर्दों के 65 किलोग्राम जुमरे में चांदी का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। भारत ने बोलीविया को जिंदगी बचाने वाली और लाजमी दवाएं रवाना की हैं। भारत ने ये 8 मैट्रिक टन दवाओं की खेप हिफ्जान सेहत के तहत सलाहियत और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रवाना की हैं। वजारत खारजा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारत इजहार यकजहती और मुश्तरका तरक्की के जरिए दूसरे मुल्कों को तआवुन जारी रखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा मुहिम में जोश और खरोश के साथ शिरकत करने और विकसित भारत की तामीर में अपने तआवुन के इज्तिमाई अहद का इआदा करने की अपील की है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि तिरंगा मुल्क की शान है, नीज ये मुल्क के लिए हमेशा अव्वलीन तरजीह देने की तहरीक का एक जामे वसीला है। वज़ीर-ए-आज़म ने यह कहते हुए मुसर्रत का इजहार किया कि इस साल की काविशें वंदे मातरम के लिए वक्फ हैं, क्योंकि इसकी 150वीं सालगिरह है। पिछले महीने आकाशवाणी पर मन की बात के अपने प्रोग्राम में जनाब मोदी ने आवाम से अपील की थी कि अपने घरों पर तिरंगा परचम लहराएं। बहरिया के सरबराह एडमिरल कृष्णा स्वामी नाथन मॉरिशस के 4 रोजा दौरे पर हैं। ये दौरा आज से शुरू हुआ है। वजारत दिफा ने कहा है कि यह दौरा मॉरिशस के साथ दिफाई ताल्लुकात को वसी करने और बहरी सतह पर बाहमी तआवुन को मुस्तहकम करने की भारत की लगातार कोशिशों का एक हिस्सा है। दौरे के दौरान वो मॉरिशस की हुकूमत की सीनियर क्यादत के साथ बातचीत करेंगे और बहरी सिक्योरिटी, दिफाई तआवुन, सलाहियत साजी और फौजी इश्तराक जैसे बहरी मफाद के उमूर पर तबादले ख्याल करेंगे। भारतीय बहरिया और अमरीकी बहरिया की जानिब से धमाका खेज मवाद को नाकारा बनाने से मुतालिक मुश्तरका मशक ईओडी 2026 आज से 14 अगस्त तक कोची में वाकई जनूबी बहरी कमान में मुनाकिद की जाएगी। वजारत दिफा के मुताबिक इस बाहमी मशक का मकसद दोनों बहरी अफवाज के माहिर गोताखोर और धमाका खेज मवाद को नाकारा बनाने वाली टीमों के दरमियान बाहमी तआवुन और अमली हम आहंगी को मजीद मुस्तहकम करना है। 5 रोजा इस मशक के दौरान माहिरीन के दरमियान तजुर्बात और मालूमात का तबादला, मुश्तरका तरबियती सरगर्मियां, मुख्तलिफ आलात का अमली मुजाहरा और सूरत हाल पर मबनी अमली मशकें की जाएंगी। वजारत दिफा के मुताबिक भारतीय और अमरीकी बहरिया साल 2005 से ये मुश्तरका मशकें करती आ रही हैं। आइंदा होने वाली मशक इस सिलसिले की 8वीं कड़ी होगी। तलबा की जारी मुजाहिरों के पेश नजर झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी के 3 मुलाजिमीन ने अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। जेपीएससी के 3 मेंबरों अजीता भट्टाचार्य, जमील अहमद और अनीमा हंसा ने कल गवर्नर संतोष कुमार गंगवार को

इस्तीफा पेश कर दिया है। रूस ने बहरे हिंद के लिए एक रेलवे रास्ते का पता लगाने की तजवीज रखी है, जिससे भारत का अहम बहरी रास्तों पर इन्हेसार कम होगा। रूस के नायब वजीर ख्वाजा माराद खुसलिन ने बताया कि मुतबादिल रास्तों से आबनाए हुरमुज और आबनाए फास्फोरस समेत दो क्लीवी आबी गुजरगाहों से जुड़े खतरनाक रास्तों से गुजरने के खतरे से बचने में मदद मिल सकती है। रूस की सरकारी एजेंसी के मुताबिक जनरल खुसलिन ने बताया कि तुर्कमानिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से गुजरने वाली रेल रास्तों का पता लगाया जा सकता है, ताकि भारत को आसानी से रसाई फराहम की जा सके। ये तजवीज पूर्वी एशिया में जारी जंग के पेश नजर सामने आई है, जिससे आबनाए हुरमुज के रास्ते जहाजों के गुजरने में रुकावटें खड़ी कर दी हैं। मुजवजा रेल रास्तों से वसी जोग्राफियाई, सियासी और माशी मुजूरात पैदा हो सकते हैं, क्योंकि इससे वस्ती और जनूबी एशिया के जरिए बहरे हिंद के लिए रूस को एक मुतबादिल बहरी रास्ता फराहम हो सकता है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीका की मरकजी कमान सेंटकॉम ने कहा है कि अमरीका की बहरी अफवाज ने ईरान के खिलाफ अमरीकी नाकाबंदी नाफिज करने की कोशिशों के तहत 55 तजारती बहरी जहाजों का रुख तब्दील किया है। सेंटकॉम ने सोशल मीडिया पर अपने एक बयान में कहा है कि फौजी मिशनों, जिसमें नाकाबंदी का निफाज भी शामिल है, की हिमायत के लिए मशरक उस्ता में 20 से ज्यादा अमरीकी जंगी बहरी जहाज तैनात हैं। ये ताजा पेशरफ समुद्री कार्रवाइयों से मुतालिक पहले सामने आने वाली रिपोर्ट्स के बाद हुई हैं। सेंटकॉम ने यह भी कहा है कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 30 से ज्यादा बहरी जहाजों को नाकाबंदी से गुजरने की इजाजत दी गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने इस्लामिक पासदारान इंकलाब IRGC के साबिक सरबराह मोहसिन रजाई को मोहम्मद बाकर की जगह मुल्क की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल SNSC के लिए अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया है। इससे पहले ये ओहदा अली लारेजानी के पास था, जिनको मार्च में अमरीकी इसराइली हवाई हमलों में कत्ल कर दिया गया था। शदीद समुद्री तूफान डॉल्फिन चीन के मशरकी साहिल पर पहुंच गया है। इस तूफान से शदीद बारिश हुई है और तेज हवाएं चल रही हैं। सैलाब और मिट्टी के तोदे खिसकने की वार्निंग जारी की गई है। चीन के महकमे मौसमियात के हुकाम ने बताया कि ये तूफान झियांग सूबे में युहान के नजदीक आया। इसकी रफ्तार अपने मरकज के नजदीक 151 किलोमीटर फी घंटा थी। कम अज कम 30,300 लोगों को बहफाजत निकालकर महफूज मकाम पर पहुंचा दिया गया है, जबकि शंघाई ने तकरीबन 1500 परवाजें मनसूख कर दी हैं। और जिजांग शंघाई, शुमाली फुजियान, शुमाल मशरकी जिजंगई, अनहुई और जियांगू समेत बहुत से इलाकों में शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने डोडा जिले के भद्रवाह कस्बे में तारीखी रतनगढ़ किले की मरम्मत और तजदीदकारी के लिए 10 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस प्रोजेक्ट का मकसद इस तारीखी किले की तहफ़ करना है और इसकी मजमूई हालत को बेहतर रखने के अलावा इसे एक अहम विरासत के तौर पर फरोग देना और दरियाए चिनाब में एक पुरकशिश सियाहत का मरकज बनाना है, जिससे सयाहों को बेहतर सहूलियात फराहम करते हुए किले की फन तामीर और तारीखी हैसियत को बहाल रखने में मदद मिलेगी। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज मशरकी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मगरबी मध्य प्रदेश में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, विदर्भ और शुमाल मशरकी भारत के कुछ हिस्सों में भी आज शदीद बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने आज से पहले दिल्ली के कुछ इलाकों में मोतदिल बारिश की पेशगोई की है। उज़्बेकिस्तान के शहर ताशकंद में एशियन जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मर्दों के 65 किलोग्राम जुमरे में भारत के वेट लिफ्टर महाराजन अरुमुगा पांडे ने चांदी का तमगा जीता है। भारतीय वेट लिफ्टर ने इस मैच में 128 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 157 किलोग्राम वजन उठाए। इस तरह उन्होंने मजमूरी तौर पर 285 किलोग्राम वजन उठाकर बेहतरीन जाती रिकॉर्ड बनाया। वियतनाम के हुआंग टिच ने कुल 291 किलोग्राम वजन उठाकर सोने का तमगा जीता। स्क्वाश में भारत ने गुज़श्ता रोज मुंबई में मुनक़िद होने वाले FISU आलमी यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप के मुकाबले में चांदी का तमगा हासिल किया। ओम सेमियाल, समीना रियाज, सूरज कुमार चंद और निरुपमा दुबे पर मुश्तमिल भारतीय टीम फाइनल मुकाबले में हांगकांग चीन से गेम्स के फर्क की बुनियाद पर हार गई, जबकि इससे पहले यह मुकाबला 2-2 से बराबरी पर रहा था। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत ने बोलीविया के

0: सरकारी हिफ्जान सेहत की सलाहियत में तआवुन देने की खातिर इसे 8 मैट्रिक टन जिंदगी बचाने वाली और लाजमी दवाओं की खेप भेजी है। भारत और अमरीका कोची में जुनूबी बहरी कमान में आज धमाका खेज हथियारों के बंदोबस्त की मशक शुरू करेंगे। रूस ने अब नए हुर्मुज जैसे दिफाई एतबार से अहम समुद्री रास्तों पर इन्हिसार को कम करने के लिए भारत तक रेल रास्ते की तजवीज रखी है। शदीद समुद्री तूफान डॉल्फिन चीन के मशरकी साहिल पर पहुंच गया है, जिससे चीन के मशरकी साहिल पर शदीद बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं। और महाराजा उर्मू पांडे ने ताशकंद में एशियन जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मर्दों के 65 किलोग्राम जुमरे में चांदी का तमगा जीता है। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर आप हमें सुन रहे हैं। पेश है प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा।

लता मंगेशकर और चितल कर की आवाजों में ये नगमा था आजाद फिल्म से। अब सुनिए मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर को। फिल्म का नाम है मेरा गांव मेरा देश।

जानी मेरा नाम फिल्म का नगमा आपने किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में सुना। अब सुनिए मुकेश सुमन कल्याणपुर और महेंद्र कपूर को फिल्म है श्रीमान सत्यवादी।

के हाथों ही तो ये मर्द बिचारे तन है, ये मर्द बिचारे तन है, ये तिरछी नजर का दिल।

0: बात कहूँ वल्ला ये हुस्न सुभान अल्लाह, जब नाम लिया जिस दिल थाम लिया तो कैसी कही।
1: बस तुमने कदर की

पूर्णिमा और उदित नारायण को आपने सुना। फिल्म टीम हीरो नंबर वन। आखिरी पेशकश परिणीता फिल्म से आवाज सोनू निगम और श्रेया घोषाल की है।

0: परिणीता फिल्म के इस दो गाने के साथ ही आज का मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम अब खत्म हुआ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब पेश है प्रोग्राम सुर्खियों में।
1: आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए हर घर तिरंगा, देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना के उत्सव पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रही है सोनू सूद।
2: आगामी 15 अगस्त को भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज हर घर तिरंगा 2026 अभियान का शुभारंभ हुआ और 17 अगस्त तक इस राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन के तहत करोड़ों भारतवासी हमारी एकता, अखंडता और संप्रभुता दर्शाने वाले राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को गर्व और उल्लास से फहराएंगे। इस वर्ष हर घर तिरंगा अभियान और भी खास है क्योंकि वह हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ को समर्पित है। हर घर तिरंगा 2026 अभियान के महत्व और विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन जी हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में।
3: नमस्कार।
2: अशोक जी, सरकार ने 2022 में हर घर तिरंगा के तहत जो हर नागरिक को राष्ट्रीय ध्वज अपने घर पर या अपने कार्यालय पर फहराने का जो अधिकार दिया है, उसे आप कितना महत्वपूर्ण समावेशी पहल मानते हैं और भावनात्मक रूप में ये कैसे सभी भारतवासियों को जोड़ता है?
3: जैसे आपने कहा कि 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम को चलाया था, लोगों से आह्वान भी किया था और इस बार भी अगर मैं कहूं तो 26 जुलाई 2026 को जो प्रसारित मन की बात के 136वें एपिसोड में भी प्रधानमंत्री ने फिर से भारतवासियों को, भारतवंशी जो विदेश में रहते हैं उन सबको स्वतंत्रता दिवस को लेकर हर घर तिरंगा अभियान को फिर से इस बार भी पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाने का आह्वान किया था। उन्होंने कहा था कि ये तिरंगा हमारे संविधान के आदर्शों को संजोए हुए है और ये देश को एकजुट करता है। तो इस आह्वान का अर्थ यही था कि लोगों को याद कराना कि जब इस बार 9 अगस्त आज से और 17 अगस्त तक ये जो हर घर तिरंगा अभियान चलेगा, इसमें लोग बढ़ चढ़ कर भाग लें और इस वर्ष अपने घरों पर तिरंगा फहराने और उत्सव को भव्य बनाने की अपील भी की थी कि लोगों से तिरंगे के साथ अपनी तस्वीर को सोशल मीडिया पर करके और अपनी प्रोफाइल पिक्चर को बदलने का भी आग्रह प्रधानमंत्री हर साल करते हैं। तो इस बार की कुछ विशेषताएं जिनकी ओर आपने भी ध्यान दिया वो ये है कि ये अभियान राष्ट्रव्यापी जो है 9 अगस्त से 17 अगस्त तक चलेगा और इसको जैसे आपने भी कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ भी इसको जोड़कर इस बार मनाया जाएगा। तो गीत के बोल और धुन हमारी तस्वीर पर खुद ब खुद जुड़ जाएंगे, ये एक विशेष फीचर इस बार है। कुल मिलाकर जो 9 दिन ये चलेगा और उसकी जो सूत्रधार होते हैं वो हमारी कल्चर मिनिस्ट्री जो होती है वो इसका अभियान करती है और एक और महत्वपूर्ण पहलू इस बार जोड़ा गया है।
2: इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जो आपने अभी जिक्र किया कि बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज भी तिरंगा के आसपास प्लान की गई है, यात्राज, रैलीज, कॉन्सर्ट्स, एग्जीबिशंस और क्विज भी है। सो केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस अभियान का जब शुभारंभ किया तो उन्होंने नागरिकों से इन गतिविधियों में सक्रियता से भाग लेने का भी आह्वान दिया। सो आपको लगता है इससे एक जागरूकता फैलेगी सब नागरिकों में, जो अतीत का हमारा गौरव है, वर्तमान की जो कर्तव्य निष्ठा की आवश्यकता है और भविष्य के सपनों का जो एक प्रतीक बना है तिरंगा, उसके बारे में ज्यादा जागरूकता फैलेगी?
3: देश के हर जिले और ब्लॉक में स्तर पर स्थानीय सांसदों, विधायकों और सामाजिक संगठनों के

0: नेतृत्व में विशाल तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। इनमें युवाओं जेंजी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का एक तरह से मौका मिलेगा। और इस बात का भी विशेष ध्यान दिया गया है कि झंडा फहराने के दौरान और अभियान खत्म होने के बाद तक झंडे को उतारते समय जो है हमको कई नियमों का पालन करना होगा। और इसीलिए जब हम इसको राष्ट्रव्यापी आंदोलन कहते हैं तो इसका मुख्य देश भारत की स्वतंत्रता दिवस के जो अवसर पर प्रत्येक नागरिक जो है वो इसमें उसका जुड़ाव हो। और एक और बहुत महत्वपूर्ण पहल इस बार की गई है कि उसका नाम रखा गया है सूर्य पथ तिरंगा, यानी विदेश मंत्रालय के सहयोग से एक अनोखी एक पहल शुरू की जा रही है। दुनिया के 54 देशों में मौजूद जो भारतीय दूतावास या हाई कमीशन है या कॉन्सुलेट है वो उगते सूरज की दिशा के अनुसार पूर्व से पश्चिम की ओर एक के बाद एक तिरंगा फहराएंगे। यानी जो हमारा सबसे पूर्व में फिजी देश है वहां पर जो हमारा एम्बेसी है वो झंडा फहराने की शुरुआत करेगी। और जो जो सूर्य आगे बढ़ेगा तो सैन फ्रांसिस्को में जो अमेरिका का बिल्कुल पश्चिमी शोर है वहां पर सूर्य अस्त के समय तक ये झंडा फहराया जाएगा। तो ये एक हमारा जो डायस्पोरा है उनको साथ जोड़ने की बात है। और हमारे जो डिप्लोमेटिक मिशन है वो दुनिया भर के देशों को भी एक संदेश देना की कोशिश होगी कि जो हमारे देश में स्वतंत्रता का दिवस है उसको हम कितने ढंग से मनाते हैं। और उसका एक हिस्सा हमारा बन गया है हर घर तिरंगा। हमारे जो लोग जैसे संस्कृति मंत्रालय है उसका जो पोर्टल है उस पर पहली बार एक तकनीकी टूल को जोड़ा गया है। अपने देश के नागरिक राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सही धुन में गाने के लिए उनको ऑनलाइन ट्यूटोरियल दिए गए हैं और वोकल गाइडेंस दिया गया है कि आपको राष्ट्रीय गीत सचमुच में ठीक ढंग से कैसे गाना चाहिए। तो इसके साथ एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि पिछले कुछ वर्षों से प्रधानमंत्री के इनिशिएटिव पर अब दिल्ली कलकत्ता और अमृतसर जैसे प्रमुख शहरों में मौन जुलूस निकाले जाते हैं क्योंकि इसको विभाजन की त्रासदी पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी स्क्रीन की जाती हैं। क्योंकि अब ये केवल दो ही इसके महत्व नहीं है, यानी हर घर तिरंगा हो और वंदे मातरम हो, साथ में जो विभाजन की विभीषिका थी उसको भी लोगों तक पहुंचाकर कैसे जिस तरह से भारत का विभाजन हुआ और उसमें से कैसी विभीषिका हुई उसको भी इस बार से कुछ सालों से ये लोगों के साथ नई पौध के साथ नई जनरेशन के साथ उसको जोड़ने की दृष्टि से भी ये कार्यक्रम साथ में लिया गया है। तो ये लोगों की सक्रिय भागीदारी करना, उनके साथ उनको ये पता चलना चाहिए कि ये सब कुछ हम लोग क्यों करते हैं। हमारी नई पीढ़ी जो है उसको ये जानकारी रहनी चाहिए कि कितनी कठिनाइयों के बाद भारत ने स्वतंत्रता हासिल की थी, कितने लोगों ने बलिदान दिया था और कैसे विभाजन के दौरान एक बड़ी भारी विभीषिका हुई जिसमें लाखों लोगों को जान पड़ी।
1: पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे भी मनाया जा रहा है 14 अगस्त को, ताकि प्रेरणा मिले कि हम किस संघर्ष और बलिदान से आजादी हमने प्राप्त की है उसका मूल्य हम समझें। तो आपको लगता है इससे प्रेरणा मिलेगी सब नागरिकों को, खासकर युवाओं को, कि राष्ट्र निर्माण में यथा योग्य जितना भी कर सके योगदान करें और अलगाववाद से बचें?
0: बिल्कुल, देखिए पहले के कई दशकों तक न तो कभी तिरंगा का महत्व समझाया गया था हमारी पीढ़ी को स्वतंत्रता के बाद, और न ही कोई जो विभाजन की विभीषिका है उसके बारे में बताया गया था। नई जनरेशन को मालूम ही नहीं था कि कितने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिए और वो किस किस तरह के बलिदान थे, उसमें भगत सिंह की बात आती है। लेकिन ये जो विभीषिका हुई पार्टीशन की इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती थी। अब कुछ वर्षों से इसके बारे में इसलिए उसकी प्रदर्शनियां लगाई जा रही हैं, उसकी फीचर फिल्म बन रही हैं और लगातार एक अभियान के तहत इन सारी चीजों को नई पौध को नई जनरेशन को अगर हम बताते रहेंगे तो उनको भी और वो भी आगे आने वाली पीढ़ियों को भी इसके बारे में बताएंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि ये कार्यक्रम और ये आयोजन ये जो अभियान है ये सचमुच में अब एक जन आंदोलन बन चुका है। इसमें प्राइवेट सेक्टर, कारपोरेट, रिलीजियस स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन इन सबको इसके साथ में भागीदारी करनी चाहिए और तभी ये जो हमारा अभियान है ये और ज्यादा तेजी से लोगों की समझ में आएगा।
1: बिल्कुल। सो अशोक जी, जैसा आप कह रहे हैं कि जन भागीदारी ऑलरेडी ये बन चुका है लेकिन और भी ज्यादा से ज्यादा इसमें लोगों को आगे आना चाहिए। आपको लगता है कि इससे एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेवारी भी आती है कि जो हमें आजादी हमें मिली है इतनी मुश्किल से, उसको हमें संभाल के रखना है और हमें अपनी समृद्धि को आगे बढ़ाना है। और जो हमारी फ्रीडम फाइटर्स हैं, जैसा आपने कहा स्वतंत्रता सेनानी या जो आंदोलनकारी रहे जिनके संघर्ष से हमें आजादी मिली, उनके अलावा जो वर्तमान सशस्त्र बल है जो रक्षा करते हैं हमारी, उनके प्रति भी एक आदर भाव सम्मान जागता है।
0: बिल्कुल, क्योंकि जो स्वतंत्रता के बाद बलिदान हुए हैं वो युद्ध में लड़ाइयों में हमारे जो वीर सैनिक जवान उन्होंने जो शहादत दी है उसको भी याद करने का यही अवसर होता है। और इसीलिए ये जो हर घर तिरंगा है ये केवल आजादी के परवानों की याद नहीं दिलाता बल्कि उसके बाद आजादी को बनाए रखने में वीर सेनानियों जो इसमें बलिदान होता है जो शहीद होते हैं और लगातार आतंकवाद से लड़ते हुए भी शहीद होते हैं तो उनके प्रति भी श्रद्धांजलि का एक प्रतीक बनता है। और इसीलिए हर घर तिरंगा के साथ साथ जो इसके साथ वंदे मातरम को जोड़ा गया है, क्योंकि वंदे मातरम भी स्वतंत्रता संग्राम के समय हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को बहुत प्रोत्साहित करता था और एक जोश भरता था। और उसके साथ राष्ट्रीय गान के साथ जैसे उसको जोड़ दिया गया है तो इससे हमारे सेनानियों को भी एक आत्मविश्वास बढ़ता है कि वो जो पहरेदारी कर रहे हैं वो देश को एक सुरक्षित रखने के लिए, और हम लोग भी अपने घरों में रात को इसीलिए सो पाते हैं देश सुरक्षित हाथों में है, तो ये हमारे जवानों के प्रति भी एक श्रद्धांजलि का बहुत बड़ा अवसर है।
1: अशोक जी, एक सामूहिक पहचान है हम सभी की, प्रत्येक भारतवासी के लिए तिरंगा और हमारा राष्ट्रीय गीत, राष्ट्र ध्वज दोनों एक कहें कि ड्यूल सेलिब्रेशन है। और अगर हम देखें कोई भी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होता है या खेल आयोजित होते हैं तो हरेक देश जो उनका ध्वज है और उनका राष्ट्रीय गीत है वो बहुत महत्व रखता है। सो उस संदर्भ में भी एक अपनी पहचान बनाने के लिए और पूरा जो हमारा विविध देश है, इतना बड़ा देश है, उसको एक सूत्र में बांधने के लिए आपको लगता है कि इस तरह के आयोजन बहुत महत्वपूर्ण है?
0: बिल्कुल, देखिए एक भारत श्रेष्ठ भारत का जब हम बात करते हैं तो उसमें वो जो एक भारत है तो उसमें एकता बहुत आवश्यक है। तो जितनी भी देश में विविधता है उनके रहते हुए भी अनेकता में एकता भारत की विशेषता, ये जो एक मंत्र है और ये भारत के हर क्षेत्र को, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो चाहे दक्षिण राज्य हो, इन सबको एक माला में पिरोए रखता है। और इसी तरह भाषा और जाति और धर्म इन सब को मिलाकर रखना बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो उसके लिए देशभक्ति की भावना जगाने के लिए जो प्रतीक है वो राष्ट्रीय ध्वज ही है। तो उसके प्रति सम्मान को अगर हम और गहरा करेंगे, उसके साथ हम राष्ट्रगीत के साथ राष्ट्रगान को भी हम बढ़ावा देंगे तो कोई कारण नहीं है कि ये जो अभियान है ये पूरे देश और समाज को एक सूत्र में पिरोने में और अधिक योगदान करेगा।
1: अशोक जी, पहले तो बहुत ही फॉर्मल और ऑफिशियल ही लहराया जाता था हमारा ध्वज, लेकिन अब जिस तरह से सब नागरिकों को ये अधिकार प्राप्त हुआ है, जैसा आपने भी अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया था कि जो ध्वज है उसकी गरिमा और उसको लहराने के कुछ नियम, अगर आप संक्षेप में जो प्रमुख गाइडलाइंस है वो बता सके।
0: बिल्कुल, देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग अपने घरों, निजी प्रतिष्ठानों, सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों में तिरंगा फहराएंगे और इसको फहराते समय जो एक ध्वज संहिता में संशोधन किया गया है, यानी फ्लैग कोड जो है उसमें भी बदलाव किया गया है। यानी आप यदि झंडा खुले आसमान में हो या किसी घर पर हो तो उसे दिन और रात 24 घंटे फहराया जा सकता है। पहले ऐसा माना जाता था कि दिन में फहराकर उसको जो है रात को उतार लिया जाए, तो ये अभी बदलाव किया गया है कि नागरिक जो है वो आधिकारिक जो वेबसाइट पर डिजिटल रूप से भी अपना झंडा पिन कर सकते हैं, तिरंगे के साथ सेल्फी अपलोड कर सकते हैं और उससे उनको भागीदारी का प्रमाण पत्र भी मिलेगा, वो भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कुछ एक चीजें इसमें जोड़ी गई है और मैं समझता हूँ कि जो ये अभियान है ये नागरिकों के दिलों में राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना को और ज्यादा गहरा करेगा और जागरूकता बढ़ाएगा, विशेष तौर से नई पीढ़ी के मन में, क्योंकि उनको जब तक हम लगातार अपने देश की विविधता को भुलाकर सभी में राष्ट्रीय गौरव एक साझा प्रतीक के रूप में एकजुट करेंगे नहीं तो कोई कारण नहीं है कि ये जो हमारी नई पीढ़ी है वो इससे वंचित रहे। इसलिए उनको जोड़ के रखने के लिए ये आयोजन और ये अभियान बहुत ही आवश्यक है और उसी तरफ देश अब चल भी रहा है।
1: अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हर घर तिरंगा अभियान 2026 के महत्व और विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे हर घर तिरंगा, देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना के उत्सव पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर हमारी नशरियात जारी हैं। अब आलमी खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद आजम खान से आलमी खबरें सुनिए। भारत ने बोलीविया की सरकारी जाने सेहत की सलाहियत को तकवीत पहुंचाने की खातिर उसे 8 मैट्रिक टन जिंदगी बचाने वाली और लाजमी दवाओं की खेप भेजी है। भारत और अमरीका कोची में जुनूबी बहरी कमान में आज धमाका खेज हथियारों को नाकारा बनाने की मशक शुरू कर रहे हैं। रूस ने आबन हरमुज जैसे दिफाई एतबार से अहम समुद्री रास्ते पर इन्हिसार को कम करने के लिए भारत तक रेल लूट की तजवीज रखी है। शदीद समुद्री तूफान डॉल्फिन चीन के मशरकी साहिल पर पहुंच गया है, जिससे वहां शदीद बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं। और महाराजन उर्वी पांडियन ने ताशकंद में एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में मर्दों के 65 किलोग्राम जुम्मे में चांदी का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। भारत ने बोलिविया को जिंदगी बचाने वाली लाजमी दवाएं रवाना की हैं। भारत ने 8 मैट्रिक टन दवाओं की खेप बोलिविया की सरकारी अफजान सेहत की सलाहियत को ताउन देने और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रवाना की है। वजारत खारजा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत इजहार यकजहती और मुश्तरक तरक्की के जरिए दूसरे मुल्कों को ताउन जारी रखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। भारतीय बहरिया अमरीकी बहरिया की जानिब से धमाका खेज मवाद को नाकारा बनाने से मुतालिक मुश्तरक मश्क ईओडी 2026 आज से 14 अगस्त तक कोची में वाक जुनूबी बहरी कमान में मुनक्किद की जाएगी। वजारत दिफा के मुताबिक इस बाहमी मश्क का मकसद दोनों बहरी अफवाज के माहिर गोताखोर और धमाका खेज मवाद को नाकारा बनाने वाली टीमों के दरमियान बाहमी ताउन और अमली हमहंगी को मजीद मुस्तहकम करना है। 5 रोजा इस मश्क के दौरान माहिरों के दरमियान तजर्बाती और मालूमात का तबादला, मुश्तरक तरबियती सरगर्मियां, मुख्तलिफ आलात का अमली मुजाहरा और सूरत हाल पर मबनी अमली मश्कें की जाएंगी। वजारत दिफा के मुताबिक भारतीय और अमरीकी बहरिया साल 2005 से मुश्तरक मश्क करती आ रही हैं। आइंदा होने वाली मश्क इस सिलसिले की 8वीं कड़ी होगी। बहरिया के सरबराह एडमिरल कृष्णा स्वामी नाथन मॉरिशस के 4 रोजा दौरे पर हैं। यह दौरा आज से शुरू हुआ है। वजारत दिफा ने कहा है कि दौरा मॉरिशस के साथ दिफाई ताल्लुकात को वसी करने, बहरी सतह पर बाहमी ताउन को मुस्तहकम करने के लिए भारत की लगातार कोशिशों का एक हिस्सा है। दौरे के दौरान वो मॉरिशस की हुकूमत की सीनियर क्यादत के साथ बातचीत करेंगे और बहरी सिक्योरिटी, दिफाई ताउन, सलाही साजी और फौजी इश्तराक जैसे बहरी मफाद के उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। मुश्तदाई के दौरान गवर्नमेंट की मार्केट प्लेस जीईएम पर मजमू कारोबार 422 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,55,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कॉमर्स सनतों के महकमे के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि खवातीन की क्यादत वाले 2 लाख से ज्यादा छोटे और बहुत छोटे कारोबारी इदारों समेत मस्कुरा पोर्टल पर इस तरह के 12 लाख से ज्यादा कारोबारी इदारे, 42,000 से ज्यादा स्टार्टअप इदारे रजिस्टर्ड हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जीईएम खुद किफालत के कलीली वसीले के तौर पर उभर रहा है और इससे एक विकसित भारत की बुनियाद भी मजबूत हो रही है। पूरे मुल्क में हर घर तिरंगा तहरीक जोर पकड़ती जा रही है। महाराष्ट्र में हर घर तिरंगा मुहिम हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ शुरू हो गई है। रियासत के मुख्तलिफ जिलों में तिरंगा रैलियों का एहतमाम किया गया, इनमें बीड, थाने और बुलधाना शामिल है। उधर मणिपुर में वजीर आला रामनाम खेमचंद ने अपनी रिहाईगाह से इस मुहिम में हिस्सा लिया। उन्होंने लोगों पर जोर दिया खुद को पहले भारतीय फिल्म मणिपुर तस्वीर करें। अमरीका की मरकजी कमान सेंटोकम ने कहा है कि अमरीका की बहरी अफवाज ने ईरान के खिलाफ अमरीकी नाकाबंदी नाफिज करने की कोशिश के तहत 55 तजारती बहरी जहाजों का रुख बदल दिया है। सेंटकॉम ने सोशल मीडिया पर अपने एक बयान में कहा है कि फौजी मिशनों जिसमें नाकाबंदी का निफाज भी शामिल है की हिमायत के लिए मगरबी एशिया में 20 से ज्यादा अमरीकी जंगी बहरी जहाज तैनात हैं। ये ताजा पेशरफ समुद्री कार्रवाई से मुतालिक पहले सामने आने वाली रिपोर्ट्स के बाद हुई है। सेंटकॉम ने यह भी कहा है कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 30 से ज्यादा बहरी जहाजों को नाकाबंदी से गुजरने की इजाजत दी गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई ने इस्लामिक पादरी इंकलाब IRGC के साबिक सरबरा मोहसिन रजाई को मोहम्मद बाकर जोलगरार की जगह मुल्क के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल SNSC के लिए अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया है।

इससे पहले अहदा अली लारिजानी के पास था, जिनको मार्च में अमरीकी इसराइली हवाई हमलों में हलाक कर दिया गया था। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। रूस ने बहरीन के लिए एक रेलवे रास्ते का पता लगाने की तजवीज रखी है, जिससे भारत का अहम बहरी रास्तों पर इन्हसार कम होगा। रूस के नायब वजीर आजम भारत कुसुमलिन ने बताया कि मुतबादिल रास्तों से आबनाए हुरमुज और आबनाए बॉस्फोरस समेत दो कलीली आबी गुजरगाहों से जुड़े खतरनाक रास्तों से गुजरने के खतरे से बचने में मदद मिल सकती है। रूस के सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक जनाब कुसुमलिन ने बताया कि तुर्कमानिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से गुजरने वाले रेल रास्तों का पता लगाया जा सकता है, ताकि भारत को आसानी से रसाई फराहम की जा सके। ये तजवीज मगरबी एशिया में जारी जंग के पेश नजर सामने आई है, जिसमें आबनाए हुरमुज के रास्ते जहाजों के गुजरने में रुकावटें खड़ी कर ली हैं। मुजवजा रेलवे रास्ते से वसी जोग्राफियाई, सियासी और माशी मजमिरात पैदा हो सकते हैं, क्योंकि इससे वस्ती जनूब एशिया के जरिए बहरीन के लिए रूस को मुतबादिल बहरी रास्ता फराहम हो सकता है। पाकिस्तान के नशीबी जनूबी वजीरिस्तान में टोई खुल्ला तहसील के जरमिलीन इलाके में नामालूम मुसल्ला हमलावरों ने दो कबायली रहनुमाओं को गोली मारकर हलाक कर दिया। ये कबायली एक मोटर गाड़ी में जा रहे थे कि जरजोंडा इलाके में मुसल्ला अफराद ने उन पर फायरिंग कर दी। दोनों कबायली लीडरों की मौके पर ही मौत हो गई। हुक्काम ने इन दोनों की शनाख्त कर ली, जो एक सरकर्दा कबीले सुलेमान खेल से ताल्लुक रखने वाले हाजी गुल और मलिक बादशाह थे। हमलावर गोलियां चलाने के फौरन बाद फरार होने में कामयाब हो गए। इस जानलेवा हमले से जनूबी वजीरिस्तान और वसी तर खैबर पख्तूनख्वा सूबे में सिक्योरिटी निजाम के ठप होने की अक्कासी होती है, जहां लोगों को निशाना बनाकर होने वाली हलाकतों, दबाखेज हरबों से हमलों, तावान के लिए अगवा करने, जबरन रुपया वसूल करने और सिक्योरिटी एहलकारों पर छुपकर हमले करने के वाकयात का सामना करना पड़ रहा है। शदीद समुद्री तूफान डॉल्फिन चीन के मशरकी साहिल पर पहुंच गया है। इस तूफान से शदीद बारिश हुई है और तेज हवाएं चल रही हैं। सैलाब और मिट्टी के तूले खिसकने की वार्निंग जारी कर दी गई है। चीन के महकमा मौसमियात के हुक्काम ने बताया कि तूफान जेजियांग सूबे में युहान के नजदीक आया। इसकी रफ्तार अपने मरकज के नजदीक 151 किलोमीटर फी घंटा थी। कम से कम 30,300 लोगों को बाहिफाजत निकालकर महफूज मकामात पर पहुंचाया जा चुका है, जबकि शंघाई ने तकरीबन 1500 परवाजें मनसूख कर दी हैं। आज जेजियांग, शंघाई, शिमाली शुजान, शिमाली मशरकी, जिक्षी, अनहुई और जंगशू समेत बहुत से इलाकों में शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। उज्बेकिस्तान के शहर ताशकंद में एशियन जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में मर्दों के 65 किलोग्राम जुमरे में भारत के वेटलिफ्टर महाराजन और बुलियान ने चांदी का तमगा जीता है। भारतीय वेटलिफ्टर ने स्नैच में 128 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 157 किलोग्राम वजन उठाए। इस तरह उन्होंने मजमू तौर पर 285 किलोग्राम वजन उठाकर बेहतरीन जाती रिकॉर्ड बनाया। वियतनाम के हॉन्ग थिक्स ने कुल 291 किलोग्राम वजन उठाकर सोने का तमगा जीता। 20 साल से कम उम्र के आलमी एथलीट चैंपियनशिप में भारत के बसंत कुमार मेघवाल और शाहनवाज खान ने अमेरिका के शहर इवाना में हाई और लॉन्ग जंप के मुकाबले में तमगे जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट खिलाड़ी होने का एजाज हासिल किया। बसंत कुमार ने मर्दों की हाई जंप में 2.21 मीटर की अपनी बेहतरीन कारकर्दगी के साथ चांदी का तमगा जीता, जबकि शाहनवाज खान ने लॉन्ग जंप में मर्दों के 7.84 मीटर की बेहतरीन छलांग लगाकर कांसे का तमगा अपने नाम किया। अहमदाबाद में 13 से 23 अगस्त तक 18 से कम उम्र तक के FIBA एशिया बास्केटबॉल कप की मेजबानी के फराइज अंजाम देगा और भारत इस एशिया बास्केट कप में 14 अगस्त को जापान के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज करेगा। भारतीय टीम ग्रुप मरहले में कोरिया, जापान, कजाकिस्तान का सामना करेगी। टूर्नामेंट का फाइनल अहमदाबाद में 23 अगस्त को खेला जाएगा। स्क्वैश में भारत ने गुज़िश्ता रोज़ मुंबई में मुनक़िद होने वाले FISU आलमी यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप के मुकाबले में चांदी का तमगा हासिल किया और सिंहवाल, समीना रियाज, सूरज कुमार चंद और निरुपमा दुबे पर मुश्तमिल भारतीय टीम फाइनल मुकाबले में हांगकांग चीन से गेम्स के फर्क की बुनियाद पर हार गई, जबकि इससे पहले यह मुकाबला 2-2 से बराबर था। खास खबरें एक बार फिर। भारत ने बोलीविया की सरकारी जाने सेहत की सलाहियत को तकलीफ पहुंचाने खातिर उसे 8 मीट्रिक टन जिंदगी बचाने वाली लाजमी दवाओं की खेप भेजी है। भारत और अमरीका कोची में जुनूब

0: बहरी कमान में आज धमाका खेज हथियारों को नाकारा बनाने की मश शुरू कर रहे हैं। रूस ने अपने हरमुज जैसे दिफाई एतबार से अहम समुद्री रास्तों पर इंहिसार को कम करने के लिए भारत तक रेल रूट की तजवीज रखी है और महाराजन उर्विंग पांड्यान ने ताशकंद में एशिया जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में मर्दों के 65 किलोग्राम जोन में चांदी का तमगा जीता। आकाशवाणी से खबरों का बुलेटिन अब खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारे नशरियात जारी हैं। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर।

मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों की सुर्खियों पर। भारत ने बोलीविया की सरकारी इफ़्ज़ान सेहत की सलाहियत को तकवीत पहुंचाने के खातिर उसे 8 मैट्रिक टन जिंदगी बचाने वाली और लाजमी दवाओं की खेप भेजी है। भारत और अमरीका कोच्चि में जनूबी बहरी कमान में आज धमाकेखेज हथियारों को नाकारा बनाने की मशक शुरू कर रहे हैं। रूस ने अपनाए हुर्मुज जैसे दिफाई एतबार से अहम समंदरी रास्तों पर इन्हिसार को कम करने के लिए भारत तक रेल रूट की तजवीज रखी है। शदीद समुद्री तूफान डॉल्फिन चीन के

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की जो फिल्म है वो है ओम शांति ओम। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन कलाकारों की जिन्होंने ओम शांति ओम को यादगार बना दिया। फिल्म में शाहरुख खान ने दोहरी भूमिका निभाई, पहले ओम प्रकाश मखीजा जो 70 के दशक का एक जूनियर आर्टिस्ट है, और फिर पुनर्जन्म के बाद ओम कपूर एक सुपरस्टार। शाहरुख खान इस फिल्म के लिए अपने बॉडी के ऊपर बहुत मेहनत की। दर्दे डिस्को के लिए शाहरुख खान ने पहली बार बड़े पर्दे पर अपने सिक्स पैक्स एब्स दिखाए। और अब बात करते हैं दीपिका पादुकोण की, जिन्होंने बॉलीवुड में अपना पहला कदम रखा इसी फिल्म से बिना कोई स्क्रीन टेस्ट दिए। फराह खान ने उन्हें लॉन्च किया और शांति प्रिया के किरदार में दीपिका की खूबसूरती और शानदार स्क्रीन प्रेजेंस ने सबका ध्यान खींच लिया। पहली ही फिल्म से दीपिका रातों रात स्टार बन गई। फिल्म में खलनायक मुकेश मेहरा की भूमिका निभाई अर्जुन रामपाल ने, और उनके अभिनय को भी काफी पसंद किया गया। इसके अलावा साथी कलाकारों में नजर आए थे श्रेयस तलपड़े, और इनके साथ थे और भी कुछ कलाकार। अब एक दिलचस्प बात उस गाने पर जिसकी चर्चा आज भी होती है, दीवानगी दीवानगी। इस गाने में बॉलीवुड के 31 बड़े सितारे एक साथ नजर आए थे। इतने सारे सुपरस्टार को एक ही गाने में लाना अपने आप में एक रिकॉर्ड जैसा माना गया है। तो चलिए आइए सुनते हैं उसी गीत को और महसूस करते हैं एक साथ 31 सितारों को।

0: नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुद्धू।
2: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो
3: पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की जो फिल्म है वो है ओम शांति ओम, और मैं आपके साथ हूं आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। श्रोताओं, अब बात करते हैं फिल्म के कहानी की। कहानी शुरू होती है 1970 के दशक से। ओम प्रकाश मखीजा एक जूनियर आर्टिस्ट है जो फिल्मों में छोटे मोटे रोल करता है, लेकिन सपना सुपरस्टार बनने का देखता है। वह मशहूर अभिनेत्री शांति प्रिया का बहुत बड़ा प्रशंसक है। एक दिन ओम की मुलाकात शांति प्रिया से होती है और धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि शांति प्रिया सिर्फ एक स्टार नहीं बल्कि एक संवेदनशील इंसान भी है। लेकिन कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है जब फिल्म निर्माता मुकेश मेहरा की सच्चाई सामने आती है। मुकेश अपने करियर और लालच के लिए शांति प्रिया के साथ विश्वासघात करता है। आग में घिरी उस भयावह घटना में शांति प्रिया की मौत हो जाती है और ओम भी उसे बचाने की कोशिश करते हुए अपनी जान गंवा देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सालों बाद ओम प्रकाश का पुनर्जन्म होता है। इस बार वह बनता है ओम कपूर, एक अमीर और मशहूर फिल्म स्टार। धीरे धीरे उसे अपने पिछले जन्म की याद आने लगती है। फिर शुरू होती है सच का सामने आने वाली और शांति प्रिया को न्याय दिलाने की कोशिश। फिल्म की खास बात यह है कि इसमें रहस्य भावना

एक कॉमेडी और बॉलीवुड पर हल्का फुल्का व्यंग सब कुछ साथ चलता है। क्लाइमेक्स में फिल्म शूटिंग और वास्तविक घटनाओं को जिस तरह फिल्माया गया है वो दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की जो फिल्म है वो है ओम शांति ओम। फिल्म का आप बात करेंगे हम फिल्म के संगीत की। फिल्म का संगीत तैयार किया था विशाल शेखर की जोड़ी ने। गीत लिखे थे जावेद अख्तर, विशाल दादलानी और कुमार ने, जबकि बैकग्राउंड स्कोर दिया था संदीप चौटा ने। गायकों की सूची भी शानदार थी। के शान, उदित नारायण, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, सोनू निगम, राहत फतेह अली खां, सुखविंदर सिंह और अभिजीत भट्टाचार्य ने अपनी आवाजें दी। इस फिल्म के गाने सिर्फ हिट ही नहीं हुए बल्कि 2007 की पहचान बन गए। यह एल्बम 2007 में भारत का सबसे ज्यादा बिकने वाला संगीत एल्बम बना और इसकी लगभग 20 लाख यानी 2 मिलियन यूनिट्स बिकी थी। उस दौर में ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। दीवानगी सॉन्ग की शूटिंग में आप इसमें एक बड़ी सेलिब्रेशन थी। इतने सारे सितारों की तारीख मिलना भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात थी। खास बात यह है कि फिल्म के अलग अलग दौर 70 और मॉडर्न टाइम के हिसाब से संगीत का जो टोन था वो भी बदला गया था, जो विशाल शेखर की बड़ी सफलता मानी जाती है। तो आइए चलते हैं अगले गीत की ओर।

श्रोताओं, अब बात करते हैं फिल्म की सफलता की। ओम शांति ओम लगभग 40 करोड़ रुपए के बजट में बनी थी और रिलीज के बाद इसने शानदार कमाई की। ये 2007 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनी और उस समय की सबसे बड़ी बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर में शामिल हो

गई। ये यहां तक कि रिलीज से पहले ही फिल्म की एडवांस बुकिंग के रिकॉर्ड टूटने लगे, खासकर दिल्ली और बड़े शहरों के सिनेमाघरों में। अवार्ड्स की बात करें तो फिल्म ने को 53वें फिल्म फेयर अवार्ड में 13 नामांकन मिले। इसमें से फिल्म ने दीपिका पादुकोण के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला डेब्यू और बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स का पुरस्कार जीता। फिल्म के विजुअल सेट्स और 70 के दशक को दोबारा जीवित करने की कोशिश की भी खूब तारीफ हुई। यह फिल्म बॉलीवुड के इतिहास को दिखाने वाली खास फिल्मों में से एक है। एक और खास बात, फिल्म रिलीज होने के बाद फिल्म पत्रकार और लेखक मुश्ताक शेख ने द मेकिंग ऑफ ओम शांति ओम किताब लिखी, जिसमें फिल्म के निर्माण, शूटिंग और पर्दे के पीछे की कई दिलचस्प घटनाओं का जिक्र किया गया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी फिल्म ओम शांति ओम के बारे में ढेर सारी जानकारी। इसी के साथ हमारे कुछ श्रोताओं के मेल आ गए हैं, उसे भी हम पढ़ लेते हैं। ये है लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी, रघुनाथ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से। और ये है जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से, मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसार और नरगिस खातून। और आगे चलते हैं और ये है भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से, ये लिखते हैं कि एक ही फिल्म से कार्यक्रम सुन रहे हैं, रोशन लाल देवगन और हेमलता और डिम्पल। गांव लोहागढ़ ठाकुरावाला से स्वर्णजीत, दलजीत, राजदीप, गुंडूर और गुलरार और अवीरराज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आगे चलते हैं और देखते हैं और हमारे पास किन श्रोताओं के मेल आए हैं। महाराष्ट्र से संतोष और विनोद जी का आया है मेल हमारे पास। और ये है नलेश्वर नगर नरवेल से पीएस निर्मला और विशाल। और ये है पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन जी का। और हम आगे चलते हैं, ये मुकेश भट्ट जी ने लिखा हुआ है हमें, सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांतिनगर सोनीपत से हमारे साथ है। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और बहुत सारे श्रोता और भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन समय की कमी के कारण हम उनका नाम नहीं पढ़ पा रहे, उसके लिए बहुत बहुत आपसे माफी मांगते हैं।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही एक ही फिल्म से कार्यक्रम समाप्त करने की मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: दी गई है। अपोजिशन के शोरगुल के दौरान जनाब मनोहर लाल ने जिमनी सवालों के जवाब दिए। हंगामा आराई जारी रहने पर चेयरमैन ने ऐवान की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। इससे कबल दिन में 11 बजे जब ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो मुख्तलिफ वजीरों ने अपनी अपनी वजारतों से मुतालिक दस्तावेजात ऐवान की मेज पर पेश की। पार्लियामानी कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स भी पेश की गई, जिनमें खजाना, हाउसिंग और शहरी उमूर, रेलवे, समाज इंसाफ और तफवीज इख्तियारात से मुतालिक कमेटियां शामिल थीं। इसके बाद सदनशीन सीपी राधाकृष्णन ने वक्फ सिफर शुरू किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। झारखंड में भर्ती इम्तिहानात में मुबैना बेजाबतगियों के मामले पर तलबा ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से झारखंड कानून साज असम्बली की जानिब मार्च शुरू कर दिया है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेएसएससी में इस्लाहात से मुतालिक मंच की क्यादत में तलबा का एहतजाज आज 17वें रोज में दाखिल हो गया है। एहतजाज कर रहे तलबा बाज इम्तहान खासतौर पर जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने और मुबैना बेजाबतगियों की सीबीआई जांच का मुतालबा कर रहे हैं। इस दौरान हुकूमत ने दावा किया है कि तलबा के 98% मुतालबात मान लिए गए हैं। अपोजिशन रहनुमा बाबूलाल मरांडी और रियासती सदर आदित्य साहू समेत बीजेपी के रहनुमाओं को वजीर आला हेमंत सोरेन की रिहायशगाह के बाहर एहतजाज के दौरान हिरासत में लिया गया है। पूरे मुल्क में हर घर तिरंगा तहरीक जोर पकड़ रही है। महाराष्ट्र में हर घर तिरंगा मुहिम हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ शुरू हो गई है। रियासत के मुख्तलिफ जिलों में तिरंगा रैलियों का एहतमाम किया गया, इनमें बीड़, थाने और बुल्दाना शामिल हैं। उधर मणिपुर में वजीर आला युन्नाम खेमचंद ने अपनी रिहायशगाह से इस मुहिम में हिस्सा लिया। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो खुद को पहले भारतीय और फिर मणिपुरी तस्वर करें। वजीर आजम ने मोदी ने लोगों पर जोर दिया है कि वो हर घर तिरंगा तहरीक में जोश व खरोश के साथ शामिल हों और विकसित भारत की तामीर की समत अपना रोल अदा करने की खातिर अपने इज्तिमाई अज़्म की तजदीद करें। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि हमारा तिरंगा हमारी शान है और मुल्क के लिए हमेशा कुछ अच्छा करने के लिए तरगीब का एक मुस्तकिल वसीला है। वजीर आजम ने कहा कि उन्हें इस बात पर खुशी है कि इस साल कोशिशें वंदे मातरम के लिए वक्फ हैं और वो भी एक ऐसे वक्त के जब हम कौमी गीत के 150 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। चीन के हुकाम ने शदीद तूफान डॉल्फिन के आने के तनाजु में शंघाई समेत मशरकी चीन से 10 लाख से ज्यादा लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है। खित्ते में शदीद तूफान के नतीजे में मूसलाधार बारिश हुई और ट्रांसपोर्ट निजाम में खलल पड़ गया। आज शंघाई में तकरीबन 1000 परवाजें मनसूख की गईं। चीन के हुकाम ने इससे पहले डॉल्फिन तूफान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया था, जो इस साल वहां आने वाला सबसे शदीद तूफान है। बब्बर शेरों के आलमी दिन के मौके पर वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत में एशियाटिक लायन के मस्कन और इसकी रेंज में उसब के साथ साथ इसकी तादाद में इजाफा हो रहा है। मरकजी वजीर भूपेन्द्र यादव का तहरीर करदा मजमून शेयर करते हुए जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि लोगों को की मजबूत शमूलियत के साथ बब्बर शेरों को महफूज रखने के सरकार का पुख्ता अज़्म मुल्क के जंगली जानवरों का तहफ्फुज़ करने की एक बाइस से तरगीब मिसाल है। माहौलिया जंगलात और आबहवा की तब्दीली के महकमे के वजीर भूपेन्द्र यादव के तहरीर करदा मजमून में कहा गया है कि 11 जिलों में 2020 में तकरीबन 30,000 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके से बढ़कर बब्बर शेरों का मस्कन अब तकरीबन 35,000 मुरब्बा किलोमीटर तक फैल गया है। वजीर आजम ने मोदी ने कल नई दिल्ली में अपनी रिहायशगाह पर दौलत मुश्तरका खेलों में तमगा जीतने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात की। बातचीत के दौरान खिलाड़ियों ने वजीर आजम के साथ खेलों से मुतालिक अपने तजर्बात शेयर किए। वजीर आजम मोदी ने कहा कि वकार सिर्फ फीता काटने से हासिल नहीं होता, बल्कि एक नौजवान तालिबे इल्म या उभरते हुए खिलाड़ियों के जज्बे के साथ खेलने से हासिल होता है।
1: मेरे यहाँ मुझे यहाँ लगभग 12-13 साल हो गए इसी मकान में। अगर मैंने रेगुलरली और हर बार किसी को रिसीव किया है, किसी को मैं मिला हूँ तो खिलाड़ी है। पिछले 10-12 सालों के आप लोगों के पुरुषार्थ के कारण, भारत को लगातार विजय दिलाने के आपके प्रयासों के कारण और उत्तरोत्तर सफलता में नई ऊंचाइयां पार करने की परंपरा के कारण, जो काम शायद हम स्कूलों में जाके कहें कि नहीं नहीं खेलना चाहिए, ये करना चाहिए, वो काम स्कूलों में जाकर के हम कर सकते थे, उससे ज्यादा आपका मेडल उनको इंस्पायर करता है।
0: आखिर में खास खास खबरें। एक बार फिर कई मामलों पर अपोजिशन अरकान के शोरगुल के तनाजुर में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई में आज भी रुकावट पड़ी। लोकसभा में ट्राइब्यूनल्स इस्लाहात बिल 2026 समेत 4 बिल पेश किए गए। मजकूरा बिल का मकसद ट्राइब्यूनल्स के काम

0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की विपक्ष से अपील, गृह मंत्री अमित शाह को संसद में उठाए जा रहे मुद्दों पर बिना शोर शराबे के वक्तव्य देने दें। अधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता और कुशलता बढ़ाने के लिए लोकसभा में अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया गया, 3 अन्य विधेयक भी पेश। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का विधानसभा की ओर मार्च, हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में तिरंगा रैलियों का आयोजन। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। आज विश्व सिंह दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ रही है और उनके पर्यावास में विस्तार हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज कहा कि सरकार विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने ये बात कही।
1: छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे शांति से, ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा।
0: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृह मंत्री के वक्तव्य की मांग की थी।
2: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
0: इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा में आज शोर शराबे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पेश किया गया। दिन के 12 बजे तक स्थगित रहने के बाद सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया। ये विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता तथा नियुक्ति में एक रूपता सुनिश्चित करने और प्रशासन तथा कामकाज में कुशलता, स्वतंत्रता और पारदर्शिता बढ़ाने का प्रावधान करता है। इसके तहत राष्ट्रीय अधिकरण आयोग के गठन का भी प्रस्ताव है। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खदान और खनिज विकास तथा नियमन संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। यह विधेयक 1957 के संबंधित अधिनियम में संशोधन करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम संशोधन विधेयक 2026 सदन के समक्ष रखा। यह विधेयक केरल राज्य के नाम में परिवर्तन का प्रावधान करता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसके माध्यम से 1962 के संबंधित अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि संबंधित हितधारकों से परामर्श पूरा होने के बाद राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 का मसौदा अंतिम रूप देने के चरण में है। फिलहाल दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। केंद्रीय मंत्री और रांची से सांसद संजय सेठ ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच का आदेश देने में राज्य सरकार की अनिच्छा पर सवाल उठाया है। संसद भवन परिसर में आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री सेठ ने कहा कि यदि विद्यार्थी ये परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं तो राज्य सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वे इससे मानने से क्यों इनकार कर रही है।
3: छात्र अधिक हैं कि हम तो जाएंगे और विधानसभा घेरेंगे। कई मांग है कि सीबीआई जांच करा दो और जेएसएससी के एग्जाम कैंसिल करा दो, जो दोषी है उनको पकड़ो और ईडी जांच करा दो। सरकार को क्या आपत्ति है।
0: भाजपा सांसद तरुण चुघ ने विपक्ष के कुछ नेताओं पर झारखंड में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को जानबूझकर नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये नेता इस मुद्दे पर पूरी तरह मौन है, जबकि राज्य में उनके गठबंधन सहयोगियों की सरकार है।
4: मेरा निवेदन है कि छात्रों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। और मेरा सभी से निवेदन है, आंदोलन हम सबका राइट है, सत्याग्रह हम सबकी ताकत है, लेकिन हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए।
0: उधर झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में जारी विद्यार्थी आंदोलन का आज 17वां दिन है। विद्यार्थी विधानसभा की ओर मार्च कर रहे हैं। पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के नेतृत्व में छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से विधानसभा की ओर मार्च कर रहे हैं और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने तथा कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि छात्रों की 98% मांगों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन छात्र अपनी प्रमुख मांगों पर अड़े हुए हैं। मार्च के दौरान छात्रों ने पुरानी विधानसभा के पास बैरिकेडिंग पार की और 7वें तथा आखिरी बैरिकेडिंग तक पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अनशनरत छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को एम्बुलेंस से विधानसभा लाया गया, जहां उन्होंने स्ट्रेचर पर समर्थकों के साथ मार्च में हिस्सा लिया। 6 छात्र अब भी अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू समेत कई बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। 3 जेपीएससी सदस्यों के इस्तीफे स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन और तेज हुआ है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के अपने सामूहिक संकल्प के अनुपालन का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
6: श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा हमारा गौरव है और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि इस वर्ष के प्रयास वंदे मातरम को समर्पित हैं और वो भी ऐसे समय में जब हम इसकी 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन के माध्यम से देशभर की सड़कों और घरों में देशभक्ति की भावना लाने का प्रयास करेगा। मंत्रालय ने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में राष्ट्रगीत का उत्सव मनाने का अवसर प्रदान करेगी। इस वर्ष के समारोहों का एक प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। इसका उद्देश्य दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों को तिरंगे के वैश्विक उत्सव में एकजुट करना है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत कश्मीर के सभी जिलों में तिरंगा यात्राएं और देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
7: अभियान की शुरुआत के साथ ही पुलवामा के त्राल इलाके, अनंतनाग, बारामुल्ला और कई दूसरी जगहों पर तिरंगा यात्राएं निकाली गई, जिनमें युवाओं, छात्राओं, कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। श्रीनगर में भी इस अभियान के तहत एक बड़ी तिरंगा रैली की तैयारी चल रही है। कश्मीर भर में जिला प्रशासन आने वाले दिनों में कई तिरंगा यात्राएं और जन भागीदारी कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। स्थानीय लोग भी इस अभियान के तहत तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर उत्साहपूर्वक इसमें भाग ले रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: बिहार में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज राजधानी पटना में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
8: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में गांधी मैदान स्थित जेपी सर्कल से शुरू यह यात्रा कारगिल चौक के पास समाप्त हुई। यात्रा में स्कूली बच्चों, एनसीसी और एनएसएस कैडेट्स और आम लोगों ने बड़ी संख्या में भागीदारी की। इस दौरान पूरा शहर तिरंगे के रंगों में सराबोर होने के साथ ही वंदे मातरम और हर घर तिरंगा के नारों से गुंजायमान रहा। इधर तिरंगा यात्रा शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों से इस अभियान के तहत जिला, नगर निकाय और पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाली यात्राओं में शामिल होने का आग्रह किया। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उधर नागालैंड के कोहिमा में आज भारतीय जनता पार्टी की नागालैंड इकाई ने हर घर तिरंगा दोपहिया रैली का आयोजन किया। अभी समाचार मिला है कि लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। सरकारी क्रय विक्रय जेम पोर्टल पर कुल व्यापार का मूल्य पिछले दशक में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर

0: 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जेम पोर्टल पर 12 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु उपक्रम पंजीकृत हैं, इनमें 2 लाख से अधिक महिलाएं हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, विदर्भ, असम और मेघालय में भी कल तक तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में कल तक बिजली चमकने और गरज के साथ बौछारें पड़ने की स्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा आज शाम दिल्ली के कई स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज सुबह से रुक रुक कर वर्षा हो रही है। तेज बारिश के कारण हुए भूस्खलन से राज्य के कई हिस्सों में 100 से अधिक सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
1: हिमाचल प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और राजधानी शिमला सहित राज्य के अनेक क्षेत्रों में रुक रुक कर हल्की वर्षा हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज प्रदेश के 4 जिलों कांगड़ा, सिरमौर, मंडी और कुल्लू में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर लोगों को एहतियात बरतने और नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। इस बीच भारी वर्षा से हुए भूस्खलन के कारण राज्य में 100 से अधिक सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं, जबकि 255 बिजली ट्रांसफार्मर और लगभग 20 पेयजल परियोजनाएं भी प्रभावित हैं। कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: आज विश्व सिंह दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सिंह दिवस पर कहा कि भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ रही है और उनके पर्यावास में विस्तार हो रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का आलेख साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सामुदायिक भागीदारी से वन्य जीव संरक्षण की सरकार की प्रतिबद्धता विशेष प्रजातियों को पीढ़ियों तक संरक्षित रखने का प्रेरक उदाहरण है। श्री भूपेंद्र यादव ने अपने आलेख में कहा है कि वर्ष 2015 में 523 शेरों की संख्या बढ़कर वर्ष 2025 में 891 हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
2: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
0: इटली के बोलोनिया में कश्मीरी मूल के हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में निर्दोष नागरिकों की हत्या की निंदा की। दुनिया के विभिन्न देशों में कश्मीरी प्रवासी समूहों के ऐसे ही विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 86 अंक बढ़कर 78,585 जबकि निफ्टी 28 अंक की बढ़त के साथ 24,599 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की विपक्ष से अपील। गृहमंत्री अमित शाह को संसद में उठाए जा रहे मुद्दों पर बिना शोर शराबे के वक्तव्य देने दें। अधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता और कुशलता बढ़ाने के लिए लोकसभा में अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया गया। 3 अन्य विधेयक भी पेश। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का विधानसभा की ओर मार्च। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देशभर में तिरंगा रैलियों का आयोजन। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। और आज विश्व सिंह दिवस है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज़। डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। हमारा आज का कार्यक्रम केंद्रित है जॉनी लीवर पर।

जी हाँ श्रोताओं, आपने गैस कर ही लिया होगा कि मैं आज किस हीरो की बात कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ कॉमेडियन जॉनी लीवर की। जब भी हिंदी सिनेमा में कॉमेडी की बात आती है ना, तो कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। एक ऐसा कलाकार जिसने सिर्फ अपने अभिनय से लोगों को ही नहीं, बल्कि अपने जीवन के संघर्षों से ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। जी हाँ, सभी के बस की बात नहीं होता जीवन के संघर्षों को अपनी ताकत बनाना, लेकिन जॉनी लीवर एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने संघर्षों से भी सीख ली। जिस इंसान ने बचपन में आर्थिक परेशानियां देखी, सातवीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी, सड़कों पर पेन बेचने पड़े और लोगों की नकल करके अपना गुजारा करना पड़ी पड़ा, वही बच्चा आगे चलकर हिंदी सिनेमा का ऐसा कॉमेडियन बना जिसकी आवाज, अंदाज, चेहरे के हाव भाव और संवाद बोलने की शैली की अपनी अलग पहचान थी है।

दोस्तों चलिए अब जानते हैं कि जॉनी लीवर का नाम जॉनी लीवर कैसे बना। उनका ये नाम जन्म से नहीं था। जब उन्होंने हिंदुस्तान लीवर की एक कंपनी के कार्यक्रम में अपने वरिष्ठ अधिकारियों की शानदार नकल की तो वहां मौजूद कर्मचारियों ने उन्हें मजाक मजाक में जॉनी लीवर कहना शुरू कर दिया। यही नाम आगे चलकर उनकी पहचान बन गया और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो इसी नाम को अपना स्क्रीन नाम बना दिया। यानी जिस कंपनी में उनके पिता काम करते थे और जहां जॉनी ने भी संघर्ष के दिनों में काम किया, उसी लीवर नाम से आगे चलकर उन्हें दुनिया भर में पहचान मिली। जॉनी लीवर में लीवर ने मंच से अपने करियर को मजबूत बनाया। उन्होंने स्टेज शो मिमिक्री के जरिए अपनी पहचान बनाई। उस दौर में आज की तरह स्टैंड अप कॉमेडी का इतना बड़ा मंच नहीं था, लेकिन जॉनी लीवर ने अकेले मंच पर खड़े होकर अपनी आवाज, चेहरे के भाव, शरीर की भाषा और मिमिक्री से लोगों को हंसाने का हुनर विकसित किया।

दोस्तों 1993 में आई फिल्म बाजीगर ने उनके करियर को एक अलग पहचान दी। शाहरुख खान और काजोल जैसे सितारों से सजी इस फिल्म ने जॉनी लीवर ने अपने हास्य अंदाज से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। इसके बाद तो जैसे हिंदी सिनेमा में कॉमेडी और जॉनी लीवर एक दूसरे के पर्याय बन गए। अंदाज अपना अपना, करण अर्जुन, कुली नंबर वन, कृष्णा, दीवाना मस्ताना, दूल्हे राजा, कुछ कुछ होता है, बादशाह, कभी खुशी कभी गम और फिर हेरा फेरी और फिर एक से बढ़कर एक फिल्में उन्होंने दी और जिन्होंने उसमें बहुत ही यादगार किरदार निभाया। जॉनी लीवर ने हिंदी सिनेमा में कॉमेडियन के किरदार को एक नई ऊंचाई दी। उनसे पहले भी महान हास्य कलाकार हुए जैसे महमूद, जॉनी वॉकर और असरानी, लेकिन जॉनी लीवर ने मिमिक्री, इम्प्रोवाइजेशन, बॉडी लैंग्वेज और टाइमिंग को जिस तरह मिलाया वो अपनी खास पहचान बनी।

दोस्तों अब बात करते हैं जॉनी लीवर की, जिन्हें बहुत से सम्मानों से नवाजा गया। जॉनी लीवर को फिल्म फेयर अवार्ड में कॉमिक भूमिका के लिए कई बार नामांकन मिला। उन्हें दो बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला। पहली बार उन्हें दीवाना मस्ताना के लिए बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके बाद दूल्हे राजा के लिए भी उन्हें बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके अलावा स्क्रीन अवार्ड, जी सिने अवार्ड, पोगो अमेजिंग किड्स अवार्ड और अन्य सम्मानों से भी उन्हें नवाजा गया था। बहुत सी बातें हैं जॉनी लीवर के बारे में बताने के लिए, लेकिन समय अब इजाजत नहीं दे रही है। और अब देख लेते हैं कि हमारे साथ जो हैं मेल पर कौन कौन से श्रोता जुड़े हैं। ये हमें मेल किया है शांतिनगर सोनीपत से सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी और सिमरन मुखी ने। गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत गिल, राजदीप गिल, गुरनूर गिल, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह। अगला मैसेज आया है पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन का। प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा, इन्होंने हमें मैसेज किया है छत्तीसगढ़ पलारी से। दोस्तों इसी के साथ समय हो रहा है कार्यक्रम का, तो हम अधिक मेल्स नहीं ले पाएंगे और चलते चलते सुनते हैं ये गीत।

0: बहुत से श्रोता मेल के जरिए हमारे साथ जुड़े हैं, तो वो है छत्तीसगढ़ टूरी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खातिमा बेगम, मोहम्मद अशफाक, अफसारी कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा। छत्तीसगढ़ रायपुर से मोहम्मद इमरान, इशरत परवीन, मोहम्मद हसनैन रजा और गौसिया फातिमा। अगला मेल आया है अनीता मुखी, सिमरन मुखी, सुदर्शन मुखी का, शांतिनगर सोनीपत से। बहुत से मैसेजेस आए हैं लेकिन समय के अभाव के कारण हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो इसलिए हम क्षमा चाहेंगे श्रोताओं से। और सभी के मेल शामिल किए जाते हैं लेकिन समय के आगे किसी की नहीं चलती। तो इसी के साथ मीना चौहान को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: मुझको बीवी, मम्मी डैडी।

महीने में 1071 किलोहर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की शुरुआत। 3:05 हुए हैं, अब खबरें नशर होंगी। ये आकाशवाणी है, अब आप मोहम्मद कौनैन हैदर से खबरें सुनिए। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। पूरे मुल्क में तिरंगा रैलियों का एहतमाम किया जा रहा है, हर घर तिरंगा मुहिम में तेजी आ रही है। रूस ने आबनाए हुरमुस जैसी अहम आबी गुजरगाहों पर इन्हिसार कम करने की खातिर भारत के लिए एक रेल रूट की तजवीज रखी है। मशरकी चीन के कुछ हिस्सों में शदीद तूफान डॉल्फिन से काफी नुकसान हुआ है, 10 लाख से ज्यादा अफराद को महफूज मकाम पर पहुंचाया गया है। और आज बबर शेरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने

पिछले 10 साल में बगल शेरों को महफूज रखने का सफर कामयाबी के साथ तय किया है और इनकी तादाद 891 हो गई है। और खबरें तफसील से। पूरे मुल्क में हर घर तिरंगा तहरीक जोर पकड़ रही है। महाराष्ट्र में हर घर तिरंगा मुहिम हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ शुरू हो गई है। रियासत के मुख्तलिफ जिलों में तिरंगा रैलियों का एहतमाम किया गया, इनमें बीड़, थाने और बुल्ढाना शामिल हैं। उधर मणिपुर में वजीर आला युमनाम खेमचंद ने अपनी रिहायशगाह से इस मुहिम में हिस्सा लिया। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो खुद को पहले भारतीय और फिर मणिपुरी तसव्वुर करें। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने लोगों पर जोर दिया है कि वो हर घर तिरंगा तहरीक में जोश खरोश के साथ शामिल हों और विकसित भारत की तामीर की संत अपना रोल अदा करने की खातिर अपने इज्तमाही अज़्म की तजदीद करें। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि हमारा तिरंगा हमारी शान है और मुल्क के लिए हमेशा कुछ अच्छा करने के लिए तरगीब का एक मुस्तकिल वसीला है। वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्हें इस बात पर खुशी है कि इस साल कोशिशें वंदे मातरम के लिए वक्फ हैं और वो भी एक ऐसे वक्त कि जब हम कौमी गीत के 150 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। रूस ने बहर हिंद के लिए एक रेलवे रास्ते का पता लगाने की तजवीज रखी है जिससे भारत का अहम बहरी रास्तों पर इन्हिसार कम होगा। रूस के नायब वजीर आजम मारात खुसनोलिन ने बताया कि मुतबादिल रास्तों से आबनाए हुरमुज और आबनाए बोस्फोरस समेत दो कलीदी आबी गुजरगाहों से जुड़े खतरनाक रास्तों से गुजरने के खतरे से बचने में मदद मिल सकती है। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक जनाब खुसनोलिन ने बताया कि तुर्कमानिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से गुजरने वाले रेल रास्तों का पता लगाया जा सकता है ताकि भारत को आसानी से रसाई फराहम की जा सके। ये तजवीज मगरबी एशिया में जारी जंग के पेश नजर सामने आई है जिसमें आबनाए हुरमुज के रास्ते जहाजों के गुजरने में रूकावटें खड़ी कर दी हैं। मुजवजा रेल रास्तों से वसी जोग्राफियाई, सियासी और माशी मुजमरात पैदा हो सकते हैं क्योंकि इससे वस्ती और जनूबी एशिया के जरिए बहर हिंद के लिए रूस को एक मुतबादिल बहरी रबता फराहम हो सकता है। चीन के हुकाम ने शदीद तूफान डॉल्फिन के आने के तनाजुर में शंघाई समेत मशरकी चीन से 10 लाख से ज्यादा लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है। खत्ते में शदीद तूफान के नतीजे में मूसलाधार बारिश हुई और ट्रांसपोर्ट निजाम में खलल पड़ गया। आज शंघाई में तकरीबन 1000 परवाजें मनसूख की गई हैं। चीन के हुकाम ने इससे पहले डॉल्फिन तूफान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया था जो इस साल वहां आने वाला सबसे शदीद तूफान है। ये तूफान जब जिंगजियांग सूबे में युहान पहुंचा तो उस वक्त 150 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा के तेज झक्कर चल रहे थे। इधर चीन के मुख्तलिफ सूबों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है। शंघाई में भी तेज बारिश होने का इम्कान है। हुकाम ने लोगों पर जोर दिया है कि वो गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। बाबर शेरों के आलम दिन के मौके पर वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत में एशियाटिक लायन के मस्कन और इसकी रेंज में वसत के साथ साथ इसकी तादाद में इजाफा हो रहा है। मरकजी वजीर भूपेन्द्र यादव का तहरीर करदा मजमून शेयर करते हुए जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि लोगों की मजबूत शमूलियत के साथ बबर शेरों को महफूज रखने के सरकार का पुख्ता अज़्म मुल्क के जंगली जानवरों का तहफ्फुज़ करने की एक बाईसे तरगीब मिसाल है। माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के महकमे के वजीर भूपेन्द्र यादव के तहरीर करदा मजमून में कहा गया है कि 11 जिलों में 2020 में तकरीबन 30,000 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके से बढ़कर बबर शेरों का मस्कन अब तकरीबन 35,000 मुरब्बा किलोमीटर तक फैल गया है। मजमून में इस बात का भी तज़किरा किया गया है कि भारत ने किस तरह बबर शेरों को महफूज रखने का सफर कामयाबी के साथ तय किया है। साल 2015 में बबर शेरों की तादाद 523 थी जो 2025 में बढ़कर 891 तक पहुंच गई। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अपनी रिहायशगाह पर दौलत मुश्तरका खेलों में तमगा जीतने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात की। बातचीत के दौरान खिलाड़ियों ने वजीर आजम के साथ खेलों से मुतालिक अपने तजुर्बात शेयर किए। वजीर आजम मोदी ने कहा कि इफ्तिखार सिर्फ फीता काटने से हासिल नहीं होता बल्कि एक नौजवान तालिब इल्म या उभरते हुए खिलाड़ियों के जज्बे के साथ खेलने से हासिल होता है।

से मोहब्बत का जज्बा एक ऐसा जज्बा है जो हर इंसान में ख्वाह किसी भी उम्र का हो ये पाया जाता है और हर शख्स चाहता है कि ये अजीम मुल्क जिसे दुनिया हिंदुस्तान के नाम से जानती है हम इसकी खिदमत कर सकें, हम इसकी आजादी को कायम रख सकें। देश हमारे लिए हमारे ईमान की तरह अनमोल है।

0: जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है,
1: जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है।

0: सलामी के साथ ही आज का फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है खिदमत प्रोग्राम कहकशां। कहकशां प्रोग्राम में आज सुनिए फिल्म अप्रैल फूल की कहानी और नगमे, जिसे तरतीब दिया है जनाब मोहम्मद नफीस ने।
1: यानी अदाकार विश्वजीत एक बहुत बड़े खानदान का लड़का है। उसके वालिद का इंतकाल होने के बाद उसके चचा उसे सैलून में ले आए थे और वहीं उन्होंने अपना कारोबार शुरू कर दिया था। अशोक अक्सर अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता और रात घर पर देर से आता। उसके लिए हर दिन पहली अप्रैल होता और वो बाहर वालों के साथ साथ घर वालों को भी बेवकूफ बनाता, जैसे कि लोग पहली अप्रैल को बेवकूफ बनाया करते हैं। चचा और अशोक का बड़ा भाई मेज पर नाश्ते के लिए बैठे और चचा अशोक के भाई को डांटते हैं क्योंकि उसने अशोक को सर पर चढ़ा रखा है। तभी चचा अपने कमरे में उठकर चले जाते हैं और उधर से अशोक घर में दाखिल होता है और अपने बड़े भाई से रुपए टैंटता है। अपने जन्मदिन का बहाना करके चाचा जी को जब इस बात का पता चलता है तो वो अशोक के भाई को डांटते हैं और कहते हैं कि आज भी उसने तुम्हें पागल बना दिया। तभी अशोक का फोन आता है और चाचा फोन उठाते हैं। चाचा अशोक से कहते हैं कि तूने अपने बड़े भाई को बेवकूफ बना दिया। तो अशोक उनसे माफी मांगता है और कहता है कि आज 1 अप्रैल है और मुझे आज सबको बेवकूफ बनाने का हक है। रात को अशोक घर पर आता है और चचा की तस्वीर के पास खड़ा होकर माफी मांगता है। तभी चचा आते हैं और वो उसे डांटना शुरू कर देते हैं कि तूने एलएलबी किया है और अभी तक कोर्ट का मुंह भी नहीं देखा। तो अशोक जवाब देता है कि वहां झूठ बोलना पड़ता है। तो चचा गुस्से में कहते हैं कि तू कब तक अपने बाप की जायदाद के ऊपर टिकेगा, ये तेरे लिए खैरात है। अशोक को बर्दाश्त नहीं होता और वो चचा से वादा करता है कि वो उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाएगा और घर छोड़कर चला जाता है। मिस्टर लाल यानी अदाकार जयंत एक खुफिया अफसर हैं जो अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करते हैं और इसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। लेकिन जासूस मंटो यानी अदाकार सज्जन के कुछ आदमी उनके पीछे हैं। उनके बैग में कुछ जरूरी कागजात हैं। वो घबराहट में अशोक से टकराते हैं और अपना बैग अशोक के बैग से बदल लेते हैं। बदमाश अशोक का बैग मिस्टर लाल का बैग समझकर ले जाते हैं। मिस्टर लाल अशोक को बताते हैं कि ये मेरा बैग है और इसमें मुल्क की हिफाजत के कुछ जरूरी कागजात हैं। आज तुम न मिलते तो ये कागजात दुश्मनों के हाथ लग जाते। मिस्टर लाल अशोक को अपना कार्ड देते हैं और मिलने को कहते हैं। मधु यानी अदाकारा सायरा बानो और तनु यानी अदाकारा नाजमा दोनों मिस्टर लाल की बेटियां हैं। तनु और मधु आदात में एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ हैं। तनु आजादाना ख्यालात की है जबकि मधु पुराने ख्यालात की है। मधु तनु को उसके नए नए फैशन पर डांटती रहती है मगर मधु उसे प्यार भी बहुत करती है। मधु और तनु अपनी मां की तस्वीर को देखकर रो रही है। तभी मिस्टर लाल घर में दाखिल होते हैं। दोनों कहती हैं अगर हमारी मां होती तो कितना ध्यान रखती। तभी मिस्टर लाल दोनों को जमीन दिखाते और कहते हैं यह है तुम्हारी धरती मां, इससे प्यार करो। मिस्टर लाल पूछते हैं कि क्या अशोक आया था। तभी तनु बोल पड़ती है कि वो जो दीदी को देखने आने वाले थे। डैडी जल्दी से दीदी की शादी करो और घर से भगाओ। तभी मिस्टर लाल हंसते हैं और चले जाते हैं। अगले दिन अशोक मिस्टर लाल के दफ्तर आता है और मिस्टर लाल पूछते हैं कि तुम्हें यहां अपने मुल्क में क्या चीज खींच लाई। तो अशोक जवाब देता है कि मां बाप की मोहब्बत। मिस्टर लाल इस जवाब से खुश हो

जाते हैं और गाड़ी की चाबी देकर कहते हैं कि मेरे बच्चों को पिकनिक पर ले जाओ। इधर तनु अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक पर जाना चाहती है, मगर मधु उसे इजाजत नहीं दे रही है। इतने में अशोक घर आता है। तनु मधु से कहती है कि जीजाजी आए हैं। तनु दोनों को तारुफ कराती है। मधु और अशोक दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं और तनु अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक पर निकल जाती है। पहली ही नजर में मधु और अशोक दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठते हैं और गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। मधु नाचती गाती है।

अशोक मधु से होटल में कॉफी पीने को कहता है, मगर मधु उससे कहती है कि अब तो तुम्हारे बंगले पर आकर पीऊंगी, जहां हमारे डैडी ठहरे हैं। अब अशोक समझ जाता है कि मधु उसे गलती से अपना होने वाला शौहर समझ रही है। मधु ने जो बंगला बताया था, अशोक उस बंगले पर जाकर वहां की जानकारी लेता है और वहां रहने वाली मिसेस सिन्हा यानी अदाकारा चांद उस्मानी को अपने प्यार के बारे में बताता है और कहता है कि उसकी मधु इतवार को चाय पीने आ रही है। मिसेस सिन्हा मान जाती है। अशोक के जाने के बाद मिस्टर सिन्हा यानी अदाकार आईएस जौहर अपने बंगले में दाखिल होते हैं और नौकरों पर गुस्सा करते हैं, मगर मिसेस सिन्हा प्यार से उनका गुस्सा दूर कर देती है। इतवार को मधु बंगले पर आती है, मगर तमाम नौकर छुट्टी पर होते हैं। मिस्टर और मिसेस सिन्हा नौकरों का काम अंजाम देते हैं। अशोक मधु पर रोक जमाने के लिए मिस्टर और मिसेस सिन्हा से नौकरों की तरह पेश आता है। मिस्टर और मिसेस सिन्हा भी खुश है। कॉफी पीने के बाद मधु और अशोक घूमने निकल जाते हैं और दोनों नाच गा रहे हैं।

इसी दौरान उन्हें तनु और उसकी सहेलियां मिल जाती हैं और वो इन दोनों को होटल ले जाती है। अशोक जोश में आकर बहुत सारे लजीज खानों का ऑर्डर दे देता है, मगर उसके पास रुपए नहीं होते। वो होटल के मैनेजर से कहता है कि मेरे पास रुपए नहीं है, मगर वो सबके सामने उसकी कलाई खोल देता है। तभी चाचा भी आ जाते हैं जो उसी होटल में रह रहे हैं। उनके जरिए भी अशोक की कलाई खुल जाती है। मधु अशोक से नाराज हो जाती है। अशोक मधु को मनाता है, मगर मधु नहीं मानती। अशोक बिजली के डिब्बे पर हाथ लगाकर कहता है कि मैं मर जाऊंगा। तभी मधु अपने प्यार का इजहार करती है और इस तरह झूठे तारों पर हाथ लगाकर वो मधु से अप्रैल फूल मनाता है और गाता है।

0: मधु अशोक से कहती है कि मेरे डैडी बहुत जिद्दी हैं, वो तुमसे मेरी शादी नहीं करेंगे। मगर मधु अपने डैडी को मनाने का वादा करती है। मिस्टर लाल मान भी जाते हैं। मिस्टर लाल को खबर मिलती है कि बेला को जरूरी कागजात के साथ अगवा कर लिया गया है। मिस्टर लाल अपने आदमियों से कहते हैं कि हमारी ही आस्तीन में कुछ सांप पड़ रहा है, जब तक हमें यकजहती नहीं होगी तब तक हम कामयाब नहीं होंगे। मिस्टर लाल अपने कमरे में एक किताब पढ़ते हैं कि एक लड़की ने अपने वालिद के कहने पर मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। मिस्टर लाल भी मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी लड़की मधु को चुनते हैं और मंटू का खात्मा करना चाहते हैं। वो मधु से कहते हैं कि तुम्हें प्यार मोहब्बत से कुछ हासिल नहीं होगा, तुम मुल्क की हिफाजत करो। मधु अपने वालिद की तमाम बातों का इकरार कर लेती है और अशोक से फोन करके कहती है कि डैडी ने तुमसे शादी को मना कर दिया है और मैं अब अपने मुल्क के लिए लड़ूंगी, तुम मुझे भूल जाओ। मधु अब एंग्लो इंडियन लड़की के रूप में रीटा बनकर मंटू के अड्डे पर जाती है और मंटू से जान पहचान बढ़ाती है। मंटू उसके नकली रूप में आ जाता है, मगर मंटू की मुलाकात अभी तक मिस्टर लाल से नहीं हुई है। वो मिस्टर लाल से मिलने की ख्वाहिश जाहिर करता है, मंटू का एक आदमी रसिक। मिस्टर लाल की बेटी की सालगिरह का दावत नामा लाता है। मधु अशोक से फोन पर बात करती है कि तुम मेरी सालगिरह पर नहीं आओगे और उसे वो गुजरे हुए दिनों की याद दिलाती है। मधु को पुराने लम्हात की याद आती है जो उसने अशोक के साथ गुजारे थे और अशोक उसके लिए गा रहा था।
1: मेरी मोहब्बत पाक मोहब्बत और जहां की खाक मोहब्बत।

सालगिरह की दावत में मंटू अपने साथी रसिक के साथ आता है और मधु को देखकर चौंक जाता है। वो अपने साथी रसिक से कहता है कि कहीं यही लड़की रीटा बनकर हमें धोखा तो नहीं दे रही है। मधु इन दोनों की बातें सुन लेती है और जल्दी से रीटा का रूप बदलकर अपने नकली घर में आ जाती है। रीटा को यहां देखकर मंटू मुतमईन हो जाता है। मंटू रीटा को चाहने लगा है। वो उसे एक होटल में लेकर जाता है मगर वहां अशोक भी होटल का बहरा बनकर पहुंच जाता है और जब भी मंटू रीटा से अपने प्यार का इजहार करना चाहता है अशोक बीच में आ जाता है। अशोक मंटू को यहां से भगाना चाहता है मगर मंटू अशोक की बातों में नहीं आता और वो रीटा को लेकर एक पुल पर चला जाता है। पानी में लड़कियों के तरह तरह के खेल होते हैं जिसमें मधु भी हिस्सा लेती है। यहां पर अशोक गाता है।

बंटू रीटा से, जिसे वो प्यार करता है, उससे पूछता है कि क्या वो उसे प्यार करती है। मधु हाँ कर देती है। मंटू मधु से कहता है कि उसकी जान खतरे में है। वो उसे मिस्टर लाल का फोटो दिखाता है और कहता है कि मेरी जान को इस आदमी से खतरा है और मैं तुम्हें आज एक राज की बात बताता हूं। इस आदमी की एक बेटी है जिसका नाम मधु है, जिसकी शक्ल तुमसे हूबहू मिलती है। तुम उसकी बेटी मधु का कत्ल कर दो और तुम उसकी नकली बेटी मधु बनकर रहो और वहां से कागजात हासिल करो जिसमें मेरी जान है। मधु हां कर देती है। मंटू उसे बगैर आवाज वाली एक पिस्तौल देता है और काम को अंजाम देने को कहता है। मधु रीटा के रूप में एक क्लब में नाचती गाती है।

जैसे मंटू से कहता है कि ये रोमियो यानी अशोक तो यहां भी आ गया, मंटू समझ जाता है कि ये रीटा को मधु समझ रहा है और वो उसे खत्म कर देना चाहता है। वो अशोक को रीटा के जरिए बुलवाना चाहता है जो उसके सामने मधु बनकर जाए। मधु अशोक को भुला नहीं पा रही है और अपने डैडी को अशोक के बारे में बताती है। मिस्टर लाल उसे यकीन दिलाते हैं कि तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओ, फिर अशोक से मिल लेना। मंटू रीटा को अशोक को लेने भेजता है। रीटा यानी मधु अपने आश्रित अशोक से मिलती है और उसे सब कुछ बता देती है कि डैडी ने उसे क्या काम सौंपा है। अशोक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अशोक को ये भी बताती है कि मंटू ने उसे बुलाया है। अशोक चलने को तैयार हो जाता है। अशोक और मधु प्यार की बातें कर रहे हैं। अशोक मधु से कहता है कि मैंने ख्वाब देखा कि मैंने तुमसे शादी कर ली। तो मधु कहती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम दोनों अभी हकीकत में शादी कर लेते हैं। दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और गाते हैं।

मंटू के पास लेकर आती है। मंटू बेआवाज वाली पिस्तौल से अशोक पर फायर करता है। अशोक मरने का झूठा नाटक करता है। उधर जब मधु अपने वालिद से मिलने बार बार जाती रहती है तो मंटू को शक हो जाता है कि रीटा ही मिस्टर लाल की बेटी मधु है। मिस्टर लाल और मधु दोनों घर में आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी मंटू और उसके साथी आ जाते हैं और मिस्टर लाल को कागजात के बदले रिश्वत देने की कोशिश करते हैं मगर मिस्टर लाल नहीं मानते। तब यहां पर अशोक और उसके साथी आ जाते हैं और मंटू और उसके साथियों को बहुत मारते हैं। इधर मिस्टर लाल पुलिस को इतला कर देते हैं। पुलिस वाले मंटू और उसके साथियों को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। इस तरह मिस्टर लाल और मधु अपने मकसद में कामयाब

सर, मैं आप सुन रहे थे कि कहकशा प्रोग्राम के तहत अपने फोन फिल्म की कहानी और नगमे, जिसे तरतीब दिया था जनाब मोहम्मद नफीस ने, पेश कर रहे थे एस एम शफीक। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है फिल्मी नगमे। प्रोग्राम की पहली पेशकश रूप कुमार राठौड़, हरभजन और मोहम्मद सलामत की आवाजों में शहीद भगत सिंह फिल्म का नगमा, नगमनिगार नक्श लायलपुरी, मौसीकार जयदेव कुमार।

0: हम हर किस मिटा सकते नहीं,
1: अपनी आजादी को हम हर किस मिटा सकते नहीं।
0: सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका

आसमां पर ये तिरंगा उम्र

और समीन लीजिए सुनी करमा फिल्म का नगमा, आवाजें कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद अजीज और साथियों की, नगमनिगार आनंद बख्शी, मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारीलाल।

सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, मरते मर

geçmez.

अयोध्या का हर घर तिरंगा तहरीक में जोश और खरोश के साथ शामिल हो और विकसित भारत की तामीर के सम अपना रोल अदा करने की खातिर अपने इज्तिमाई अज़्म की तजदीद करें। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि हमारा तिरंगा हमारी शान है और मुल्क के लिए हमेशा कुछ अच्छा करने के लिए तरकीब का एक मुस्तकिल वसीला है। वजीर आजम ने कहा कि उन्हें इस बात पर खुशी है कि इस साल कशिश वंदे मातरम के लिए वक्त है और वो भी एक ऐसे वक्त जब हम कौमी गीत के 150 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। वजीर आजम की अपील के तनाजु में पूरे मुल्क में हर घर तिरंगा तहरीक जोर पकड़ रही है। जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा मुहिम के तहत कश्मीर के सभी जिलों में तिरंगा यात्राओं और हुब्बुल वतनी के प्रोग्रामों का एहतमाम किया गया है। माशरे के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाले लोग इस मुहिम में शामिल हो रहे हैं। रैलियों के अलावा आवामी मकाम, तालीमी इदारों, सरकारी इदारों में भी तिरंगे की धूम है। बिहार में हर घर तिरंगा मुहिम के तहत आज पटना में एक बड़ी तिरंगा यात्रा का एहतमाम किया गया। वजीर आला सम्राट चौधरी की क्यादत में गांधी मैदान के नजदीक मार्च शुरू हुआ और करगिल चौक के नीचे जाकर खत्म हुआ। महाराष्ट्र में हर घर तिरंगा मुहिम हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ शुरू हो गई। रियासत के मुख्तलिफ जिलों में तिरंगा रैलियों का एहतमाम किया गया है। इनमें बीड, थाने और बुलढाणा शामिल है। इटली के शहर बोलगना में कश्मीरी बिरादरी के हजारों लोगों ने एहतियाती मार्च निकाला। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में पाकिस्तानी फोर्सेज के खिलाफ बेकसूर आम शहरों की हलाकतों की मजम्मत की। मुजाहिरीन ने पाकिस्तानी फोर्सेज के खिलाफ नारे लगाए और सिविल सोसाइटी ग्रुप ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ यकानकत का इजहार किया। मुख्तलिफ मुल्कों में रहने वाले कश्मीरी बिरादरी के लोगों की जानिब से मुजाहिरों में तेजी आने के तनाजुर में यह एहतियात किया गया। इन मुजाहिरीन ने खिते में पाकिस्तानी हुक्काम की जानिब से वहशियाना कार्रवाई के मामले में बैन अलाक़वामी मुदाखलत का मुतालबा किया। इधर जम्मू कश्मीर के इंसानी हकूक के अलमबरदार इदारे के मुताबिक गुज़श्ता महीने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में एहतजाज में तेजी आने के दौरान 93 आम शहरियों की मौत हुई है। अमरीका के मरकजी कमान सेंट कॉम ने कहा है कि अमरीका की बहरी अफवाज ने ईरान के खिलाफ अमरीकी नाकाबंदी नाफिज करने की कोशिशों के तहत 55 तजारती बहरी जहाजों का रुख तब्दील किया है। सेंट कॉम ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा है कि फौजी मशकों जिसमें नाकाबंदी का निफाज भी शामिल है की हिमायत के लिए मशरक वस्ता में 20 से ज्यादा अमरीकी जंगी बहरी जहाज तैनात हैं। ये ताजा पेशा समुद्री कार्रवाई से मुतालिक पहले सामने आने वाली रिपोर्ट के बाद हुई है। सेंट कॉम ने यह भी कहा है कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 30 से ज्यादा बहरी जहाजों को नाकाबंदी से गुजरने की इजाजत दी गई है। रूस ने बहरे हिंद के लिए एक रेलवे रास्ते का पता लगाने की तजवीज रखी जिसे भारत का आम बहरी रास्तों पर इंसार कर होगा। रूस के नायब वजीर आजम भारत कुसरीन ने बताया कि मुतबादिल रास्तों से आबनाए हुरमुस और आबनाए वशफोर समेत दो करीबी आबी गुजरगाहों से जुड़े खतरनाक रास्तों में गुजरने के खतरे से बचने में मदद मिल सकती है। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक जनाब खुशीन ने बताया कि तुर्कमानिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से गुजरने वाले रेल रास्तों का पता लगाया जा सकता है ताकि भारत को आसानी से रसाई फराहम की जा सके। ये तस्वीर मगरबी एशिया में जारी जंग के पेश नजर सामने आई है जिसमें आबनाए हुरमुस के रास्ते जहाजों के गुजरने में रुकावटें खड़ी कर दी गई। मौजूदा रेलवे रास्तों से वसी जोग्राफियाई, सियासी और माशी मुजबियात पैदा हो सकती है क्योंकि इससे वस्ती जनूब एशिया के जरिए बहरे हिंद के लिए रूस को एक मुतबादिल बहरी रबता फराहम हो सकता है। ये खबरें आकाशवाणी से नजर की जा रही हैं। चीन के हुक्काम ने शदीद तूफान डॉल्फिन के आने के तनाज में शंघाई समेत मशरकी चीन से 10 लाख से ज्यादा लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया है। खिते में शदीद तूफान के नतीजे में मूसलाधार बारिश हुई और ट्रांसपोर्ट निगम में खलल पड़ गया। आज शंघाई में तकरीबन 1000 परवाजें मनसूख की गई हैं। चीन के हुक्काम ने इससे पहले डॉल्फिन तूफान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया था जो इस साल माह आने वाला सबसे शदीद तूफान है। ये तूफान जब जियांग सूबे में युहान पहुंचा तो उस वक्त 150 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाओं के तेज झक्कर चल रहे थे। इधर चीन के मुख्तलिफ सूबों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है। शंघाई में भी तेज बारिश होने का इम्कान है। हुक्काम ने लोगों को जोर दिया कि गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करें। गब्बर शेरों के आलमी दिन के मौके पर वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत ने एशियाटिक लायन के मस्कन और इसके रेंज में वसत के साथ साथ इसकी तादाद में इजाफा हो रहा है। मरकजी वजीर भूपेन्द्र यादव का तहरीर का मजमून शेयर करते हुए जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि लोगों की मजबूत शमूलियत के साथ गब्बर शेरों को महफूज रखने के सरकार के पुख्ता अज़्म मुल्क के जंगली जानवरों का

आज नाश्ते एक कप पानी, एक कप चीनी, दो चुटकी केसर, थोड़ी इलायची का पाउडर और सब तो पहले असा दो तो त्रै चम्मच पानी विच दो चुटकी केसर पाके रख देसु। वल चाशनी वास्ते पैन रखेसु गैस उत्ते, हिंदे विच एक कप पानी ते एक कप चीनी पेसु, हिंकु तेज सेक ते रखेसु। जेड़े वेले चीनी घोल देसी तो गैस मंदी कर देसु, ते जेड़े वेले चाशनी बन मंजे हुंदे विच जरा जरा केसर घुलाया वाय पा देसु। वल पा देसु छोटी इलायची दा पाउडर, वल चंगी तरह हुकु मिक्स कर देसु। एक काल बी चाशनी को चेक करन वास्ते ए देखसु, अगर उंगलियां को चिपचिपे भी रख दिए ता समझो तुहाडी चाशनी तैयार है। हुन असा गिनसु मावा, मावे को असा इतनी मलेसु जब तक एकदम स्मूथ चिकना ना थी वंजे। मावा तैयार है या कहना ए चेक करन वास्ते मावे दी पेड़ी बना के देखो, अगर पेड़ी विच कोई क्रैक या दरार कहनी ता समझो मावा भी तैयार है। हुन तुसा हिंदे विच पा दियो मैदा, मिल्क पाउडर ते कॉर्नफ्लोर, ए सब मिक्स करके तब तक मल्लो जब तक सारी शय चंगी तरह मिक्स ना थी वंजन। असा वल हिंदी पेड़ी बना के देखसु कि हिंदे विच क्रैक ना पवन। हुन असा क्या करने कि मिक्सचर विचू छोटा जिहा पेड़ा गिनसु, पेड़े को थोड़ा दूजे हाथ नाल थोड़ा दबा के फ्लैट कर गिनसु। हुन हिंदे विच ड्राई फ्रूट जैसे कि बादाम, काजू, चिरौंजी कुछ भी रख के वल गोल पेड़ा बना गिनसु। इवे सारे मिक्सचर दे पेड़े बना गिनन विच ड्राई फ्रूट रख के, बन असा कढ़ाई विच घी पाके गर्म करेसु। जेड़े वेले घी गर्म थी वंजे हुंदे विच एक एक करके पेड़ा पा दियो। पर ये ध्यान रखने ए सारे पेड़े यानी कि बाटी मंदे सेक ते तलन, क्योंकि तेज सेक ते जल्दी ब्राउन ते थी वेसन पर अंदरों पक्षन कहना। ही वास्ते ये ध्यान रखने मंदे सेक ते या मीडियम सेक ते तलन ताकि सारे पासु हिको जे ब्राउन थी वंजे। वल ए सारे बाटी ठंडे थी वंजन ता एक एक करके जेड़ी पहले चाशनी बना रखी तुसा हुंदे विच पा देसु। चाशनी थोड़ी हल्की गुनगुनी होनी चाहिदी है और हिंदे विच आधे घंटे वास्ते भिज्जे रावण वास्ते छोड़ देसु। जेड़े वेले बाटी चंगी तरह चाशनी नाल तर थी वंजन तब उन्हां को प्लेट विच कट के उत्ते थोड़े ड्राई फ्रूट नाल सजा के सर्व कर सकदो, ते तुहाडी मावा बाटी खावण किते तैयार है। हुण तुसी मध्य प्रदेश दा खाना मावा बाटी बनावण दी विधि सुणदे पए हई, ते हुण तुहाको मैं एक गीत सुणवेंदी हां आबिदा परवीन दी आवाज विच। लग

दे लावणे, बल तुसर 200 ग्राम जित्ती दूध थोड़ा थोड़ा करके पावने। दूध पीने टाइम ए ध्यान रखने कि वो कढ़ाई दे तल्ले विच पावने, जड़ा मटेरियल कढ़ाई विच है मुंदे उत्ते नहीं पावना, वो कु थोड़ा थोड़ा पासे करके दूध कढ़ाई दी तली विच पेंदे रहो, ते थोड़ा थोड़ा कड़छी नाल हिलेंदे रहो ताकि दूध भी गर्म थीवे। बल तुसा 3-4 मिनट वास्ते ढक के हुकू रख दियो गैस मंदी करके। 3-4 मिनट बाद ढक्कन हटा के थोड़ा वल करछी नाल हिला के उत्ते थोड़ा जिहा हरा धनिया पा दियो ते मिक्स करो। हुण तुसा एक नींबू दा रस पा दियो और मिक्स कर हिंदे उत्ते चाहे ते सुके नारियल दा चूरा ये सब पा दियो। थोड़ी भुट्टे दी खीर सर्व करने वास्ते हुण तैयार है। भुट्टे दी खीर दे बारे आखिर विच एक भी गल जरूर दसन चाहसा कि भुट्टा जेड़ा है उन्हां वास्ते बहुत फायदेमंद है जिन्हां को एनीमिया है। एनीमिया होंगे जिन्हें को खून की कमी होंगी है। बहु ही हेल्दी ते स्वादी बनसी तुसा जरूर बना के देखसा। हुण तुसा महाराष्ट्र दा व्यंजन भुट्टे दी खीर बनावणी सिखदे पए हवे। हुण वाला वारी है गीत दी, सुनो गिनो ए गीत। ना तू मिले सै ना दुख मिट सन, ना मैं इजहार कर सक सा। गावन आली हिन अताउल्ला खान।

कस्तूरी मेथी क्रश करके पाके 5 मिनट तक पकन लियो। बस थोड़ी देर बाद गैस बंद कर दियो, थोड़ी चक्की दी साग तैयार है। ये थी मध्य प्रदेश की कुछ व्यंजन दी रेसिपियां। मध्य प्रदेश के व्यंजन चक्की दी साग दी विधि तुसा गरिमा तू सुनदे पए हवे ते वाला हुणे खाने बनावो खावो ते नाल ही मजे चाहो इस गीत दे।

0: नजाकत नहीं आती। अरे शर्म तो आती है मगर मगर मगर
1: ओ शराफत

0: रीमा सोलर पैनल लगा ले, सोलर पैनल लगा ले। कदों तो मेरे सारे दोस्त बोलते सन, पर मैं उदो मन्निया जदों प्रधानमंत्री जी ने कहा
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: मैं प्रधानमंत्री जी के कहने पे सोलर पैनल लगवाया, हुन मेरा बिजली का बिल जीरो आया। तुसी भी लगा लो
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in।
3: कहानी है एक नर्स अंतरमन की। आ गई तनखा नवे चुमके, पहला बचत पहला चुमके। सुनो हर महीने थोड़ा बचाओ, थोड़ा निवेश करो, कुछ एमरजेंसी दिलाई भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। चुमकिया था की जान दिया जा की का
2: और भी कहता है
3: वित्तीय समझदारी खुशहाल नारी।
4: फॉरेक्स ट्रेडिंग एक ट्रेड विच सिक्सर अटकिया
2: प्रसिद्ध पहला सुरक्षा नेता टीम बोर्ड अनऑथोराइज्ड प्लेटफॉर्म पे फॉरेक्स ट्रेडिंग मतलब नुकसान धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई दादा
5: मतलब नुकसान भी हैट्रिक। इसलिए आरबीआई की वेबसाइट पे जाओ, आधिकारिक सूची में जांच करो।
2: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनो सचेत रहो। हुण तुसीं सुन रहे सी प्रादेशिक खबरां, साडे अगले ऐलान दा इंतजार करो। असीं आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों बोल रहे हां। हुण पेश है देहाती प्रोग्राम।

0: हाँ जी पटवारी साहब लंघ आइए जी।
1: आजू बाल साहब आजू बच्चे वाले हो।
0: पटवारी साहब जय हिंद जी।
1: जय हिंद जी। वो सुनाओ बाल साहब की हाल चाल नहीं।
0: हाले चाले वाह वधिया चढ़दी कला मेरे उस रब दी असी तो कहने आ सब ते बनी रहे तुसी सुनाओ
1: तगड़ा तगड़ा जी।
0: जी
1: देखो गल इदा जी कि ये जरा समय है ना,
0: हाँ जी
1: जो असि समय की कदर करते हैं
0: जी
1: तो समा थोड़ी कदर करता है।
0: सही गल है जी।
1: जो असि समय की कदर ना करिए ना
0: हाँ जी
1: उस वेले फिर असि खुंझ जाने हैं।
0: अच्छा जी
1: जिवें असि वेखते हैं पानी वगदा है,
0: हाँ जी
1: जो पानी वगदा है तो पानी नूं असि रोक नहीं सकते ना,
0: जी बिल्कुल
1: उदा ही असि समय नूं नहीं रोक सकते।
0: सियाने कहंदे आ ना वेले दी नमाज ते कवेले दीआं टक्करां। हाँ जी
1: देखो गल इदा है कि जिहड़ा इंसान समय की कदर नहीं करता।

0: लंगे आओ मास्टर जी, लंगे आओ, बुआ खुला है। कल बच्चियां दी लगन देख के मेरे सुते हुए जज्बात भी जिवे जाग पे होन। पंजाब दे खूनी इतिहास दे वरके फोलन नाल बिछड़िया हुई यादा मुड़ इकट्ठिया हो गई ने। मैं आप बच्चा नू मिलन लई उतावला सी।
1: ज्ञानी जी सानू कामा गाटा मारू बारे दसो।
0: अच्छा पहला तुसी मेरे एक सवाल दा जवाब दियो।
1: पुछो
0: कोका लहर नू चलाउन वाले मुख आगू कौन सन? ओए तुसी ता सारे ने हाथ खड़ा करता। एदा मतलब तुहानू सारिया नू इस सवाल दा जवाब आउंदा है। अच्छा कल्लू तू दस।
2: जी बाबा राम सिंह जी।
0: शाबाश भाई, हुण मैनू यकीन हो गया कि तुसी सारे जने मेरी गल नू चंगी तरह सुन दे हो।
2: इना दा वस चले ते इहदा सारा दिन तुहाडे कोल ही बैठे रहण। इना दे विच मैं देश भगती दा एक खास जज्बा देखा जी।
0: ओही जज्बा तो देख के मैं आप जज्बाती होया। खैर बच्चो अज मैं तुहानू कामा गाटा मारू बारे दसांगा, पर उस तो पहला मैं तुहानू उस वेले पंजाब दी हालत की सी इहदे बारे भी दसना जरूरी समझदा। देखो बच्चो जदो अंग्रेजा दा भारत ते कब्जा होया भारतीयां दी लुट खो बड़ी तिखी ते तेज हो गई। बरतानिया तो मशीना कारखानिया विच बने ते भारत विच लियांदे माल दा मुकाबला पेंडू दस्तकार ना कर सके। इसे करके पंजाब दा दस्तकार भुख नाल मरन लगा। फिर उन्हे खेती बाड़ी दा सहारा लिया, पर थोड़िया जमीना दे मालक ते छोटे किसान जमीनी मालिया ते आबियाना तारन लई कर्जे हेठ दबदे गए। इसे करके वो शाहूकारां दे हथ जमीन बेचन ते होर रोजगार लभण लई मजबूर हो गए।
3: लाल सिंह ऐदा हाथ ते हाथ धर के बैठन नाल कुछ नहीं बनना, कुछ तो करना ही पऊ।
2: पर करिए की

0: वैसे भी जहाज जो वापस जाना ही पड़ा है।
1: नहीं
0: अभी वापस नहीं जाओगे, मर जाओगे, पर जहाज पीछे नहीं मुड़न जाओगे। दोस्तों संघर्ष इतना सौखा भी नहीं। पता लगा कि कनेडा सरकार सील लाइन नामी जहाज न एक जहाज को बन के बाहर ले जाएगी।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद आज लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यह विधेयक पेश किया था। इस विधेयक के माध्यम से भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन किया गया है। संसद ने बैंक कार बहिसाक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को आज राज्यसभा ने भी मंजूरी दे दी है। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसका उद्देश्य वर्तमान बैंकिंग प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा कि यह विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बैंककार बहिसाक्ष्य अधिनियम 1891 में बनाया गया था, जब बैंकिंग प्रणाली पूरी तरह से कागजी थी। लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्त और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 बिना चर्चा के पारित हो गया। हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य सलाहकार समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
3: छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे शांति से, ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा।
2: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे

0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्र की सामूहिक शक्ति का प्रतिबिंब है जो नागरिकों को विकसित भारत के निर्माण के प्रयास में एकजुट करता है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस वर्ष वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के कारण यह अभियान हर देशभक्त के लिए भावुक बन गया है। उन्होंने नागरिकों से तिरंगा फहराने और हरघरतिरंगा.com पर अपनी सेल्फी अपलोड करने का भी आग्रह किया। और खेलों में FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप से पहले इसकी संरचना में बदलाव किए गए हैं। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेगी। यह प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि भारतीय महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को राम राम।
1: वंदना, देखो अपने कार्यक्रम के जरिए हम कुछ न कुछ विशेष बातें, विशेष जानकारी उन तक पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं
2: जी।
1: और आज भी हम कुछ ऐसी बातचीत लेकर के आए हैं, कुछ ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जो हमारे किसानों के लिए बेहद ही लाभकारी साबित होगा। तो इसमें जो जानकारी का जो हमारा विषय है वो हरे चारे के परिरक्षण की विधियां। और इस समय हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर ऋषिराज जी जो कि इसमें कार्यक्रम में आए हुए हैं और वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सबसे पहला प्रश्न जो हरे चारे को लेकर के है तो ये है कि हरे चारे का परिरक्षण क्यों आवश्यक है?
3: जी हरे चारे का जो परिरक्षण है हमें इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारे किसान भाइयों के साथ जो हरा चारा है वो साल भर के 12 महीनों में लगातार उपलब्ध नहीं होता है। तो इसकी जो हरे चारे की जो उपलब्धता है वो वर्षा ऋतु में प्रचुर मात्रा में होती है। गर्मी के मौसम में हमारे किसान भाइयों के पास इन हरे चारों की उपलब्धता कम हो जाती है। तो इन उपलब्धता न होने की जो समस्या उसको दूर करने के लिए हमें गर्मी के मौसम में हमें हरे चारे को परिरक्षण करके रख लें तो जो हमारे पशुओं के लिए जो आहार की आवश्यकता है इन महीनों में वो आसानी से पूर्ण की जा सकती है।
0: जी जी जी हाँ। और हरे चारे का जो परिरक्षण का क्या क्या विधियां हैं?
3: हरे चारे के परिरक्षण के लिए जो हमारी जो वैज्ञानिक विधियां हैं उनमें दो वैज्ञानिक विधि हैं। एक तो हम साइलेज बना के हम हरे चारे को परिरक्षण कर सकते हैं और दूसरी हमारी जो विधि है उसमें हम हे के रूप में अपने चारों को परिरक्षण करते हैं। तो इस तरह से यहाँ जो हरे चारे के परिरक्षण की जो मुख्य दो विधियां हैं, एक तो साइलेज विधि हो गई और दूसरी हे विधि होती है।
1: जैसे आपने साइलेज की बात की डॉक्टर साहब, तो साइलेज क्या है और कैसे बनता है ये?
3: जी साइलेज को अगर हम विस्तार से देखें, साइलेज का एक वैज्ञानिक सिद्धांत होता है। तो जो वैज्ञानिक जो सिद्धांत है साइलेज बनाने का, उसमें जो हमारा हरा चारा है, हरे चारे में जो हमारे जो घुलनशील जो शर्करा है जिसे हम सॉल्युबल शुगर कहते हैं वो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और ये जो घुलनशील शर्करा है वो वायु रहित जो हमारा परिदृश्य है उसमें इस घुलनशील शर्करा का रूपांतरण हो जाता है जो लैक्टिक अम्ल बैक्टीरिया के द्वारा। जब लैक्टिक अम्ल बैक्टीरिया के द्वारा हमारी जो घुलनशील जो शुगर है वो परिवर्तित हो जाती है लैक्टिक अम्ल में, लैक्टिक अम्ल बनने के कारण जो हमारा जो पीएच का मान है जो हमारे चारे का वो काफी कम हो जाता है, वो लगभग 3.8 से 4.2 के बीच पहुंच जाता है। तो जो पूरा जो

0: वातावरण है चारे का वो अम्लीय हो जाता है। जब अम्लीय चारा हमारा हो जाता है तो उस दशा में जो हमारे हानिकारक जो बैक्टीरिया है जो हमारे चारे को सड़ाते हैं वो उनकी जो वृद्धि है वो नहीं हो पाती। तो जो लैक्टिक अम्ल है वो हमारा प्रिजर्वेटिव का पररक्षण का काम यहाँ पे हमारे चारे के लिए करता है। तो इस सिद्धांत पे हमारा साइलेज बनाया जाता है।
1: जी बिल्कुल, आपने साइलेज की बात बताई कि कैसे बनता है, तो अभी बताइए डॉक्टर साहब की साइलेज बनाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए।
0: सावधानियों से पहले अब हम मैं विस्तृत बताना चाहूंगा, ये तो मैंने साइलेज का सिद्धांत बताया।
2: बिल्कुल, आपने सिद्धांत बताया, हम विस्तार में जानना भी चाहेंगे जी, हमारे जी किसान उसका फायदा उठाए।
0: तो साइलेज बनाने के लिए सबसे पहले जो हमारा जो मुख्य बिंदु है कि हम साइलेज बनाने के लिए हम किन फसलों का चयन करें। तो साइलेज बनाने के लिए सबसे जो उपयुक्त फसलें हैं उनमें हमारी एक तो मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, जई है, ये मुख्य जो हमारी फसलें हैं उनका मुख्य रूप से हम साइलेज बनाने में उनका प्रयोग करते हैं। अब जब हमारा फसल का चयन हमने कर लिया जो साइलेज बनाने के लिए उपयुक्त हैं, उसके बाद हमारा जो आता है कि हम फसल की कटाई कब करें।
1: जी।
0: तो जब हम इन फसलों का चयन कर लेते हैं उसके बाद फसल की जो साइलेज बनाने के लिए जो कटाई की जो सबसे उपयुक्त स्थिति होती है वो जब हमारी फसल में फूल आ जाए या हमारी फसल में दाने में दूधिया भर जाए, दूध भर जाए, उस अवस्था में अगर हम इन फसलों की कटाई करते हैं तो उस समय इन फसलों में सबसे अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। इस अवस्था में ही हमें अपनी फसलों की कटाई करना चाहिए। विशेष ध्यान देने की बात यह है कि अगर हम इन फसलों की कटाई उपयुक्त समय पर नहीं करते हैं तो हमारा जो साइलेज बनता है वो उसकी पोषक तत्व की जो गुणवत्ता है वो प्रभावित होती है। उदाहरण के रूप में अगर देखें, अगर हम इस फसलों की कटाई देर से करते हैं, जैसे फसल के पकने की अवस्था में करते हैं, तो उस समय में जो हरे चारे में जो हमारा जो नमी है वो कम हो जाती है। अगर हमारी नमी कम हो जाएगी तो हमारी जो पोषक तत्व हैं या साइलेज बनने की जो गुणवत्ता है वो प्रभावित होगी। तो इस के लिए हमें चाहिए कि हमें उपयुक्त समय पर ही फसल की कटाई करें। अब दूसरी बात आती है कि फसल की कटाई, फसल का चयन एवं कटाई के बाद इसमें एक प्रमुख चरण आता है कि जब हम हमारे किसान भाई अपने खेत से हरे चारे की कटाई कर लेते हैं उसके बाद हम इसकी जो चारे काटने वाली जो मशीन है उससे इन चारों को काटते हैं। तो इसका उद्देश्य होता है कि जो जो चारे का जो हमारा जो भाग है वो 1 से 2 इंच तक काट के हम इसको तैयार करते हैं। तो जब हम अपनी फसल को चारे काटने वाली मशीन के द्वारा काट लेते हैं तो उसके बाद जब हमारा चारे के जो हिस्से हैं वो 1 से 2 इंच के हो जाते हैं तो हम अब हमारा तीसरा जो चरण आता है उसमें आता है कि हम साइलेज को मुख्य रूप से हम लोग साइलो पिट में बनाते हैं। ये कई तरह के हो सकते हैं, ये मिट्टी के भी हो सकते हैं, ये ईंट बालू या सीमेंट के बने हुए पिट भी हो सकते हैं, तो या जो हमारे जो मार्केट है उसमें पॉलीथीन अच्छी मिलती हैं उनका भी हमारे किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं। तो इन जो साइलो हैं, जो गड्ढे हैं, उनमें जो काटे हुए जो चारे के जो टुकड़े हैं उनको हम परत दर परत बिछाते हैं। परत दर परत बिछाने के बाद इसको हम अच्छी तरह से दबाते हैं। दबाने का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि साइलो साइलेज जब भी बनता है इसका मुख्य सिद्धांत यह है कि इसमें हवा नहीं होनी चाहिए, इसमें ऑक्सीजन नहीं होने चाहिए। अगर ऑक्सीजन रहेगी तो हानिकारक जो जीवाणु हैं वो फैलेंगे और हमारे साइलेज को खराब कर। तो ऐसी दशा में हमें परत दर परत चारे को बिछाना चाहिए और उसको अच्छी तरह से दबाना चाहिए। दबाने से क्या होता है कि जो हमारी चारे के दो टुकड़ों के बीच में जो हवा बची हुई है वो निकल जाती। तो अच्छी तरह से हम परत दर परत चारे को बिछाएं और दबाते रहें और तब तक हम गड्ढे को भरते हैं जब तक वो

0: जो हमारा समतल जो जमीन है उससे एक फीट तक ऊंचाई तक न हो
1: जी।
0: तो उस प्रक्रिया को हम जारी रखते हैं। और सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है, साइलेज जब भी बनाए तो जो चारा भरने का जो अवधि है वो कम से कम हो। ऐसा नहीं हमारे किसान भाई साइलेज बनाना शुरू करे और लगभग साइलेज का एक गड्ढा भरने में 7 दिन ले लिए, ऐसा नहीं करना है। अधिकतम 5 दिन में पूरा गड्ढा हमारा भर जाना चाहिए। जब हमारा गड्ढा चारे की जो कटे हुए जो टुकड़े उनसे भर गया, उसके बाद हमने अच्छी तरह से उसको दबा दिया। दबाने के बाद हम उसको कवर करें, कवर के लिए पॉलिथीन शीट का प्रयोग कर सकते हैं और मिट्टी की परत भी लगा सकते हैं। तो मिट्टी की परत से अच्छी तरह से हम अपने पेट को ढक दें। तो इसकी सारी जो प्रक्रिया है इसमें जो आखिरी अवस्था है वो आती है किण्वन की प्रक्रिया, जिसे फर्मेंटेशन कहते हैं। जब हमने गड्ढा भर दिया उसके बाद हमने पॉलिथीन शीट से या मिट्टी से उसको प्रॉपर अच्छी तरीके से उसको कवर कर दिया, उसके बाद उसमें किण्वन की प्रक्रिया स्वतः ही प्रारंभ हो जाती है। और स्वतः ये जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ होती है जो हरे चारे में जो पाए जाने वाले लैक्टिक अम्ल बैक्टीरिया हैं, वो जो चारे में पाए जाने वाली घुलनशील शर्करा है उसको लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित करते हैं। और इसके परिवर्तन के कारण अम्ल बनते हैं, तो अम्ल के कारण पीएच मान काफी कम हो जाता है। उसके द्वारा ये जो अम्ल है वो हमारा प्रिजर्वेटिव का काम करता है। जब प्रिजर्वेटिव का काम करेगा तो हमारा जो चारा है वो सड़ता नहीं है और इसकी जो स्वाद कहें या इसकी जो गंध है वो मीठी और खट्टी होती है। तो इस तरह से हम किण्वन की प्रक्रिया करते हैं। तो इसमें लगभग किण्वन की प्रक्रिया में लगभग 21 दिन का समय लगता है। 21 दिन के समय के बाद 45 से 60 दिन में हमारा अच्छा साइलेज बनकर तैयार हो जाता है।
1: बिल्कुल, आपने साइलेज बनाना बता दिया। तो आपने दो विधियां बताई, एक साइलेज और एक हे
0: जी।
1: तो साइलेज की विधि होगी, आप हे के बारे में जानना चाहेंगे वो कैसे बनेगा?
0: जी बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। अब साइलेज के बाद हमारी दूसरी वैज्ञानिक विधि है हे विधि। तो हे विधि एक सिंपल विधि है। इसमें हम लोग किसान भाई हमारे क्या करते हैं, जो हमारा हरा चारा है उसको हम सुखाकर जिसमें नमी की मात्रा 15% से कम होती है, उस अवस्था को अगर हम हरे चारे को सुखाकर रखते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं, तो उस दशा को हम हे के रूप में जानते हैं। अब हे के बनाने के लिए जो मुख्य बातें हैं वो सबसे पहले आता है फसल का चुनाव और कटाई की अवस्था। तो जैसा हमने साइलेज के उसमें बताया कि साइलेज के लिए ये प्रमुख फसलें हैं, उसी तरह हे के लिए हमारी कुछ मुख्य फसलें हैं, उनका अगर हम प्रयोग करते हैं तो हे की जो पोषण की मात्रा है जिसमें प्रोटीन की मात्रा कहें या खनिज लवण की मात्रा का है वो अच्छी पाई जाती है। तो सबसे उपयुक्त जो फसलें हैं ये बनाने के लिए वो हमें फलीदार फसलें लेनी चाहिए।
1: अच्छा।
0: मुख्य रूप से जो हमारी दलहनी फसलें हैं, जैसे आपका लोबिया है, सोयाबीन है, बरसीम है, लहसुन है, ये जो मुख्य हमारी फसलें हैं जो फलीदार भी हैं और जिनको हम हरे चारे के रूप में भी प्रयोग करते हैं। तो इन फसलों का हमें ये बनाने के लिए चयन करना चाहिए। अगर हम इन फसलों का चयन करते हैं तो हमें जो हे जो बनकर तैयार होगी वो बहुत ही गुणवत्ता युक्त होगी, उसमें पोषण की मात्रा बहुत अत्यधिक होगी और प्रोटीन की मात्रा भी बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह से हम फसलों का चयन कर लेते हैं। अब बात आती है कि हम फसल की कटाई कब करें। तो हे बनाने के लिए जो मुख्य समय होता है कि जब हमारी फसल में फूल आने की अवस्था है, वो सबसे अच्छी अवस्था होती है हे बनाने के लिए। इस अवस्था में सबसे ज्यादा पोषक तत्व फसल में होते हैं। तो उस समय हम फसल की कटाई करें। उसके बाद कटाई करने के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है कि हम फसल की कटाई के समय उसकी नमी को कैसे निकालें। तो नमी को निकालने के लिए हम अपनी फसल को अच्छी तरह से पतली परत के रूप में अपने खेत में ही

0: रूप में अच्छी तरह से फैलाएं। अच्छी तरह से फैलाने के बाद हम उसको एक दो बार पलटें भी, जिससे जो सारा संपूर्ण जो हमारा चारा है, हरा चारा है, वो सूख जाए। अब उसके बाद हमें देना है तैयार किया हुआ जो हमारा चारा है, उसमें नमी की मात्रा हमें उसमें चेक करनी है। तो उसके लिए हमें साधारण सा तरीका है कि हम एक पौधा लें इस चारे वाली फसल का और मोड़ के देखें, अगर वो टूट जाता है, इसका मतलब है कि हमारा जो हरा चारा है वो सूख गया है और उसमें नमी की मात्रा 15% से कम हो चुकी है। जब ये विधि पूर्ण हो जाती है, उसके बाद हमारा जो लास्ट चरण है वो आता है कि भंडारण का। तो हम खेत से निकाल के सूखे हुए जो हमारे जो चारा है उसको, उसके बंडल बनाए, वो बंडल बना के जो हमारा जो बायो, जो हमें हवादार जो कोई स्थान हो उसमें रखें, और हम ये सुनिश्चित भी करें कि वहां पे नमी ना आए। तो इस तरह से हम हे को बना सकते हैं और हे का प्रयोग कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, आपने हे के बारे में, साइलेज के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हमारे भाइयों को दी है। तो आगे आपसे पूछना चाहेंगे कि पशुओं के लिए कैसे लाभकारी है?
0: पशुओं के लिए बहुत ही ये बहुत लाभकारी विधि है, जिसके द्वारा अगर हम पशुओं को साइलेज या हे का प्रयोग करते हैं। चूंकि हमारे जो गर्मी के महीने होते हैं उनमें मुख्य रूप से हरे चारों की जो उपलब्धता है वो हमारे पशुओं के लिए कम होती है, कम हो जाती है। तो उस समय अगर हम इन जो हमारे परिरक्षण किए हुए चारे हैं उनका प्रयोग करते हैं, तो सबसे पहला जो लाभ है कि जो पशुओं का स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा रहता है। पशुओं का स्वास्थ्य इसलिए अच्छा रहता है कि परिरक्षण किए हुए, चाहे साइलेज हो या हे हो, इन दोनों में जो पोषक तत्वों की जो मात्रा है वो बनी रहती है, उपयुक्त बनी रहती है, इनका ह्रास बहुत कम होता है। तो अगर हम इन चारों को पशुओं को खिलाते हैं तो इनसे हमारे पशु का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है। और दूसरा सबसे बड़ा जो लाभ है, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि। गर्मी के मौसम में क्या होता है कि हमारे किसान भाई सूखा भूसा पशुओं को खिलाते हैं, उससे अच्छा है कि अगर हमारा जो परिरक्षित किया हुआ साइलेज या हे खिलाएं, तो निश्चित रूप से दुग्ध का जो उत्पादन है वो बढ़ता है और दुग्ध की जो उत्पादन की जो गुणवत्ता है उसमें भी बढ़ोतरी होती है।
1: जी, और पशुओं का स्वास्थ्य ठीक रहता
0: है। जी जी, और तीसरा जो लाभ है, पाचन में सुधार। जो भी परिरक्षित किए हुए जो हमारी जो साइलेज या हे है, इसमें जो रेशा है, जो फाइबर की मात्रा है वो अधिक होती है। जब ये फाइबर की मात्रा इन आहारों में अधिक होती है तो जो पाचन तंत्र है पशु का, मुख्य रूप से जो जो हमारे जो पशु हैं जो जुगाली करते हैं, उनमें इसका महत्व बहुत ही बढ़ जाता है। तो पाचन तंत्र पशुओं का बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा प्रजनन क्षमता भी इन हरे चारियों को परिरक्षण करके खिलाने से बढ़ जाती है। पशुपालन की सबसे बड़ी जो इसका लाभ है वो है पशुपालन की लागत। आज के मौसम में अगर हमारे जो किसान भाई हैं भारतवर्ष में, पशुओं को पालने में जो लगने वाली जो लागत है उसका 60-70% भाग आहार पर खर्च होता है। तो अगर गर्मी के मौसम में जब किसान भाइयों के पास हरे चारे की फसल नहीं है खेत में, उस समय अगर इन परिरक्षित चारों का प्रयोग करते हैं तो उस समय जो हमारे किसान भाई अनाज और जो ज्यादा कंसर्न खलचूरी देते हैं, तो उसका जो उपयोग है वो उतना नहीं करना पड़ता, जिससे पशुपालन की जो लागत है वो कम हो जाती है।
2: डॉक्टर साहब, जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसके सामने चुनौतियां भी आती है, तो जैसे हरे चारे के परिरक्षण की बात हो रही है तो इसकी कौन कौन सी चुनौतियां होती है और फिर इनसे कैसे निपटा जाए?
0: जी, चुनौतियों की अगर बात करें, इसकी कोई ज्यादा चुनौतियां नहीं है। थोड़ी बहुत चुनौतियां ये हैं कि हमारे किसान भाइयों को थोड़ा सा अभाव रहता है कि बनाने की विधि कहाँ से प्राप्त करें। तो उसके लिए हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, हमारा एक संस्थान है, वहां से आप जानकारी ले सकते हैं। हमारे किसान भाई चारा के लिए एक

0: हमारा एक संस्थान है भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी, जो मुख्य रूप से चारा पर ही अनुसंधान करता है, उससे संपर्क करके हमारे किसान भाई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अच्छी जानकारी लेके इन चारों से परिरक्षण कर सकते हैं इन चारों का।
1: बिल्कुल, हरे चारे की परिरक्षण की क्या विधियां हैं इस विषय में देखिए डॉक्टर ऋषिराज जी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। इस समय आप जो है देखा जाए तो आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। आप आए हो हमारे किसान भाइयों बहनों को बहुत अच्छी जानकारी दी, जरूर इसका लाभ उठाएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, कुछ गीत संगीत का भी आनंद लेते हैं।
2: जी हाँ, अपने डॉक्टर साहब का भी मनोरंजन कराते हैं। आइए सुनवाते हैं मंजू शर्मा की आवाज में ये कृषि गीत।

0: यमुना बहन, अभी हमारे भाई सुन रहे थे मंजू शर्मा की आवाज में ये देशभक्ति गीत।
1: और देखो बरसात का मौसम चल रहा है वंदना, ऐसे में विशेष तौर पे ध्यान देना होगा कि हमारे जो पशु हैं
0: जी,
1: अपने साथ साथ हम अपने पशुओं का भी ध्यान रखें।
0: बिल्कुल,
1: उनके उठने बैठने खाने से लेकर के हर जगह का उनका ख्याल रखना होगा।
0: बिल्कुल, देखिए जब बरसात का मौसम होता है तो घर में सीलन पैदा हो जाती है और हमारे जो पशु हैं वहीं मूत्र उनका रहता है, गोबर रहता है, तो ऐसे में उनके नीचे बहुत गीला हो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: और वो बैठने में बहुत परेशानी उनको होती है और ऐसे में कीड़े भी हो जाते हैं कितनी बार उनके खुरों में क्योंकि गंदगी ज्यादा हो जाती है। तो अपने पशुओं के नीचे हरा चारा तो नहीं होता जैसे, लेकिन सूखा भूसा डाल दीजिए, राख हो वो डाल दीजिए, तो इस तरह सूखा रखें तो ज्यादा अच्छा है।
1: एक चीज और है, जो उपले होते हैं ना, उपले छोटे छोटे टुकड़े हमारे टूटे हुए पड़े रहते हैं, उन उपलों को लीजिए और थोड़ा सा नीम की पत्ती लीजिए, उसे एक बोरसी में या किसी चीज में सुलगा दीजिए हल्का सा, तो जो मच्छर लग रहा है उस मच्छर के प्रकोप से भी बचेंगे।
0: बिल्कुल,
1: मच्छर भी बहुत पनपते हैं।
0: बिल्कुल, धोते वक्त जब भी धुलाई करें तो फिनाइल का पानी यूज करें। फिनाइल का पानी यूज करेंगे तो वहाँ पे कीड़े मकोड़े मक्खी मच्छर ये नहीं होंगे। और आप देखते हैं कूलर वूलर इस चीज का, पंखे का भी ध्यान रखें क्योंकि मक्खी मच्छर सबको लगते हैं।
1: बिल्कुल, और सूखे का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए, जहाँ भी उनको बैठना है वो सूखा होना चाहिए।
0: बिल्कुल, और जब उनके खाने की बात अगर आती है तो हरा चारा वैसे तो इस टाइम पे बहुत होता है, लेकिन फिर भी खाना मतलब चारा देते वक्त ध्यान रखें कि उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा इस तरह का जहरीला कीड़ा मकोड़ा ना कट जाए जो हमारे जो पशु हैं उसको दिक्कत पैदा कर जाए।
1: बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि तासीर जो चीज आप खिला रहे हैं उसकी तासीर गर्म है कि ठंडी है, इसका भी विशेष तौर पे ध्यान दीजिए, जिससे उनके सेहत बनी रहे, उन्हें किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी ना आने पाए।
0: बिल्कुल, और पानी का विशेष ध्यान रखिए क्योंकि बरसात के मौसम में पानी दूषित हो जाता है, तो खुला पानी बिल्कुल ना पिलाएं, ताजी नल से खींच के या समरसीवर से जो भी आपके घर में है तुरंत ताजी निकालें और तभी पानी पिलाएं, क्योंकि पानी का बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है शरीर पे।
1: बिल्कुल, और एक संदेश भी सुनवा देते हैं।
2: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
0: ये तो था हमारे नया प्रोग्राम है जो कि अब नया शुरू हुआ है उसका एड, और जो हम बात कर रहे थे अपने भाइयों से अपने पशुओं के बारे में, तो उनका ध्यान आपको ऐसे ही रखना है जैसे हम अपने बड़े बुजुर्गों का रखते हैं।
1: बिल्कुल, और कार्यक्रम जो कृषि जगत है खास करके आपके लिए है, कुछ न कुछ विशेष जानकारी के साथ कल हम फिर उपस्थित होंगे
0: जी।
1: और ये भी बता दें कि कार्यक्रम का जो हमारा पता है, कृषि एवं गृह एकांश, कमरा नंबर 610, नौ प्रसारण भवन, आकाशवाणी नई दिल्ली, पिन कोड है 1100001। और जो हमारा ईमेल का पता है feedback@gmail.com।
0: तो ये तो थी जानकारी, और आपको अगर कोई भी लेटर या कोई भी सूचना अगर देनी है तो आप इस पते पर हमको लिखकर भेज सकते हैं
1: जी। कार्यक्रम के प्रस्तुत करते हैं तुषार पारसर
0: और संयोजक शिवनंदन लाल। इसी के साथ हमारा आज का ग्राम संसार कार्यक्रम यही संपन्न होता है। सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को राम राम, राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, या आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए गजल कव्वाली के कार्यक्रम के अंतर्गत आगाज करते हैं एक खूबसूरत गजल के साथ आज के इस कार्यक्रम का।

0: श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे इन खूबसूरत सी गजलों का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर। आइए अब से कुछ ही पलों में सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: लोन दिए गए काम में लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। आप कौन?
2: आरबीआई कहता है
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
5: पंखा का खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
4: आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
6: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कनकलता। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विद्यावाहिनी योजना के अंतर्गत 200 छात्राओं को मुफ्त साइकिलें वितरित की। दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना में लगभग 6 लाख महिलाओं ने पंजीकरण कराया। दिल्ली पुलिस ने साइबर ठगी के एक गिरोह का भंडाफोड़ कर 9 लोगों को गिरफ्तार किया और राजधानी दिल्ली में भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा निकाली गई। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज विद्यावाहिनी योजना के अंतर्गत राजधानी के 200 छात्राओं को मुफ्त साइकिलें वितरित की। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने कहा कि अब तक 3000 से अधिक छात्राओं को निःशुल्क साइकिलें पहुंच चुकी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का संकल्प है कि सरकारी विद्यालयों की कक्षा 9 में पढ़ने वाली 1,40,000 से अधिक बेटियों तक ये सुविधा पहुंचे। संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार छात्राओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए उन्हें मजबूती से आगे बढ़ने में मदद करने के लिए पूरी तरह उनके साथ खड़ी है।
7: ये साइकिल नहीं है, ये मेरी दिल्ली की बेटियों का आर्थिक विश्वास है, इसे दिल्ली सरकार मजबूत करना चाहती है, वो आगे बढ़े, उसके लिए हमारी सरकार उनके साथ खड़ी है, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी डिग्निटी के लिए, उनकी हेल्थ केयर के लिए, हर वो जरूरत जो हमारी इन बेटियों की है उसे हम पूरा करना चाहते हैं।
6: दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि इन साइकिलों के माध्यम से छात्राओं को मदद मिलेगी और वे अपनी पढ़ाई पर अधिक समय दे पाएंगी।
8: 1,40,000 बच्चों को साइकिल बंटेगी। मैंने लोकसभा के कार्यक्रम में बच्चियों को ये कहते सुना, इस साइकिल से हम ज्यादा समय पढ़ाई में दे पाएंगे। अगली बार मेहनत करके राज्य सरकार की लैपटॉप स्कीम में भी पुरस्कार पाने की कोशिश करेंगे और ये हमारा कंसिडर्ड व्यू है। हम खर्चा बच्चों को एम्पावर करने में करेंगे, फुल पेज विज्ञापन में नहीं करेंगे।
6: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली लक्ष्मी योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू होने के 10 दिन के भीतर ही लगभग 6 लाख महिलाओं ने पंजीकरण कराया है। विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में पंजीकरण दिल्ली सरकार के प्रति महिलाओं के उत्साह और भरोसे को दिखाता है। उन्होंने पिंक सहेली कार्ड योजना पर बल देते हुए कहा कि इस योजना का लाभ राजधानी की हर महिला को मिलेगा, चाहे वो मूल रूप से किसी भी राज्य की

0: रहने वाली हूँ।
1: दिल्ली राज्य में रहने वाली एक एक बहन, चाहे वो किसी और राज्य की भी है परंतु दिल्ली की निवासी है, हर बहन को पिन कार्ड मिलेगा, क्योंकि दिल्ली राज्य का पैसा, दिल्ली के टैक्सपेयर का पैसा दिल्ली राज्य के लोगों की सुविधाओं के लिए ही खर्च कर सकती है। तो पिन कार्ड लगातार बन रहे हैं और दिल्ली की हर बहन के लिए है।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज एक निजी मीडिया चैनल द्वारा आयोजित शक्ति अवार्ड 2026 में शामिल हुई। इस आयोजन में विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा, परिश्रम और उद्यम से नई पहचान बना रही महिला उद्यमियों को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण की सोच को नई दिशा दी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने साइबर ठगी के एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ कर 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी मेरठ, गाजियाबाद और जयपुर से साइबर अपराध कर रहे थे। एक रिपोर्ट।
2: मध्य दिल्ली के पुलिस उपायुक्त रोहित राजवीर सिंह ने नई दिल्ली में आज मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि अब तक राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP पर इस गिरोह से संबंधित करीब 19 शिकायतें दर्ज की गई हैं। ये शिकायतें महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना और उड़ीसा सहित कई राज्यों से मिली हैं। इन मामलों में करीब 65 लाख रूपये की ठगी की गई है। छापेमारी के दौरान दिल्ली पुलिस ने 4 लैपटॉप, 2 टैबलेट, करीब 52 मोबाइल फोन, 70 डेबिट कार्ड, 145 सिम कार्ड, 6 पॉइंट सेल POS मशीन, 13 बैंक पासबुक और 4 लाख रुपए नकद बरामद किए। दिल्ली पुलिस को संदेह है कि आरोपी विशेष सॉफ्टवेयर की मदद से बिना सिम कार्ड का इस्तेमाल किए बैंक खातों तक पहुंचकर लेनदेन कर रहे थे। पुलिस इस तकनीकी पहलू की आगे जांच कर रही है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने ऑनलाइन ट्रेडिंग निवेश धोखाधड़ी मामले में एक आरोपी को ओडिशा से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन ट्रेडिंग निवेश के बहाने लगभग 5 लाख की धोखाधड़ी कर चुका था। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन शस्त्र के अंतर्गत रोहिणी क्षेत्र से लगभग 41 मामले दर्ज किए हैं और 52 लोगों को गिरफ्तार किया है। संवाददाताओं से बातचीत में अपर पुलिस उपायुक्त सतीश कुमार ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य अवैध हथियारों पर रोक लगाना, सड़क पर होने वाले अपराधों को कम करना और अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों को जेल भेजना है।
3: ऑपरेशन शस्त्र का मुख्य उद्देश्य है अवैध हथियारों पर अंकुश लगाना, सड़क अपराध को रोकना और जो भी इलीगल गतिविधियों में शामिल हैं उनको जेल के भीतर करना। टोटल हमारी जो रिकवरी है वो 15 फायरआर्म हमने रिकवर किए हैं, 10 चाकू, 26 लाइव कार्ट्रिज, 18,000 क्वार्टर इलिसिट लिकर, 15 किलोग्राम गांजा और 800 ग्राम हेरोइन। तो हमने आर्म्स एक्ट ही नहीं, एक्साइज एक्ट के तहत भी एक्शन लिया है, NDPS एक्ट और गैम्बलिंग एक्ट के तहत भी।
0: भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में राजधानी दिल्ली में दिल्ली भाजपा द्वारा आज तिरंगा यात्रा निकाली गई। चांदनी चौक के टाउन हॉल से हौज गाजी तक निकली इस यात्रा का नेतृत्व दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने किया। इस दौरान श्री मल्होत्रा ने कहा कि तिरंगा भारत का सम्मान और गौरव है। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा उन लोगों को श्रद्धांजलि और नमन है जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपनी जान दे दी।
4: तिरंगा यात्रा है ये स्वतंत्रता संग्राम में जो हमारे शहीद हुए हैं उनके प्रति सम्मान है। मोदी जी के नेतृत्व में देश के 140 करोड़ लोग देश के स्वतंत्रता संग्राम के लिए शहीद हुए, सभी शहीदों को नमन कर रहे हैं।
0: दिल्ली यातायात पुलिस ने राजधानी के भारत मंडपम में बुधवार से आयोजित होने वाले भारत व्यापार महोत्सव के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
5: यातायात पुलिस ने लोगों से भीड़ के समय में मथुरा रोड और भैरव मार्ग का उपयोग न करने की सलाह दी है। इन मार्गों पर सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक गाड़ी रोकने और पार्क करने पर रोक रहेगी। यातायात पुलिस ने बताया कि वैकल्पिक मार्ग के तौर पर रिंग रोड का इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं यात्रा की योजना पहले से बना लेने और यात्रा के लिए पर्याप्त समय लेकर चलने को कहा गया है। यातायात पुलिस ने ISBT रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना उसी हिसाब से बनाने की सलाह दी है। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने का भी आग्रह किया है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली देहात विकास मंच के प्रतिनिधि और NH5 भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसान

0: पत्रकारों से मुलाकात की। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्रास सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी। आर्थिक कार्य विभाग की स्क्रीनिंग कमेटी ने वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कमांड एरिया के लिए 2574 करोड़ रूपये की एशियन डेवलपमेंट बैंक सहायता प्राप्त परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस परियोजना के अंतर्गत वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से लेकर ट्रांसमिशन नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों और घरों तक पानी पहुंचाने वाली व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। इस अवसर पर दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि हर नल के पीछे का पूरा सिस्टम मजबूत, आधुनिक और भरोसेमंद हो। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
1: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
0: राजधानी दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा, हालांकि कई क्षेत्रों में तेज बारिश हुई। आज का अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब आप दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल सागर। दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन आज शून्यकाल में विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों के मुद्दे उठाए और विधायी कार्यों में पिछली आम आदमी पार्टी सरकार की 19वीं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी की रिपोर्ट सदन में पटल पर रखी। विशेष उल्लेख के दौरान भाजपा विधायक डॉ अनिल गोयल ने सफाई का मुद्दा उठाया, वहीं भाजपा विधायक गजेन्द्र यादव ने महरौली में अस्पताल शुरू करने का मामला उठाया। साथ ही आम आदमी पार्टी के विधायक इमरान हुसैन ने पुराने दिल्ली के कई क्षेत्रों में लगने वाले जाम से लोगों को होने वाली परेशानी का मामला रखा। दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट ने सदन में विपक्ष द्वारा अनुचित नारे वाले टी शर्ट पहनकर आने पर आपत्ति जताई। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने आप पार्टी के विधायकों को सदन की गरिमा को बनाए रखने को कहा। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश साहिब सिंह का एक प्रस्ताव लेकर आए। इस प्रस्ताव में कुलदीप कुमार, संजीव झा, जरनैल सिंह, अजय दत्त, प्रेम कुमार, सोमदत्त सहित 6 आप विधायकों को सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के कारण सदन से बाहर करने को कहा गया था। इसके बाद सुरक्षाकर्मियों द्वारा उन्हें सदन से बाहर कर दिया गया। इसी दौरान सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित भी किया गया। दिल्ली के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने दिल्ली नागरिकों का समय पर और आसानी से सेवाएं पाने का अधिकार विधेयक 2026 विधानसभा में पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य दिल्लीवासियों को सरकारी सेवाएं तय समय सीमा में पारदर्शी और बिना अनावश्यक भागदौड़ के उपलब्ध कराना है। इसके अतिरिक्त शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड संशोधन विधेयक 2026 को प्रस्तुत किया। इसके बाद दिल्ली लक्ष्मी योजना पर कई विधायकों ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भाजपा सरकार को धन्यवाद देकर आभार जताया। आरकेपुरम से भाजपा विधायक अनिल शर्मा ने लक्ष्मी योजना पर कहा कि महिलाओं को सम्मान देना सरकार का मूल सिद्धांत है। वहीं आप पार्टी के नेता गोपाल राय ने कहा कि अधिकारियों के दबाव में ये योजना सही नहीं बनी है। उन्होंने कहा कि इस योजना में अधिक से अधिक महिलाओं को शामिल किया जाना चाहिए जिससे जरूरतमंद महिलाओं को लाभ मिल सके। इसके बाद उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगों में भूमिका के लिए राजनीतिक नेताओं की दोष सिद्धि पर अल्पकालिक चर्चा शुरू हुई। इस मुद्दे पर अभी चर्चा जारी रहेगी। सदन की कार्यवाही को कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अभी आप विधानसभा में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विद्या वाहिनी योजना के अंतर्गत 200 छात्राओं को मुफ्त साइकिलें वितरित की। दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना में लगभग 6 लाख महिलाओं ने पंजीकरण कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की।

0: दिल्ली पुलिस ने साइबर ठगी के एक गिरोह का भंडाफोड़ कर 9 लोगों को गिरफ्तार किया। और राजधानी दिल्ली में भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: कोई टेंशन नहीं होती है।
2: टेंशन क्यों, मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीत मालिका, जिसके अंतर्गत आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए कुछ खूबसूरत से फिल्मी गीत। और आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं महालक्ष्मी के गाए इस खूबसूरत से गीत के साथ।

0: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस बार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
1: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होंठों को भिगो लूंगी। समझूंगी तुम्हारे होंठों को छोड़।

0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतमालिका, जिसके अंतर्गत आज हम आप सभी के लिए लेकर आए चंद खूबसूरत से फिल्मी गीत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर। आइए अब से कुछ ही पलों में सुनते हैं समाचार, पहले हिंदी फिर अंग्रेजी और उसके बाद उर्दू में।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। संसद ने देश के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए कराधान विधेयक पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आश्वासन दिया, यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी संसद से मंजूरी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से संसद चलने की देने की अपील की। कहा, गृहमंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर बयान देंगे। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों तथा पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पहली बार गायन। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। एफआईएच हॉकी विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। क्वार्टर फाइनल मुकाबले नहीं होंगे, पुरुष और महिला टीम पूल डी में शामिल। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद आज लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यह विधेयक पेश किया था। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेनदेन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई पर एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। संसद ने बैंककार बहिस्साक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को आज राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि यह विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा।
3: इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।
4: परमिट्स ऑथेंटिकेशन थ्रू मैनुअल, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स।
2: लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सदन के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है।
5: इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। साथ ही न्यायाधिकरणों के प्रशासन और कामकाज में सुधार करना, एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना करना और संबंधित अधिनियमों में परिणामी संशोधन

0: करना भी है एंड टू मेक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन रिलेटेड इनैक्टमेंट।
1: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही तीन तीन बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में आज चार विधेयक पेश किए गए, इनमें से अधिकरण सुधार विधेयक 2026 विपक्ष के शोर शराबे के बीच बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। वहीं राज्यसभा में दो विधेयक चर्चा के लिए लिया गया, जिनमें बैंकिंग प्रणाली को आधुनिक और आज के डिजिटल युग के अनुरूप बनाने के लिए बैंक कार बहिसाक्ष विधेयक 2026 पारित किया गया। इसके अलावा कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा के बाद इसे लोकसभा को लौटा दिया गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृहमंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
3: छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे शांति से, ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा।
1: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृहमंत्री के वक्तव्य की मांग की।
4: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे ना।
1: भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने और चर्चा में अपने विषय बदलने का आरोप लगाया है। पार्टी के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि श्री गांधी का उद्देश्य चर्चा न करना और अराजकता फैलाना है।
5: फिर से मैं चैलेंज देता हूं राहुल गांधी को, आप सदन में आइए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं और आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, यह भी बताना चाहूंगा। और भ्रम मत फैलाइए, कोई गोली नहीं चली है जंतर मंतर में और कोई गोली का ऑर्डर नहीं दिया गया है जंतर मंतर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खेयांगटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
6: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में हजारों अभ्यर्थियों ने विधानसभा की ओर मार्च किया और कई बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस के अनुसार प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की और पुलिसकर्मियों पर पथराव भी किया, जिसके बाद बल का प्रयोग किया गया। रांची सिटी एसपी पारस राणा और एसपी ग्रामीण गौरव गोस्वामी ने छात्रों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील करते हुए कहा कि पुलिस ने संयम बरता है। प्रदर्शनकारी जेएसएससी सीजी परीक्षा की स्वतंत्र सीबीआई जांच और जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए सीबीआई और ईडी जांच की मांग दोहराई है। नविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: इस वर्ष 80वीं स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में देश के युवा शक्ति के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का भी उत्सव मनाया जाएगा। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक लाल किले से करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस वर्ष के समारोह का एक प्रमुख आकर्षण वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव होगा। पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सामूहिक गान होगा। समारोह की दूसरी प्रमुख थीम युवा शक्ति विकसित भारत एट 2047 की यात्रा का नेतृत्व है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्र की सामूहिक शक्ति का प्रतिबिंब है जो नागरिकों को विकसित भारत निर्माण के प्रयास में एकजुट करता है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस वर्ष वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के कारण यह अभियान हर देशभक्त के लिए भाव बन गया है। उन्होंने नागरिकों से तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा .com पर अपनी सेल्फी अपलोड करने का भी आग्रह किया। जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान 2026 और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में डोडा जिला प्रशासन ने तिरंगा रैली का आयोजन किया। तिरंगा रैली को उपायुक्त कृष्णलाल ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से झंडी दिखाकर रवाना किया। मणिपुर में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत इम्फाल में बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में हजारों बाइक सवारों ने हिस्सा लिया। सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVI के अंतर्गत 10 लाख प्रशिक्षण के लक्ष्य को लेकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे भ्रामक दावे को खारिज कर दिया है। पत्र सूचना कार्यालय PIB के फैक्ट चेक इकाई ने स्पष्ट किया है कि PMKVI के तहत ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने पूरे सप्ताह पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
7: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
1: भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते हैं। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होगा। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि भारतीय महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में अंगदान, मिथक तोड़ना, जीवन बचाना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस परिचर्चा में राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉ अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के डॉ राजेश सिन्हा भाग लेंगे। वस्त्र मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय हैंडलूम डिजाइनर्स कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया। इसमें डिजाइनर, बुनकर, नेते निर्माता और उद्योग से जुड़े लोग शामिल हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने देश के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए कराधान विधेयक पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आश्वासन दिया, यूपीआई लेन देन पर कोई शुल्क नहीं। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी संसद से मंजूरी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से संसद चलने देने की अपील की। गृहमंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर बयान देंगे। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्र और पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पहली बार गायन। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और एफआईएच हॉकी विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Parliament passes taxation bill to strengthen country's manufacturing ecosystem, attract investment and create jobs. Finance Minister Nirmala Sitharaman assures UPI transactions to remain free. Legislation granting legal recognition to digital banking records as evidence also gets nod from Parliament. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju urges opposition to allow Lok Sabha to function for Home Minister Amit Shah's statement on student protest-related issues. Protests intensify in Jharkhand over recruitment exam irregularities after clashes between students and police during assembly march in Ranchi. 88th Independence Day celebrations to showcase Yuva Shakti and its contribution to Viksit Bharat by 2047. National song Vande Mataram to be sung from the ramparts of Red Fort for the first time. Heavy rainfall forecast for Himachal Pradesh and East Rajasthan tomorrow. And FIH Hockey World Cup 2026 begins later this week with new format as quarterfinals are scrapped. India drawn in the men's and women's Pool D. And now the news in detail. Parliament has passed the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 today, with the Rajya Sabha returning it to the Lok Sabha after discussions. The Lok Sabha has already passed the bill. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman had moved the bill. The bill seeks to amend the Payment and Settlement Systems Act 2007, the Income Tax Act 2025 and the Finance Act 2026. The legislation will replace the Income Tax Amendment Ordinance 2026, which was promulgated on the 5th of June this year. Replying to the discussion, Union Finance Minister said that the objective of the bill is to strengthen India's manufacturing ecosystem, attract further investment, generate employment and promote manufacturing activities. She said the second major reform relates to providing tax exemptions to foreign companies procuring data services from specified data centers in India and enhancing ease of doing business. The minister clarified that the bill does not impose any tax or transaction charge on UPI users.
9: It does not impose any tax or transaction charge on UPI users. It enables the government to specify through notification the electronic payment modes that will continue to receive statutory protection against charges. The UPI and Services Steering Committee, headed by the National Payments Corporation of India, will consider and decide whether any MDR should be introduced and if so, its scope and structure. Therefore, no MDR framework has yet been finalized.
8: The Parliament also passed the Bankers Books Evidence Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it today. The Lok Sabha has already passed the bill. Union Finance Minister had moved the bill, which has a provision that an electronic or digital record of the banker's book will be admissible, valid and legally enforceable as evidence. Replying to discussion on the bill, Finance Minister Sitharaman said, "This bill is a very reformative step which will help the country move forward at a faster pace."
9: The bill, among various other things that it wants to do, provides for a technology-neutral legal framework for bankers' books. It recognizes electronic and digital banking records. It standardizes the certification process, facilitates the admissibility of electronic banking records. It permits authentication through manual, digital, and electronic signatures. It also, therefore, strengthens the statutory protection.
8: After completing its business, the Rajya Sabha was adjourned for the day. The Lok Sabha today passed the

से कुछ ही देर के बाद यानी 9:20 पर एक फनकार प्रोग्राम पेश किया जाएगा। 9:45 पर खबरें नश होंगी और 9:55 पर मशवरे सेहत के सिलसिले के तहत कुछ बातें होंगी आपकी सेहत के हवाले से। शब के 10:00 मार्केट मंत्रा का रिपीट ब्रॉडकास्ट आप सुनेंगे और 10:30 फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम पेश किया जाएगा तामीले इरशाद। तामीले इरशाद प्रोग्राम जारी रहेगा 11:30 तक। दौरान प्रोग्राम 11:00 आप सुनेंगे खबरें बरे सकीर से का उर्दू न्यूज बुलेटिन। सुर्खियों में ये प्रोग्राम पेश किया जाएगा 11:30 पर और शब के 11:45 पर कव्वालियां पेश करेंगे असलम साबरी कव्वाल और हमनवा। शब के 12:00 आलमी खबरें नशे की जाएंगी और 12:10 पर क्लासिक मौसीकी में आप सुनेंगे घासीराम निर्मल का जल तरंग पर बजाया राग भोपाली तोड़ी। जबकि 12:30 आखिरी शब प्रोग्राम में हम आपकी नजर करते हैं चंद सदाबहार पुराने फिल्मी नगमे। 12:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और शब 1:00 उर्दू सर्विस की तीसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पसीर हो जाएंगी। सामने ये था एक मुख्तसर तारुफ इस मजलिस में नशर वाले प्रोग्रामों के हवाले से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव से 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर पेश है प्रोग्राम एक फनकार। इस प्रोग्राम में आज आप महसूस होंगे चंदन दास की गाई चंद गैर फिल्मी गजलों से। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और एक खूबसूरत

0: morning and welcome to Market Mantra. Today being Monday, we'll be taking your calls on your market-related queries. But please do remember that we do not address stock or company-specific queries. You can call us on 2331-4444 or 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. I am Niharika Bhuvania with you this evening with my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak.
1: नमस्कार मार्केट मंत्र के प्रसंग में आपका स्वागत है. आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम हाजिर हैं, लेकिन आज सोमवार है और आज के दिन अपने कार्यक्रम में हम आपको ही किया करते हैं आमंत्रित हमसे सवाल पूछने के लिए. अर्थनीति, कारोबार या शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल यदि आप पूछना चाहते हैं तो डायल कीजिए 2331-4444-2331-0481 या फिर 2371-7106. दिल्ली से बाहर के श्रोताओं को या जो मोबाइल फोन से फोन करना चाहते हैं उन्हें दिल्ली का एसटीडी कोड 011 में डायल करना होगा. बस ये ख्याल रखिएगा कि हम किसी खास कंपनी या शेयर के बारे में जानकारी आपको नहीं दे सकते हैं. हमसे खबरों के चर्चा के लिए और आपके सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार दीपशिखा सिकरवार. दीपशिखा जी नमस्कार.
2: नमस्कार मनोज जी.
1: ये शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से जिसे लेकर मौजूद है निहारिका.
0: Let's take a look at the headlines first for this evening. Benchmark domestic indices end on a flat note. Sensex adds 43 points. Nifty settles at 24,584. Parliament passes Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026. Finance Minister Nirmala Sitharaman assures that small merchants and consumers will not have to pay MDR charges on UPI. And global crude oil prices rise.
1: बिना किसी खास उतार चढ़ाव के बंद हुए आज घरेलू शेयर बाजार में प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 45 अंक उछला. निफ्टी 24,584 दर्ज हुआ. संसद ने कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 को पारित किया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किया आश्वस्त. कहा छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई लेन देन पर एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा. और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दाम बढ़े.
0: And before we move forward, a small note for our listeners. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. And we further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब घरेलू शेयर बाजार से खबरों का सिलसिला. घरेलू शेयर बाजार में

0: 86.6% से अधिक लाभ के साथ बंद हुआ। वहीं दूसरी ओर स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में लगभग 0.3% की गिरावट भी हुई।
1: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडेक्सेस एंडेड ऑन अ फ्लैट नोट टुडे। द सेंसेक्स रोज 43 पॉइंट्स टू क्लोज एट 78,542। द निफ्टी एडेड 13 पॉइंट्स टू सेटल एट 24,584। In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index gained over 0.6%, while the small-cap 100 index dipped nearly 0.3%. Earlier, the benchmark indices opened slightly up and briefly slipped into negative territory. However, the Sensex and Nifty recovered their initial losses and traded in positive zone for most of the range-bound session. Despite a slight pullback in the final hour of trading, both indices ended marginally higher following the closing auction session.
0: नजर डालें सेंसेक्स पैक के प्रदर्शन पर, तो 30 में से 19 कंपनियों को आज फायदा हुआ है। सबसे अधिक फायदा टाइटन कंपनी के शेयरों में देखने को मिला, जिसके भाव 3.1% बढ़कर बंद हुए। बजाज फाइनेंस को 1.9% का और बजाज फेंसर के शेयर 1.1% से अधिक लाभ के साथ बंद हुए। उधर घाटा उठाने वाली कंपनियों में प्रमुख रही भारतीय स्टेट बैंक, जिसके शेयरों में 2.2% की कमी देखने को मिली। इटरनल के शेयर 1.6% नुकसान में रहे। एनटीपीसी को 1.5% से अधिक का घाटा उठाना पड़ा।
1: इन द सेक्टोरल इंडिसेस ऑन द बीएससी 14 आउट ऑफ 28 सेक्टर्स एंडेड इन द पॉजिटिव जोन। अमंग द टॉप गेनर्स रियल्टी एडवांस्ड 1.6%, consumer durables rose 1.2% and capital goods gained almost 0.5%. In contrast, PSU banks dipped 1.3%, housing finance shed 0.6% and mid-small private banks quality tilt lost over 0.5%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,226 companies declined, 2,225 एडवांस्ड एंड 194 रिमेन्ड अनचेंज्ड।
0: नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 8 पैसे कमजोर हुआ, 95.29 रूपये के स्तर पर बंद हुआ। बाजार में आज की गतिविधि पर यदि आपकी हम प्रतिक्रिया समझना चाहें तो बताएं कि क्या सब बाजार में रहा।
2: आज देखिए बाजार जो है थोड़ा फ्लैट रह रहा है। अगर आप देखें अर्निंग सीजन जो है काफी अच्छा चल रहा है, एक्सपेक्टेशन से बेहतर रहा, लेकिन ऑयल और जियोपॉलिटिकल जो अनिश्चितता बनी हुई है उस वजह से थोड़ा सा वो वे कर रहा है बाजार के ऊपर, तो ये इसीलिए थोड़ा फ्लैट दिख रहा है।
1: And with that, we also have our first caller this evening. Dr. Prafulit Bish joins us from Delhi. Good evening, Dr. Prafulit. Please ask your question.
3: Hello, good evening, everyone. I'm a regular listener of Market Mantra, and it's immense pleasure to get the insightful knowledge. My question is regarding, I'm a new investor in terms of SIP. So I recently started 2,500 rupees 4 SIPs in sectoral this thing. The one is Nifty Index Funds, small index and mid cap and large cap. So is it the right strategy? Because I was reading about it, someone said that this is not a right strategy to go, or maybe 10,000 in one SIP would have been a better choice. So what would you suggest me? What should I read so that, I'm looking at a long time duration, for example, 30 years or 35 years delay, I'm trying to invest. Yeah, thank you, ma'am.
2: Thank you, Dr. Bish, and a pleasure to have you on the show, and it's nice to know that you are a regular listener. See, we always advise investors to diversify, to have a very balanced portfolio. Like you've said, you have invested in 4 SIPs and you have tried to balance it out. But you also have to see there is a cost of investment involved. So if you're putting in small amounts in 4 SIPs, you are also incurring costs at 4 different places. So that also adds to your cost of acquisition. So you have to see how you can sort of balance it and whether it is more cost effective to do it at like have to invest in 2 products or

0: invest a consolidated sum in for you know, in one product. But that is something you'll have to figure it out. It is advisable to have a balanced portfolio, but you also have to see the costs involved.
1: वहीं से ही हमारे साथ फोन लाइन पर हैं अमित. अमित जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए.
2: हाँ नमस्कार सभी को. शिखा मैडम से प्रश्न ये है मैम कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आईटी कंपनी अभी भी अंडर प्रेशर में है, बट दिग्गज कंपनी है, नाम तो नहीं ले सकते प्रोग्राम में, ये आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी है मैम, और वो पिछले दिसंबर 2025 से लेकर के जून तक वो 46% माइनस में थी, यानी कि डाउन चल रही थी. ठीक है मैम. हेलो
0: जी. जी अमित जी, पूछिए अपना सवाल.
2: और जून के बाद उसने अपने लोअर लेवल से 20% की रिकवरी हुई है, तो क्या हमारी आईटी कंपनी पूरी तरह एआई के जो चैलेंज से उभरने के लिए तैयार हो चुकी है, जो क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह जो भी समस्या आ रही थी, तो क्या उसके जो है समस्या खत्म हो चुकी है या खतरे के बादल मंडरा रहे हैं अभी भी? धन्यवाद.
0: अमित जी देखिए, टेक क्षेत्र जो है अभी उस पर ये अनिश्चितता जो एआई के वजह से हो गई थी, ये अभी ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत क्लैरिटी आई है कि आगे कितना असर हो सकता है हमारी जो कंपनियां हैं उनके ऊपर. लेकिन हाँ, थोड़ा सा ये माहौल अब बन रहा है कि ये हो सकता है एक बहुत बड़ा बबल हो. हमारी जो कंपनियां हैं टेक क्षेत्र की, वो भी तैयारी कर रही हैं कि वो किस तरह से इस नई चुनौती को हैंडल कर सकती हैं. तो ऐसा नहीं कहेंगे कि खतरे के बादल पूरी तौर से छट गए, क्योंकि अभी एआई का पूरा असर आया नहीं है. लेकिन हो सकता है कि एआई आने से हमारी जो आईटी कंपनियां हैं, अगर वो अपने आप को तैयार कर लेती हैं, तो उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज भी आए नई व्यवसाय के तहत.
1: यहां पर दीपशिखा जी थोड़ा समझना चाहेंगे श्रोताओं के नजरिए से कि अक्सर जब कोई एक नई तकनीक आती है और ऐसी तकनीक जो समझ में ना आने लायक हो, तो थोड़ा सा भय होता है, आशंका होती है. जैसे कंप्यूटर का ही जब आगमन हुआ था तो चिंताएं थी कि कंप्यूटर नौकरी खा जाएगा. इसी तरह एआई बहुत सारे कामों को निश्चित रूप से आसान बना दे रहा है, तो यह रोजगार के अवसर कहां दे रहा, कैसे इसका जो नया स्वरूप निकलेगा उसमें ये सहायक कैसे साबित होगा, आशंकाओं के बादल से निकलने के सूत्र के रूप में समझना चाहेंगे इसे.
0: मनोज जी देखिए, एआई जो है एक नया क्षेत्र आ रहा है, लेकिन अगर आप देखें एआई जो है जिस तेजी से वहां पर डेवलपमेंट हो रहा है, एआई खुद ही रेलेवेंट नहीं रहेगा, इतना तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है. दूसरा चीज है कि एक कॉस्ट है एआई की. अगर आप ह्यूमंस को रिप्लेस करना चाहते हैं एआई से, तो वो कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा है कंपनीज के लिए आज की तारीख में. हो सकता है वो कॉस्ट आगे चल के कम हो जाए, लेकिन ये जो मैनेज करना है एआई का इंटरफेस जो है कंपनीज के साथ या ह्यूमंस के साथ या जो भी अडॉप्शन है, उसके अडॉप्शन में भी आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी. तो अभी जो स्थिति बन रही है वो ये है कि ये एआई जो है हो सकता है नई अपॉर्चुनिटीज और नए रोजगार के अवसर पैदा करे. हम देख रहे हैं किस तरह टेक्नोलॉजी में बदलाव हुआ और उस तरह से व्यवसायों का जो चरित्र है वो किस तरह से बदल रहा
1: जी,
0: है
1: जी, जी.
0: तो उम्मीद की जाती है कि नए अवसर भी पैदा होंगे
1: जी.
3: And with that, let's take a look at the next story for this evening. Parliament has passed the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 today, with Rajya Sabha returning it to Lok Sabha after discussion. The Lok Sabha has already passed the bill. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman had moved the bill. The bill will replace the Income Tax Amendment Ordinance 2026, which was promulgated on 5th June this year. The ordinance was promulgated with the objective of mitigating the impact of external economic shocks. The bill further exempts foreign institutional investors and the Bank for International Settlements from paying income tax on interest earned on investments in government securities. The bill further amends the Income Tax Act to exempt income earned by certain foreign companies from the sale of rough diamonds in a notified special zone. Replying to the discussion, Finance Minister Nirmala Sitharaman said, "No merchant discount rate framework has been finalized." She assured that small merchants and consumers will not have to pay MDR charges.

0: charges on UPI.
1: It does not impose any tax or transaction charge on UPI users. Let this be clear. It enables the government to specify through notification the electronic payment modes that will continue to receive statutory protection against charges.
0: So Deepshikha, a small comment from you on this. Given that UPI today has assumed massive proportions in the country and even the smallest transaction requires UPI now, not requires maybe, but is the default go-to mechanism. And with that, the volume of transactions has also improved quite a bit. It has also increased multifold. So your comment on this bill, on this law, and how is it going to impact the economy overall?
2: Niharika, if you see, if you heard the finance minister, she's clearly saying that this is an enabling amendment, mm-hmm. which will enable the government to sort of pave the way for, imposition of MDR. Now, the thing is, MDR, why is it required? We've seen how digital payment industry, the entire sector has grown. It has grown in volumes. So how do the companies which support this growth or support these transactions also sort of survive? They also need to make some money on it.
0: Of course.
2: They also need to invest in technology to further improve, interface with customers. So which is what a levy of MDR will allow. And the government has assured that, smaller transactions, or smaller merchants, they would not face this charge. So this whole expansion which has sort of happened, you now have vegetable vendors or anyone even mm-hmm. taking small payments over, UPI or phones, that would still be facilitated. So government has assured that that would be taken care of. So I think that fear should not be there that, MDR will, sort of raise the cost of digital transactions. Not all transactions will attract it. Smaller ones will be sort of kept out and smaller traders would be spared.
0: Very well.
3: आगे बढ़ाएं कार्यक्रम का सिलसिला और आमंत्रित करें अपने नए श्रोता नितिन जी को. नितिन जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए.
4: नमस्कार सर.
0: नमस्कार नितिन जी.
4: जी, दीपशिखा मैडम को भी नमस्कार.
0: जी नमस्ते.
4: मैम, मेरा एक मार्केट के बारे में एक छोटा सा सवाल है. जैसे मतलब कोई नया इन्वेस्टर मार्केट में एंटर करता है तो जो डीमैट अकाउंट जो भी प्रोसीजर है वो कर देता है, तो क्या इसके लिए मतलब जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भी करना पड़ता है इससे पहले, ऐसा कोई नियम है? जैसे मार्केट में एंटर करता है आदमी तो फाइनेंशियली एक्टिविटीज बढ़ती है, जैसे कैपिटल गेन्स हो गया, टीडीएस वगैरह वगैरह, तो क्या ये जरूरी होता है? जो टैक्सेबल जो आदमी उसका इनकम टैक्सेबल नहीं है, ऐसे आदमी अगर मार्केट में एंटर करता है और अपना डिमांड अकाउंट खोल के चालू करता है तो क्या? थैंक यू मैडम.
2: नितिन जी देखिए, आप जब डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो तब आपको कोई ऐसा इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करना है, लेकिन अगर आपकी आय नहीं भी है और आप बाजार में ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं और उसमें आपका ऐसा कोई गेन भी नहीं आया, आपका कर नहीं बन रहा है, देनदारी नहीं बन रही, तो भी आप एक नील रिटर्न फाइल कर सकते हैं, ऐसी सुविधा है. लेकिन अगर आपके गेन्स हो रहे हैं, कैपिटल गेन्स है, तो उसके लिए तो आपको रिटर्न फाइल करना ही होगा.
3: यानी जिस समय आप काम शुरू करने जा रहे हैं उस समय कोई
2: औपचारिकता नहीं है. जी.
0: विद दैट लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टोरी फॉर दिस इवनिंग. India's urban unemployment rate for persons aged 15 years and above rose marginally to 6.7% during the April to June quarter of current fiscal year, from 6.6% in the previous quarter. According to Ministry of Statistics and Program Implementation, Periodic Labour Force Survey Quarterly Bulletin, unemployment rate in rural areas increased to 4.8%. from 4.3% during the fourth quarter of the last fiscal year. Meanwhile, the female urban decreased to 8.7% in the current quarter from 9.1% in the last quarter. The data showed that sectoral distribution of employment continued to exhibit similar structural pattern, with the rural workforce

0: predominantly engaged in the primary sector and the urban workforce concentrated in the tertiary sector.
1: खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने अग्रिम प्राधिकरण और निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजनाओं के अंतर्गत निर्यात दायित्व मुक्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते समय शुल्क भुगतान चालान जमा कराने की आवश्यकता को यानी इसकी जो भौतिक प्रति होती है उसे जमा कराने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि 1 अगस्त या उसके बाद किए गए स्वैच्छिक शुल्क भुगतान के लिए निर्यातकों को प्राधिकरण बंद करने के लिए अपने आवेदन के साथ भौतिक रूप से चालान की प्रति जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस कदम से प्रक्रिया में तेजी आने, अनावश्यक पत्राचार कम होने और DGFT के क्षेत्रीय प्राधिकरणों में निर्णय लेने में अधिक एकरूपता सुनिश्चित होने की उम्मीद है।
0: The gross merchandise value of the government e-marketplace has increased from 422 crore rupees to over 1,55,000 crore rupees in the last decade. This was stated by Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal. In a social media post, Mr. Goyal said that over 12 lakh micro and small enterprises, including more than 2 lakh led by women, and over 42,000 startups are registered on the portal. He further said that the platform has made government markets more accessible to MSCs, startups, women entrepreneurs and others while championing the vision of vocal for local and make in India.
1: यहाँ पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। इसे एक उत्साहजनक खबर माना जाए कि एक दशक में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है।
2: बिल्कुल मनोज जी, देखिए जेम जो है एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके तहत सरकार खरीदी करती है। तो एक तो कागज और सारा जो पहले डिलेज होता था या पेमेंट्स में डिले होता था, अब आप ऑनलाइन जाइए, एक मार्केट प्लेस क्रिएटेड है, जिस डिपार्टमेंट को खरीदी करनी है वो वहां से खरीदी करता है। तो ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी दोनों की तरफ ये एक कदम था और इसका अडॉप्शन जो है वो काफी बढ़ गया है। तो और ट्रांजैक्शन वैल्यू भी बढ़ गई है। ये अगर आप देखें जो नंबर मंत्री जी ने बताया है, तो जेम जो है सरकार में काफी उसको अडॉप्ट किया जा रहा है।
1: जी।
0: And just a small reminder for our listeners at this moment, in case you have any market related queries, you can reach out to us on 2331-4444 2331-0481 or 2371-7106, and of course please add the code 011 before any of the numbers that you're dialing. You must also remember that we do not address stock or company specific queries.
1: श्रोताओं, आज सोमवार है और आज के दिन हमारा फोन इन कार्यक्रम होता है, यानी आप हमसे पूछ सकते हैं अर्थनीति, कारोबार या शेयर बाजार से जुड़ा सवाल। आप हमें फोन कीजिए, हमारे नंबर 2331-4444-2331-0481 या फिर 2371-7106। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में से जापान में लिवाली तेज रही है। जापान का निक्केई 225 सूचकांक कारोबार के अंत में 2.1% लाभ के साथ बंद हुआ। दक्षिण कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में 0.6% से अधिक की बढ़ोतरी देखने को मिली।
0: एंड विद दैट वी हैव आवर नेक्स्ट कॉलर हु जॉइन्स अस फ्रॉम दिल्ली एज वेल। प्रेमजीत इज ऑन कॉल विद अस। गुड इवनिंग प्रेमजीत, प्लीज गो अहेड विद योर क्वेश्चन।
3: जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू मैम। माय क्वेश्चन टू द रिस्पेक्टेड दीक्षिका मैम, इन द रिगार्ड ऑफ मैम, व्हेन आई विजिटेड ऑल दिस पोर्ट क्लोज टू एलपीजी एंड क्रूड ऑयल, आई हैव सीन मैम इन टेक्सास build so many LPG terminal, new terminal. So, could we expect that the trade will be impact with our country and our region as well? Thank you, ma'am.
2: मेरा ख्याल है आप क्रूड ऑयल के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो क्रूड ऑयल में देखिए, काफी समय तक अभी अनिश्चितता जो है और उतार चढ़ाव देखने को मिला है, क्योंकि जो मेन सप्लाई क्षेत्र रहा है क्रूड ऑयल का मिडल ईस्ट, वहां पर जो है बहुत अनिश्चितता है कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, और वो अनिश्चितता हट नहीं रही है। तो वो अनिश्चितता जब तक रहेगी तब तक क्रूड ऑयल पर हम प्रेशर देखेंगे कुछ समय तक।
0: So since we spoke of crude oil, it's time to take a look at the next story for this evening. Global crude oil prices edged higher today as Iranian Foreign Ministry spokesperson Ismail Bakhri said that the Strait of Hormuz will not reopen until the US continues its naval blockade against Iran. Brent crude was trading 1.4% up at $84.72 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 1.1% higher at $79.02 per barrel when reports last came in.
1: श्रोताओं आइए आपको लिए चले सर्राफा बाजार. भारतीय सर्राफा बाजार में समाचार तैयार किए जाने तक सोने का मूल्य 0.7% की बढ़त के साथ 150,641 रूपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा था. वहीं चांदी मामूली कमजोरी के साथ 2,31,373 रूपये प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी. और बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से हम आपको दीपशिखा जी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे.
2: धन्यवाद मनोज जी.
0: थैंक यू निहारिका. मेनी थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस टुडे दीपशिखा ऑन मार्केट मंत्रा. एंड बिफोर वी क्लोज अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस फॉर आवर लिसनर्स. Benchmark domestic indices end on a flat note. Sensex adds 43 points. Nifty settles at 24,584. Parliament passes Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026. Finance Minister Nirmala Sitharaman assures that small merchants and consumers will not have to pay MDR charges on UPI. And global crude oil prices rise. And with that, it's a wrap on today's edition of Market Mantra. Take care and see you in the next one.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

0: You are listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.
1: अभी आप मार्केट मंत्रा प्रोग्राम का रिपीट ब्रॉडकास्ट सुन रहे थे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर हम आपसे मुखातिब हैं।

नजदीक है और ऐसे में एक रूहानी माहौल पूरे मुल्क में अकीदत वाला माहौल रहता है, रूहानी अच्छाई होती है। कांवड़िए कांवड़ लेकर जाते हैं और शिव भक्त बम्बोले के जय जयकार करते हैं। तो आइए आज के प्रोग्राम का आगाज एक भजन के साथ किया जाए।

काला मंदिर फिल्म का ये भजन आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में। नगमा गाए थे अमित खन्ना, मौसीकी अजीत सिंह ने तरतीब दी थी। और जहां तक फरमाइश की बात है तो बहुत सारे ईमेल्स मौजूद हैं हमारे सामने स्क्रीन पर। एक बारिश का जैसे मौसम बाहर है वैसे ही कुछ मौसम यहां भी है। इससे पहले कि हम ईमेल शामिल करें, ये बताना चाहेंगे कि हम 10:30 पर जब आप ईमेल भेजते हैं तो वहीं से हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और इस की जब शुरुआत होती तो जाहिर सी बात है, कहते हैं ना एक कहावत है कि जो मारे सो मीर, तो जिसकी उंगलियां पहले चल जाती हैं ईमेल भेजने के लिए तो जाहिर सी बात है वो लोग पहले शामिल हो जाते हैं। तो कुछ लोगों को शायद इस चीज से भी थोड़ी सी दिक्कत है कि कुछ खास नाम ही 10:30 पर शामिल किए जाते हैं। तो अब इसमें हम तो कुछ कर नहीं सकते जनाब, चूंकि जो नाम हमारे सामने मौजूद है हम उन्हीं को शामिल करते हैं। बहर के पहला ईमेल शामिल करते हैं रघुवीर नगर दिल्ली से, दिलावर खान, हसीना बानो, अलीसा नायाब का और आप हैं, हीरामन शिंदे, शीला देवी शिंदे, किशोर नगर अमरावती महाराष्ट्र से। और ये फरमाइश आई है पुरानी बागपत से इलियास मुस्कान कुरैशी, रानी कुरैशी और बाबा जैद कुरैशी की। और आप हैं अधिका डबाली से बसंत सिंह चंद, राजकुमार, कुलदीप गांधी और उनके कुछ और साथी। और अगले ईमेल रिपीट हो गया बहुत जल्दी, इसको साइड लाइन करना पड़ेगा। मोला करौनी, घरौंदा करनाल से विजेंद्र कुमार जयजान, कांतारानी और गुंजन और उनके कुछ और साथी। और ये फरमाइश आई है कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा की। और इसी भजन से महसूस हो रहे थे सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा और प्रतीक मल्होत्रा। और ये फरमाइश आई भोपाल एमपी से चंपालाल दुबे, अनंत दुबे और दर्शिका दर्शित की। और ये फरमाइशी ईमेल मौसूल हुआ है कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज भी साथ में शामिल है। और अगला ईमेल है रजाक मोहम्मद शमीम बेगम, इमरान खान का, हनुमानगढ़ राजस्थान से। और चंडीगढ़ सिटी से हैं बिमला अनेजा और साथ में सतीश अनेजा। और अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबिया और अनस की फरमाइश भी हो गई है मुकम्मल। अब आपको सुनवाते हैं प्रोग्राम का अगला नगमा, महल फिल्म का ये नगमा है लता मंगेशकर की आवाज में, मौसीकी खेमचंद्र प्रकाश की है। और सुनने के मुंतजिर हमारे बहुत सारे सामने, थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं क्योंकि बहुत तेजी के साथ ईमेल जो है वो हम तक पहुंच रहे हैं जनाब। तो ये पहला ईमेल इस नगमे के लिए कस्बा बराड़ा अम्बाला से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल भी साथ में शामिल हैं। और फैसल शेख, कैसर शेख, गरीब शेख, एटा रोड गंज डुंडवारा से हैं मास्टर विठल सुरोशे, सुषमा सुरोशे और साथ में हैं मायरा सुरोशे, काटा रोड वाशिम से आप शामिल हुए हैं। पुराना तालाब डुमरा से वलीउल अंसारी, असमनाज अंसारी, साथ में मोहम्मद सुल्तान अंसारी। और ये फरमाइश आई है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज सरफराज अब्बासी की। और गणेशपुर गंज डुंडवारा एटा से हैं शेख शमा परवीन, एम फारूक शेख, बेबी मुस्कान भी हैं साथ शामिल, अनिल जैन, सयम जैन, मास्टर जीपीएम जैन हैं। और मलिया सरदारा मेरठ से आपकी फरमाइश है, बरकाताना से अफजालता, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम और उनके कुछ और साथी। और ये फरमाइश मिली है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से स्वीटी छाबड़ा, रविन्द्र छाबड़ा और इंद्रजीत छाबड़ा की जानिब से। और जयराज प्लॉट राजकोट से इस नगमे को सुनना चाहते हैं मधुसूदन भट्ट, आरती भट्ट और जैस्मीन भट्ट। और ये फरमाइश ईमेल मौसूल हुआ है एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर से डॉक्टर तस्नीम कौसर, डॉक्टर इशिता सानी, डॉक्टर प्रियंका मोदी का। और आप हैं वो दोस्त जो शामिल हो चुके हैं तो आपको साइडलाइन कर देते हैं। महल फिल्म के इसी नगमे को पसंद किया सिमंदर पार्क विरमगाम से अजीत भावसार, प्रमला भावसार और भावेश भावसार ने। और अगला ईमेल फिर रिपीट है, इसको भी करते हैं साइडलाइन। किशन सबकाल, आशा सबकाल, विशाल सबकाल, शास्त्री नगर बीड शहर से आपने फरमाइश हमें इरसाल की है। और गांव दुलापुर मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश भी साथ में शामिल हैं। मनीष पवार, डेनी पवार, मास्टर मनीष की फरमाइश

गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से, और आप हैं रेलवे रोड गंज टंडवा से मोहम्मद कलीम जख्मी, नजमा बेगम नाज, बेबी फातिमा गाजी, रमेश कटंकर, वैशाली कटंकर और साथ में बेबी कार्तिकी गांधी बाग अकोला से इसी नखमे को सुनना चाहते हैं। अगले दीवान एमपी से रामलाल चंद्रवंशी, कृष्णा चंद्रवंशी और काजल और उनके अहले खाना। छत्तीसगढ़ डोंगरगांव से फरमाइश की है राष्ट्रपाल गजभिया, राधिका गजभिया तन्मय, अनिष्का तन्मय माफ कीजिएगा, और ये फरमाइश ईमेल है सहसपुर लोहारा दानिया खुर्द कबीरधाम छत्तीसगढ़ से गुनीराम राजपूत, संतोषी हेम प्रभाका, और इसी नगमे को सुनने के मुंतजर हैं हिना साबरी, आयजल इमाम, मोहम्मद हसन इमाम, बिशनपुर गेडी झारखंड से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, और साथ में है गणेश राम मिस्त्री देवी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, और ये फरमाइशी ईमेल सरला ही सूखना नेपाल से मिला है। हमारे सामने अरुण कुमार शर्मा, रेणु देवी शर्मा, राहुल कुमार शर्मा और अहले खाना, मोहम्मद रफीक पवा, बेनजीर कौसर, मोहम्मद हसैन पवा, ताज मंजिल लकड़ बाजार खंडवा से आपकी फरमाइश है। सलीम अख्तर साथ में रेशमा बेगम अलीगढ़ से सुनने के मुतमन्नी अगले नगमे को। राहुल पाल, ज्योति अंजना पाल है, गांव गोपी खरिया, तहसील भांडेर, जिला दतिया एमपी से, काफी लंबा चौड़ा पता है, और नूर आयशा अहमद बागबान, इकबाल अहमद बागबान, अखलाक अहमद है, बागबान मंजिल छोटी बलिया करजत से, और ये फरमाइशी मेल मौसूल हुआ है फारूक अली, और साथ में कौन है, फारूक अली खान का पूरा नाम है, फैजी फराज भी है, कस्बा गुन्नौर से दरअसल यूपी से, एस एम जावे शगुफ्ता न्यूम टावर चौगुमला झारखंड से सुनना चाहते इस नगमे को, और इम्तियाज इमाम आतिश, ताहिरा परवीन आतिश, डॉक्टर मोहम्मद आसिफ रजा, बिशनपुर गिरडी झारखंड से, और ये फरमाइश ईमेल अनवर साबरी, शन्नो साबरी, मुदस्सिर गए, दाऊद सराय, सहारनपुर से। तो आइए सुनते हैं प्रोग्राम का अगला नगमा, महल फिल्म का नगमा है लता मंगेशकर।

आपको सुनवाते हैं बेटी फिल्म का नगमा मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया हुआ। सोनी कोमी की है मौसिकी और इन दोनों नगमों की मिली जुली फरमाइश अब शामिल करने जा रहे हैं जाफरगंज जहानाबाद बिहार से इंतजार अंजुम, साथ में आलम आरा और ही फरमाइशी ईमेल सुरेश चौरसिया सरोज चौरसिया का है। फर्रुखाबाद मोहल्ला साहबगंज चौराहा से आपकी फरमाइश हमें इरसाल हुई है और आज बस दो ही नाम है इसमें, इनके पोते आज गायब हैं। चलिए तो दोनों नाम शामिल हो गए। प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा से आनंद जोशी, तनुजा जोशी, साथ में फाल्गुनी जोशी। और अगला ईमेल रिपीट है। कुछ हमारे बहुत पुराने सामीन ऐसे हैं जो अभी भी बहुत ज्यादा ईमेल करते हैं। 5-7 तो एक आम बात हो गई है और उनको बार बार हमें डिलीट करना पड़ता है, जाहिर सी बात है उसमें वक्त जाया होता है, फिर कुछ जो ऑर्डर है वो भी चेंज हो जाता है, आपके ईमेल्स का तरतीब जो है वो बिगड़ जाती है। बेगम सोनम शेख, मारिया शेख, मोहम्मद अरीब है बांद्रा आर्मर कोर्ट मुंबई से, तो इस बात का थोड़ा सा दोस्तों ख्याल रखिये। बहर के आगे बढ़ते हैं, एक और ईमेल शामिल कर लेते हैं। जाकिर मुलानी, सुभान मुलानी और समीर हैं फूल चिंचोली पंधरपुर से और ये फरमाइश उन दोस्तों की है, इसलिए डिलीट करने पड़ रहे हैं वो ईमेल जो एक से जायद हैं। विनायक बेंडे, मंगला शुभम की फरमाइश आकोट से मिली है और आप हैं वो दोस्त जो शामिल हो चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जामानी गाजीपुर से सुरेश जायसवाल और मीरा जायसवाल, दीपक भी साथ में शामिल हैं और इसी नगमे को सुनना चाहते हैं। पीपा पारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तरा दिवाकर, मानुप्रिया दिवाकर, योगिता दिवाकर और अहले खाना और मल्लापुर दाखा से राजेश जैन, बिट्टू जैन, साथ में संजीव जैन है। मुझे लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये शामिल हो गया हो, क्योंकि बिल्कुल शुरुआत में आपके ईमेल हमें मिलते हैं पिंजौर से चंद्रमोहन और इंद्र मोहन और ये फरमाइश ईमेल उन दोस्तों की जिनके नाम है जोलका से महेंद्र सरकटे, विजय सरकटे, मिलिंद सरकटे और करनाल से बलविंदर सिंह सोडी साहब। और अगले मेल है आसिगांव बाजार से करण रंजीत बुनकर का, इसी नाम को सुनना चाहते हैं। शेरवानी स्कूल गंज टंडवारा से आफताब अहमद अंसारी, रियाज अहमद अंसारी और अनवर मास्टर और गजानंद येले नवदीप की फरमाइश है सुशील येले के साथ। दरियापुर बाबली से सिद्धार्थनगर से है, नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा पाटिल और प्रथमेश पाटिल और उनके कुछ और साथी, मोटाला महाराष्ट्र से विजय सलोलकर, रतनमाला और साथ में आरती, इसी नगमे को सुनना चाहते हैं। सहारनपुर चंद्रनगर से आशा नारंग, सुरेश नारंग और सोनाली और उनके कुछ और साथी। और अगला ईमेल ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ कुंदानी और अर्चना का है और आप हैं शिव कुमार चौहान, संक्रांति और उत्कर्ष, बाबा कुटीर रायगढ़ से। तो आइए सुनते हैं बेटी फिल्म का ये तो गाना।

0: मौसमियात महकमे आईएमडी ने कल हिमाचल प्रदेश और मशरकी राजस्थान में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक कल अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, छत्तीसगढ़, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कहीं कहीं तेज बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोकण, गोवा, वस्ती महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड, मगरबी मध्य प्रदेश और मगरबी राजस्थान में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। मौसमियात की एजेंसी ने इस हफ्ते के दौरान मगरबी हिमालयी खित्ते में कहीं कहीं शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर मुमलकत सुरेश गोपी ने मुतला किया है कि हुकूमत ने पेट्रोलियम में 20% से ज्यादा एथेनॉल की आमेजिश से मुतालिक कोई फैसला नहीं किया है। वजीर मौसूफ ने राज्यसभा में एक सवाल के तहरीरी जवाब में यह बात कही। जनाब गोपी ने कहा कि मुस्तकबिल में एथेनॉल की आमेजिश बढ़ाने के सिलसिले में कोई भी फैसला सिर्फ तफसीली साइंसी और तकनीकी मुताले और सभी मुतालिका फरीकों के साथ सलाह मशवरे के बाद ही किया जाएगा। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि अबनाए हुरमस तब तक नहीं खुलेगी जब तक वाशिंगटन तेहरान के खिलाफ अपनी बहरी नाकाबंदी जारी रखेगा। तेहरान में कल हफ्तावारी प्रेस ब्रीफिंग से खिताब करते हुए बकाई ने कहा कि ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइली फौज की जारहियत की वजह से तवानाई की सप्लाई की अहम बहरी गुजरगाह अबनाए हुरमस को बंद किया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अबनाए हुरमस का दोबारा खोलना अमरीका और इसराइली हुक्काम की जानिब से ईरान पर आयद की गई शरायत पर मुनहसर है। बकाई ने इस बात का भी जिक्र किया कि ईरान और ओमान के दरमियान जहाजरानी गुजरगाह से मुतालिक मामला दोतरफा है जिनका ताल्लुक ईरान और ओमान से है। एफआईएच मर्दों और खवातीन के हॉकी आलमी कप 2026 के मुकाबलों में ढांचा जाति तब्दीली की गई है। रिवायती क्वार्टर फाइनल मरहला खत्म कर दिया गया है और दो क्रॉस ओवर पोल्स के जरिए टीमें सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। बेल्जियम और नीदरलैंड मुश्तरका तौर पर इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेंगे। यह टूर्नामेंट 15 से 30 तारीख तक जारी रहेगा। नए फॉर्मेट के तहत टीमों के लिए इब्तदा से गलती की गुंजाइश बहुत कम होगी क्योंकि इब्तदाई मरहले के नतायज अगले मरहले पर भी असरअंदाज हो सकते हैं। भारतीय मर्दों की टीम को इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ पोल डी में रखा गया है जबकि भारतीय खवातीन खिलाड़ी पोल डी में चीन, इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमों से मुकाबला करेंगी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट ने मुल्क के मैन्युफैक्चरिंग इको निजाम को मुस्तहकम करने, सरमायाकारी रागिब करने और रोजगार के मौके पैदा करने की खातिर टैक्सेशन बिल को मंजूर कर लिया। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने यकीन दहानी कराई है कि यूपीआई लेन देन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को शवाहिद की हैसियत से कानूनी तौर पर तस्लीम किए जाने से मुतालिक कानून को भी पार्लियामेंट ने मंजूरी दे दी है। 80वें योम आजादी की तकरीबात में युवा शक्ति और विकसित भारत 2047 के लिए नौजवान भारत के ताउन को उजागर किया जाएगा। पहली मरतबा वंदे मातरम लाल किले की फसील से गाया जाएगा। कल हिमाचल प्रदेश और मशरकी राजस्थान में शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि अबनाए हुरमुज तब तक नहीं खुलेगी जब तक वाशिंगटन तेहरान के खिलाफ अपनी बहरी नाकाबंदी जारी रखेगा। और एफआईएच हॉकी आलमी कप 2026 नए फार्मेट के साथ इस हफ्ते के बाद में शुरू होगा जिसमें क्वार्टर फाइनल मुकाबले खत्म कर दिए गए हैं। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारे नशात आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 71 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। नशात प्रोग्राम का अगला नगमा आप तमाम सामिन की नजर फिल्म है बेटी बेटे, आवाज मोहम्मद रफी की, नगमा निगाह शैलिन, मौसीकी शंकर जयकिशन की।

भर किधर गए, चांद पर उतर गए, नैन वाले तेरे न

नहीं देंगे, बिल्कुल नाम शामिल करेंगे जनाब, लेकिन नगमा जो अगला हम आपको सुनाए लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म है हम है राही प्यार के और मौसीकी खयाम की, नगमा लिखा तनवीर नकवी साहब। तो इन नगमों की फरमाइशें शामिल कर लेते हैं, उसके बाद नगमे की बारी है। ये ईमेल मिला है आदर्श नगर मलोट पंजाब से, राज शर्मा मीना शर्मा योगेश शर्मा का, और आप हैं वो दोस्त जो शामिल हो चुके हैं। तो जनाब आगे बढ़ते हैं और कुछ ईमेल हैं जो थोड़े से इधर उधर हो गए, उनको थोड़ा सा तरतीब से लगा लेते हैं। भाटापारा छत्तीसगढ़ से बशकमल डॉक्टर बसंत भ्रगु मोतीलाल यादव हैं। अगला नगमा सुनने के लिए बोरखेड़ा उज्जैन से विनोद मूणत, नेहा जैन और दीपक मूणत, और जब तक गला थोड़ा सा ठीक हो तब तक नगमा सुनिए।

इससे नगमे से महसूस हो रहे हैं छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश और राशि राजेश। और अगला ईमेल किसका है ये भी देख लेते हैं। मेहर अरोड़ा साथ में है, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, पदमपुर श्री गंगानगर से। और अगला ईमेल मौसूल हुआ है साधु छह राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ का। आप है महाराणा प्रताप हाउसिंग सोसाइटी सिडको संभाजी नगर से सुनील सामगर, अंजलि सुनील। और ये फरमाइश ईमेल राजपलेश मामनाथ भंजन यूपी से मिला है, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा का। और इसी नकमे को सुन रहे हैं ओम प्रकाश है, उषा राय, अमित कुमार, कोटवा नारायणपुर, मापट्टी बलिया से, संगीता कंवर, तुषार सिंह और रिंकी शेखावतें, गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से। और आप हैं बड़ाना बटसिंगी महाराष्ट्र से, अमोल मानकर, शोभा तैमानकर, श्लोक कुमार और अहले खाना, राहुल मनवर, सल्ला मनवर और साथ में भी प्रियांशी शाहनगर यवतमाल से। अगला ईमेल मौसूल हुआ है जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना, उमराज और दिव्या भारती का। और आप हैं प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, कंवर कॉलोनी बड़वा, खरगोन एमपी से। और देवेंद्र भटकर, सुशीला भटकर, अंकिता भटकर है मानेवाड़ा रोड नागपुर से। और ये फरमाइश मुंदी चक भागलपुर बिहार से मिली है दिलीप कुमार सोनी की। और इसी नगमे को सुन रहे हैं वो दोस्त जो शामिल हो चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं चंद्रेश को, ये भी ईमेल शामिल हो चुका है पहले। योगेंद्र नायक साथ में है उनके, गीता नायक और निहारिका सुशांत नायक कासगंज यूपी से। अगला ईमेल अलीम रजा सिद्दीकी और साथ में है मुनव्वर हुसैन अंसारी, नईम रजा सिद्दीकी, पश्चिम थोकगंज टंडवारा से। नॉलेज पार्क छत्तीसगढ़ से सुधा कुमारी, अनिता कुमारी और संध्या कुमारी। और विनोद मंडलकर, वीणा मंडलकर के साथ में विविधा रायपुर छत्तीसगढ़ से। और अगला ईमेल सिटी सेंटर खंडवा से मनोज सेन, पूनम सेन, दीपक सेन सोम्या का। और बिलराम गेट कासगंज से एम असलम सैफी, जेबुनिसा बेगम, सद्दाम सोनी। और ये फरमाइश मिली है मुंबई सिटी, मुंबई फिल्म सिटी से मोहम्मद सलीम, निगत परवीन और अहले खाना की। और आप हैं इंदर चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिर अजीम और निशा अजीम, राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग है बठिंडा रोड मंडी डबवाली से। और नगमा भी इस बीच में हो गया है खत्म, लेकिन जनाब एक नगमा और आपको सुनवाते हैं, बहुत ही खूबसूरत नगमा है, मुलजिम फिल्म का नगमा है, मोहम्मद रफी की आवाज में, मौसीकी है रवि की।

ईमेल डॉक्टर सोनम डॉक्टर सना डॉक्टर अदीबा का है और इसी नंबर को सुन रहे हैं। नजफगढ़ जयविहार से शाहरुख फारूक और शबनम शहनाज और नरेंद्र मिर्गे प्रियदर्शनी मिर्गे डॉक्टर प्रियंका कालपांडी साई नगर आरवी महाराष्ट्र से। वडीखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस पिंकी अरोड़ा की फरमाइश भी मुकम्मल हुई और मोहाली पंजाब से गुरप्रीत।

रिक्वेस्ट होगी और पुलिस की फरमाई जनक पुलिस सहारनपुर से मिली है। अगले मिल रिपीटर्स को करती साइड लाइन हीरामणि वर्मा, परसमणि पुष्पेन्द्र मणि वर्मा, दतरंगी भाटा भर छत्तीसगढ़ से अनिल मोहन, उषा मोहन टेलू नायक,

अब सुनिए बीन का जादू फिल्म का नगमा सुमन कल्याणपुर और महेंद्र कपूर का गाया हुआ एस एन त्रिपाठी की मौसीकी सुनना चाहते हैं। वो दोस्त टोवल नवा शहर पंजाब से बेबी वामिका थांडी और प्रियम डॉक्टर प्रियम थांडी डॉक्टर प्रशांत थांडी और अहले खाना और ये फरमाइश मेल बागपत से मिला है यूपी से संजय ढींगे नमन ढींगे अपार ढींगिया का है और आप हैं नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस ना होकर निर्मला ना होकर और विशाल ना होकर उनके कुछ और साथी और अब बारी है अगले ईमेल की। तिलक राणा रोमिन राणा नेपाल पैलेस सागर से हैं और ये फरमाइशी ईमेल उन दोस्तों का जो शामिल हो चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं जनाब एक और ईमेल शामिल कर लेते हैं। सामरा नगर अमरावती महाराष्ट्र ने रेखा संगर और साथ में संजय संगर राधेश्याम शर्मा इंद्र शर्मा सार्थक की फरमाइश हांडीखेड़ा सिरसा से मिली है। स्टेट बैंक केशवर कॉलोनी नंगरली टेरी नजफगढ़ से मैथिली कुमारी लड्डू कुमारी और टुक टुक और उनके कुछ और साथी शंभू दयाल खटक विमला देवी दीपक की फरमाइश है जाखोज से और आप हैं वो दोस्त जो शामिल हो चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं आप सहारनपुर से हैं कुमार हेड़ा गांव से सैयद मसूर शाहीन हसन नाजिया इब्राहिम और उनके अहले खाना और अगला ईमेल भूमि तेलंगाना से मोहम्मद बुरहान उद्दीन का। अजमेर शरीफ राजस्थान से हैं बेगम गुलनाज हाशमी सैयद आलम हाशमी मोहम्मद आलम हाशमी और उनके कुछ और साथी और बद्रा ठाकुर पथरिया से हैं मीनू मरावी और लता मरावी और उनके कुछ और साथी। मेहनगर उमरखेड़ से अभिजीत गोनकर राही सरिता गोनकर और अर्जुन गोनकर डुगू बाबू सिंह धीमान बिलजन कौर धीमान रवनीत की फरमाइश मुख्तसर पंजाब से मिली है और आप हैं रेहान मियां शेख उमर फाजिल शेख मोहम्मद।

चंडीगढ़ जाते थे कुछ और नाम शामिल कर लेते हैं, कनेरा मौला पटियाला से मुकेश भत्ता, नीलम भत्ता और वंश निहारिका। और ये फरमाइशी ईमेल मौसूल है बड़े रैबी वाराणसी चौराहा, बड़े रैबी चौराहा वाराणसी से अरुण कुमार मालवीय तक त्रिभुवन मालवीय और अहले खाना मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान है गांव दुलापुर मुरादाबाद यूपी से। कमल पाठक साथ में हैं उनके सुनील पाठक और दीपिका मल्होत्रा नारकली बाजार चगराओं से आपने फरमाइश की है। और ये फरमाइश मेल मिला है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी और प्रथम सोनी का, धर्मिंद छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार है। और भोपाल का राजस्थान से आपकी फरमाइश हमें मौसूल होती है। और ये फरमाइश मेल मिला है टिम्बर एयरफोर्स चेन्नई से तम्बरम, माफ कीजिएगा, शाहिद अली, इफ्फत फारूकी और बेटे हैं उनकी हिफ्जा अली और शाहरुख नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीस सिंह है हरपुर मटकली बरेली से और रामपुर नालापार बाग छोटे साहब, नालापार बाग छोटे साहब पूरा जो पता है वो कुछ इस तरह से है, नवाबुद्दीन निजामुद्दीन साथ में सादिया और उनके बहुत सारे साथी और सैयद यूनुस, सैयद नुमान, तनवीर मसरत आष्टी जिला चालना से हैं। और ये फरमाइशी ईमेल मुनव्वर लल्ला पीरजादा, नसीम मिर्जा, अरबाज शहबाज की है। और आप हैं गुन्नौर से आदिल कमर, तस्दीक अली और साथ में मुजफ्फर अली और उनके कुछ और साथी और मुकेश शर्मा, कौरव शर्मा गरिमा की फरमाइश है भिलाई छत्तीसगढ़ से, गांधीनगर गुजरात से जी के परमार, ज्योत्सना परमार, हर्ष और उनके कुछ और साथी, डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदुन सिद्दीकी, जिशान अहमद है तीन चरौदा भिलाई छत्तीसगढ़ से। और अगला ईमेल उन दोस्तों का है शेषगढ़ बरेली से, इलियास इदरीसी, नईम इदरीसी और

0: और ये ई मेल है सिद्धेश बनगर यवतमाल से पंजाब राम टेके यशोधर राम टेके शव्या राम टेके। जवाहरनगर उदयपुर से बाबू भाई भारती देवी, दमदम एयरपोर्ट कोलकाता से रेखा बसंत कुमार सिन्हा, अजय कुमार गुप्ता और अविन का तनुश्री। ये थी तमिल निषाद प्रोग्राम की आखिरी पेशकश, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए आज संसद के समक्ष प्रस्तुत मुख्य विधेयकों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं राजनीतिक विश्लेषक अदिति टंडन, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
2: नमस्कार। संसद में आज जिन विधेयकों पर चर्चा हुई, जिन्हें पारित कर दिया गया और जिन्हें आज इंट्रोड्यूस किया गया, हम इस पर चर्चा आज करेंगे। और इन विधेयकों में प्रमुख हैं न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 और बैंकर्स बुक्स साक्ष्य विधेयक 2026। हमारे साथ चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन मौजूद हैं। अदिति, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी के स्टूडियोज में।
3: धन्यवाद।
2: सबसे पहले हम चर्चा करेंगे न्यायाधिकरण सुधार विधेयक यानी ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2026 पर, जिसे आज लोकसभा ने पारित कर दिया। सबसे पहले आप ये समझाएं कि दरअसल इस विधेयक की जरूरत क्यों पड़ी, क्या मौजूदा न्यायाधिकरण व्यवस्था में ऐसी कोई समस्याएं हैं जिन्हें सरकार दूर करना चाहती है?
3: इस विधेयक की सबसे इम्पोर्टेंट जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि एक पुराना लॉ है जो 2021 में पास किया गया था, रिलेटेड लॉ है ट्राइब्यूनल्स रिफॉर्म एक्ट, जिसको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। और उस चैलेंज के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट की कुछ बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस थी। कोर्ट ने यह कहा था कि एग्जीक्यूटिव कंट्रोल इस लॉ के माध्यम से ज्यादा नजर आ रहा है, शॉर्ट टेन्योर्स का मामला है जो चेयरपर्सन है ट्राइब्यूनल्स के, तो अगर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल रहता है तो काम करने का जो इंडिपेंडेंस है ट्राइब्यूनल्स का वो कम होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से एक ऑर्डर पास किया था, उन्होंने कहा था कि सेपरेशन ऑफ पावर्स इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये ट्राइब्यूनल्स क्वाजी जुडिशियल बॉडीज हैं। तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये इच्छा जाहिर की थी कि इस ट्राइब्यूनल रिफॉर्म एक्ट को हटाकर इसको डिसमिस कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और यही हिदायत दी गई थी उस जजमेंट में कि एक नया लॉ लेकर आया जाए, ऐसा लॉ जो इनएफिशिएंसी ट्राइब्यूनल्स की, वजह बहुत सारी हैं उसकी, वजह यह भी है कि वैकेंसीज बहुत रहती हैं, उनको भरने में बहुत वक्त लगता है, दूसरा चेयरपर्सन के टेन्योर्स को लेकर यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती, अलग अलग ट्राइब्यूनल में अलग अलग समय सीमाएं हैं, तीसरा ये है कि एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ज्यादा है। उन सब चीजों के मद्देनजर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ध्यान में रखते हुए अब ये नया बिल लिया है जो पुराने लॉ को रिपील करता है और एक पूरा नया मसौदा तैयार करता है।
2: यही वजह है कि सरकार ने राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग यानी NTCP बनाने का प्रस्ताव किया है।
3: सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जैसा कि आपने कहा, एक नेशनल ट्राइब्यूनल्स कमीशन का गठन किया जाएगा। वो जो कमीशन है वो तय करेगी जो यूनिफॉर्मिटी अपॉइंटमेंट्स में होती है, जो चेयरपर्सन्स हैं, 16 ट्राइब्यूनल्स हैं हमारे देश में, उसके चेयरपर्सन्स और उसके मेंबर्स की समय अवधि की कितनी सीमा होनी चाहिए, अलग अलग जगहों में अलग अलग है। अब इस मसौदे में ये प्रपोज किया गया है कि चेयरपर्सन का जो टर्म है वो 5 साल का होना चाहिए और या फिर वो 70 साल की उम्र तक होने चाहिए, और जो बाकी लोग हैं वो 67 ईयर्स तक होने चाहिए जो मेंबर्स हैं। ये जो नेशनल ट्राइब्यूनल्स कमीशन का गठन किया गया है, अब ये कमीशन चेयरपर्सन को सिलेक्ट करेगा, एक सर्च और सिलेक्शन कमेटी बनेगी जिसमें एक्सपर्ट्स होंगे, और कमीशन को ये भी हक होगा कि वो एक्सपर्ट्स को इंक्लूड करें, एम्पैनल करें इस सर्च और सिलेक्शन कमेटी में। उससे क्या होगा कि एक वाइड रेंजिंग कंसल्टेशन और एक वाइड रेंजिंग प्रोसेस के बाद अच्छे और जो बहुत ही एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को चेयरपर्सन के लिए सिलेक्ट किया जाएगा।
2: और साथ में ये भी चर्चा अक्सर होती रहती है, बल्कि शिकायत होती रहती है कि मामले जो हैं बहुत लंबे समय तक ट्राइब्यूनल्स में भी लंबित रहते हैं, क्या इस विधेयक से न्यायाधिकरणों में मामलों के निपटारे में गति आएगी?
3: इस विधेयक से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होने जा रही है कि एक कमीशन पूरा का पूरा बन जाएगा, तो जो सरकार को वक्त लगता है वैकेंसीज भरने में, चेयरपर्सन अपॉइंट करने में, मेंबर्स बनाने में, वो पूरा का पूरा काम एक डेडिकेटेड कमीशन आगे से करेगी। उससे क्या होगा कि वैकेंसीज भरने में आपको बहुत विलंब नहीं होगा, क्योंकि एक डेडिकेटेड आपने अपैरेटस बना दिया जिसके माध्यम से ये सब चलेगा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज होगी वो ये होगी कि डेफिनेटिव टेन्योर्स होंगे। जैसे सब जगह तय कर दिया गया है कि हर जो ट्राइब्यूनल है उसमें एक स्टैंडर्डाइज टर्म्स ऑफ सर्विस होंगे चेयरपर्सन के भी और मेंबर्स के भी, उससे चेयरपर्सन और मेंबर्स को स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर से साइकोलॉजिकली स्ट्रेंथ मिलती है, चेयरपर्सन को, किसी भी कमीशन को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को। इसके पीछे मंशा ये है। और तीसरी बात जो है कि अकाउंटेबिलिटी का एक स्टैंड अलोन मैकेनिज्म क्रिएट हो गया है, क्योंकि नेशनल ट्राइब्यूनल्स कमीशन ही जितनी भी इंक्वायरीज अभी तक कंप्लेंट्स भी आपको पता है ट्रिब्यूनल्स के खिलाफ बहुत आती हैं, मेंबर्स के खिलाफ आती हैं, फिर वो लिटिगेशन में चला जाता है जिसकी वजह से केसेस लंबित हो जाते हैं, कभी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला आ जाता है। तो इन सब चीजों के निपटारे के लिए भी नेशनल ट्राइब्यूनल्स कमीशन को अधिकृत कर दिया गया है। इससे ये उम्मीद है सरकार को कि न सिर्फ केसेस बहुत जल्दी निपटारे हो जाएंगे, बल्कि क्योंकि एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म क्रिएट कर दिया गया है ट्राइब्यूनल्स की पूरी फंक्शनिंग, स्ट्रीमलाइनिंग, चेयरपर्सन सिलेक्शन से लेकर अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म तक, तो चीजें अपने आप स्ट्रीमलाइन होती चली जाएंगी।
2: बिल्कुल, ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2026 यानी न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 आज लोकसभा से पारित हुआ। और जैसे कि हमने चर्चा की, इस विधेयक से तेज न्याय, स्वतंत्रता और जवाबदेही, इन तीनों के बीच संतुलन स्थापित होगा और जल्दी से जल्दी लोगों को न्याय मिल पाएगा। इसके साथ ही अदिति, खान एवं खनिज यानी माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 ये आज लोकसभा में पेश किया गया। भारत के खनिज संसाधन रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। इस विधेयक के जरिए सरकार खनन क्षेत्र में कौन से बड़े बदलाव लाना चाहती है?
3: ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है और इस बिल की जरूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि हम सब जानते हैं कि माइंस और मिनरल

0: डेवलपमेंट का बहुत सारा जो हक है या राइट्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी हैं। जो माइन रिच मिनरल रिच स्टेट्स हैं उनको अभी तक ये अधिकार रहता है कि वो किसी भी तरीके का टैक्स इम्पोज कर सकें मिनरल डेवलपमेंट पर या यू नो माइनिंग राइट्स पर। उसकी वजह से ऐसा महसूस हुआ है, मतलब लंबे समय से ये एक्सपीरियंस केंद्र सरकार का रहा है कि टैक्स बर्डन जो है इस इंडस्ट्री पर वो बढ़ गया है। टैक्स बर्डन के बढ़ने की वजह से क्या हुआ है कि एक डिसइंसेंटिवाइजेशन हो रही है सेक्टर की, लोग इसमें आने से घबरा रहे हैं, पैसा लगाने से घबरा रहे हैं। इन सब चीजों को ठीक करने के लिए, स्ट्रीमलाइन करने के लिए अब केंद्र सरकार ने ये प्रपोज किया है इस बिल में कि केंद्र सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी, इसका अधिकार लेगी और जो लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी है टैक्स रेजिम्स में मिनरल डेवलपमेंट में वो खत्म हो जाएगी। मतलब कहने का है कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा। आपने अभी कहा कि क्रिटिकल सेक्टर्स के लिए बहुत जरूरी है और बहुत जरूरी है, जैसे हमने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हमने अगर बढ़ावा देना है तो उसके लिए हमें बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत है। हम कितना इम्पोर्ट डिपेंडेंट रह सकते हैं, हमें अपने देश में ही अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है। उसके लिए सरकार को ये लगा है, इसी वजह से ये विधेयक आया है कि थोड़ा सा अधिकार जो इस वक्त टैक्स इम्पोज करने का स्टेट्स के क्षेत्र में वो खुद वो ले लें।
1: तो जैसा आपने बताया कि आज भारत कई महत्वपूर्ण खरीदों के लिए दूसरे देशों से उसे आयात करने पर निर्भर है, तो क्या आपको लगता है कि इस विधेयक के बाद भारत को खनिजों के मामले में आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा ये कदम साबित होगा?
0: देखिए, ये ऐसा लगता है कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कदम साबित होने जा रहा है, क्योंकि आप देख लीजिए जो चार बड़े मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स जिनका जिक्र आजकल स्ट्रेटेजिकली भी होता रहता है, लिथियम हो गया, कोबाल्ट है, ग्रेफाइट है, निकल है, यूरेनियम है
1: जी।
0: हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए बहुत जरूरी है। हमने ग्रीन एनर्जी के इतने बड़े बड़े गोल्स सेट किए हुए हैं, यू नो हम कार्बन एमिशन फ्री होना चाहते हैं, तो ये जरूरी है कि हमारा जो मिनरल डेवलपमेंट का सेक्टर है उसको एक तरीके से एनर्जाइज किया जाए। इस महत्वपूर्ण विधेयक का एक जो बहुत इम्पोर्टेंट फीचर मुझे लगता है वो ये है कि एक माइनिंग लीज के तहत आप बहुत सारे मिनरल्स अब कवर कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि माइनिंग लीज होल्डर्स जो हैं वो एक ही लीज में अलग अलग एडिशनल मिनरल्स को माइन करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सुविधा अभी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में नहीं है
1: जी।
0: हर एक नए मिनरल के लिए आपको एक नया प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। तो मुझे लगता है ये जो ईज ऑफ बिजनेस या ईज ऑफ इंडस्ट्रियल एंगेजमेंट दी है, इससे बढ़ावा मिलेगा मिनरल डेवलपमेंट।
1: और अभी ये जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, एक तरीके से आप कहें कि 6 क्रिटिकल मिनरल्स हैं, इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी नहीं है, क्या इस विधेयक के बाद इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी भी आएगी और निजी क्षेत्र का निवेश भी आएगा?
0: हाँ बिल्कुल, इस विधेयक के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स में ही ये बोल दिया गया है कि इसका जो पर्पस है वो है माइनिंग सेक्टर को ज्यादा एफिशिएंट बनाना, ज्यादा निवेश अट्रैक्ट करना और ज्यादा इक्विप्ड बनाना हमारी कंट्री की बढ़ती हुई क्रिटिकल मिनरल्स की नीड्स के साथ अलाइन करने के लिए। तो जैसा कि आपने कहा कि एक देखिए सरकार का ओवरऑल अप्रोच भी अगर आप देखेंगे तो बहुत जगह ईज ऑफ बिजनेस के लिए बहुत से ऐसे विधेयक लाए गए हैं जिसमें नीडलेस कानून जो हैं उनको या तो हटा दिया गया है या बहुत हद तक डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है या डीरेग्युलेट कर दिया गया। ये जो बिल है ये उसी श्रृंखला में एक बहुत महत्वपूर्ण आगे जाने वाला बिल है और इसमें क्रिटिकल मिनरल माइनिंग के लिए इंसेंटिव भी दिया जा रहा है, जैसे कि हमने जो चार मिनरल्स का जिक्र किया और गोल्ड और सिल्वर उसमें जोड़ दिया जाए। तो गवर्नमेंट ने ये प्रपोज किया है कि जो लीज होल्डर्स हैं उनको कोई भी एडिशनल अमाउंट नहीं देना पड़ेगा अपनी एग्जिस्टिंग लीज में इन मिनरल्स को माइन करने के लिए। कौन से मिनरल्स? लिथियम, ग्रेफाइट, निकल, कोबाल्ट, गोल्ड और सिल्वर, इनके लिए ये स्पेशल इंसेंटिव दिया गया है। ये क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं। तो अब महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने ही देश में क्रिटिकल मिनरल माइनिंग को इंसेंटिवाइज करने जा रहे हैं।
1: आपको क्या लगता है सरकार विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच कैसे संतुलन स्थापित करेगी?
0: इकोलॉजिकल कंजर्वेशन के लिए और रूल्स और रेगुलेशंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, वही एग्जिस्टिंग माध्यम से ही सारे के सारे प्रोजेक्ट्स क्लियर होते हैं। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का एक बहुत रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में है, तो उम्मीद यही रहती है हर नए विधेयक से कि जहां ये डेवलपमेंट को बढ़ावा देगा वहीं हमारी प्रकृति को बहुत हार्म नहीं करेगा।
1: साथ ही एक और बिल है, बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026, हिंदी में कहें तो बैंकर्स बुक्स साक्ष्य विधेयक 2026, ये आज संसद से पारित हो गया, आज राज्यसभा से पारित हुआ, लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी थी। क्या है ये कानून, क्योंकि ये 135 साल पुराना है, 1891 का कानून है, इसे बदलने की जरूरत अब क्यों महसूस की गई, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं।
0: इंडिया पूरे विश्व का 50% डिजिटल ट्रांजैक्शंस अगर पूरे दुनिया में हो रहे हैं तो वो इंडिया में हो रहे हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि अभी जो एग्जिस्टिंग लॉ है बैंकिंग बुक्स को लेकर, उसमें प्रावधान ये है कि लीगल फ्रेमवर्क में सपोज कोई बैंक का मैटर कोर्ट में चला जाए तो इस वक्त के प्रावधानों के हिसाब से सिर्फ मैनुअल डॉक्यूमेंट्स जो बैंकिंग सिस्टम में है वही लीगल डॉक्यूमेंट्स के तौर पर एडमिसिबल हैं कोर्ट ऑफ लॉ में। ये जो बिल है इसको बदलने जा रहा है। हम आपने कहा कि पार्लियामेंट ने पास कर दिया, जब माननीय राष्ट्रपति इसको असेंट दे देंगे तो ये लॉ बन जाएगा। उससे क्या होगा कि वर्चुअल और डिजिटल रिकॉर्ड्स जो हैं, जो डिजी बैंकिंग का हिस्सा है, उनको भी अब लीगल मान्यता मिल जाएगी। इसका ये लिमिटेड पर्पस है।
1: वित्तीय धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड के मामले भी बड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। क्या नया कानून ऐसे मामलों की जांच और अभियोजन को और तेज और प्रभावी बनाने में मदद करेगा?
0: जी बिल्कुल, क्योंकि साइबर फ्रॉड्स आप देख रहे हैं बैंकिंग सिस्टम से सारा कुछ रिलेटेड है और डिजिटल बैंकिंग से ज्यादातर रिलेटेड है। तो इस वजह से ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जितने भी डिजिटल साक्ष्य हैं, जितने भी बैंकिंग सिस्टम में वर्चुअल रिकॉर्ड्स हैं, वो सब लीगल फ्रेमवर्क के तहत आ जाएं, ताकि जो साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं, अभी तो उनको प्रैक्टिकली फ्री रन मिला हुआ है क्योंकि उनको पता है कि मैनुअली डॉक्यूमेंट आएगा कोर्ट में, केस लंबित रहेगा क्योंकि अभी स्ट्रक्चर ही नहीं है, लीगल स्ट्रक्चर ही नहीं है, बैंकिंग सिस्टम के साथ अलाइन नहीं है। तो वो सब जो गैप्स हैं सरकार ने आज इस बिल के माध्यम से भर दिए हैं, और साइबर फ्रॉडस्टर के लिए ये एक नेचुरली एक चैलेंज के रूप में काम करेगा।
1: अगर आम बैंक ग्राहक की दृष्टि से देखें तो क्या इस नए कानून का एक बड़ा व्यवहारिक फायदा उनको मिलने जा रहा है? अगर हाँ तो वो कौन सा फायदा है?
0: सबसे इम्पोर्टेंट फायदा तो ये है कि आपको अपने इंटरनेट या अपने लैपटॉप पे बैठे बैठे अगर आपको कोई सर्टिफिकेशन चाहिए तो वो सर्टिफिकेशन आप इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के माध्यम से कर सकते हैं, और वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वाले जो सर्टिफिकेट्स आप सेल्फ अटेस्ट करते हैं वो भी कोर्ट ऑफ लॉ में मान्य होंगे। अभी आप जानते हैं कि कितने चक्कर काटने पड़ते हैं, कभी नोटरी के पास जाइए, कभी उसको वेरीफाई कराइए, ऑथेंटिकेट कराइए, ये सारा का सारा जो बिजनेस है इसको खत्म करके सब कुछ आप अपने हाथ से इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के माध्यम से पूरा कर सकते हैं।
1: इसमें कहीं कोई एक किसी आम ग्राहक के लिए कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कि उसे डरने की जरूरत है या संभल कर चलने की जरूरत है ताकि कोई फ्रॉड ना हो पाए वित्तीय?
0: नहीं, मुझे लगता है ये तो साइबर फ्रॉड का जो पूरा एक पैटर्न चल रहा है इस वक्त उसको एक तरीके से एड्रेस करेगा, ना कि अदरवाइज, क्योंकि अभी आपको पता है कि लीगल फ्रेमवर्क में डिजिटल और वर्चुअल रिकॉर्ड्स मान्य ही नहीं है। तो अभी तो सारा का सारा साइबर बुलिंग, या आपने सुना है कितनी बार अभी जो डिजिटल अरेस्ट का सारा माध्यम चला है, उससे डील करने की पावर मिलेगी अपना साइबर पुलिस को भी मिलेगी और आम जनता को भी मिलेगी।
1: बिल्कुल, तो हम अपने श्रोताओं को ये बता सकते हैं कि आज संसद ने बैंकर्स बुक्स साक्ष्य विधेयक 2026 जो पारित किया, जो अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ जल्द ही कानून बन जाएगा। अदिति, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे आज संसद के समक्ष प्रस्तुत मुख्य विधेयकों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी राजनीतिक विश्लेषक अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में
3: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है चंद कव्वालिया, फनकार असलम साबरी कव्वाल और हमनवा।
4: रसूल पाक की

0: तकरीबन 4,800 आबादी पर मुश्तमिल एक कम्युनिटी है जो मगरबी बोगोटा से तकरीबन 250 मील की दूरी पर वाकई है। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जल्जला 66 मील की गहराई में आया। यह जल्जला पड़ोसी मुल्क इक्वाडोर में भी महसूस किया गया। मशरकी चीन में डॉल्फिन तूफान के बाइस शदीद बारिश और सैलाब आने की वजह से हजारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। हुकाम ने खबरदार किया कि जमीन से टकराने के बाद तूफान की शिद्दत कम होने के बावजूद खतरात बरकरार हैं। कल सुबह तक फुजियान सूबे में जमीनी और समुद्री इलाकों के खतरात वाले मकामात से तकरीबन 1,68,000 अफराद को मुंतकिल किया जा चुका है। शंघाई में गुज़िश्ता रोज शाम तक खतरे वाले करार दिए गए इलाकों से 2,15,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया था। एफआईएच मर्दों और ख्वातीन के हॉकी आलमी कप 2026 के मुकाबलों में ढांचा जाति तब्दीली की गई है। रिवायती क्वार्टर फाइनल मरहला खत्म कर दिया गया है और दो क्रॉस ओवर पोल्स के जरिए टीमें सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। बेल्जियम और नीदरलैंड मुश्तरक तौर पर इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेंगे। यह टूर्नामेंट 15 से 30 तारीख तक जारी रहेगा। नए फॉर्मेट के तहत टीमों के लिए इब्तदा से गलती की गुंजाइश बहुत कम होगी क्योंकि इब्तदाई मरहले के नतायज अगले मरहले पर भी असरअंदाज हो सकते हैं। भारतीय मर्दों की टीम को इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ पोल डी में रखा गया है, जबकि भारतीय खवातीन खिलाड़ी पोल डी में चीन, इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमों से मुकाबला करेंगी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट ने मुल्क के मैन्युफैक्चरिंग एको निजाम को मुस्तहकम करने, सरमायाकारी रागिब करने और रोजगार के मौके पैदा करने की खातिर टैक्सेशन बिल को मंजूर कर लिया है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने यकीन दहानी कराई है कि यूपीआई लेन देन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 80वीं यौम आजादी की तकरीबात में युवा शक्ति और विकसित भारत 2047 के लिए नौजवान भारत के ताउन को उजागर किया जाएगा। पहली मरतबा वंदे मातरम लाल किले की फसील से गाया जाएगा। बांग्लादेश में भारत के हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी ने वजीर आजम तारिक रहमान से ढाका में मुलाकात की। मुजाकरात के दौरान मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज की गई। मगरबी कोलंबिया में 7.4 शिद्दत का जल्जला आने की वजह से 47 अफराद हलाक और दर्जनों इमारतें मुनहदिम हो गईं। मशरकी चीन में डॉल्फिन तूफान के बाइस शदीद बारिश और सैलाब आने की वजह से लाखों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। और एफआईएच हॉकी आलमी कप 2026 नए फॉर्मेट के साथ इस हफ्ते बाद में शुरू होगा, जिसमें क्वार्टर फाइनल मुकाबले खत्म कर दिए गए हैं। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रीडिश पर आप हमारी नशा सुन रहे हैं। क्लासिकी मौसीकी में लीजिए, सुनिए घासीराम निर्मल का जल तरंग पर बजाया राग भोपाली तोड़ी।

0: कृष्ण गैस में अपने के साथ ही आखिरी शब्द प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: अब आप फैसल हबीब से खबरें सुनिए। पार्लियामेंट ने मुल्क के मैन्युफैक्चरिंग इको निजाम को मुस्तहकम करने, सरमायाकारी रागिब करने और रोजगार के मौके पैदा करने की खातिर टैक्सेशन बिल को मंजूर कर लिया है। वज़ीरे ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने यकीन दहानी कराई है कि यूपीआई लेन देन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 80वीं यौम आज़ादी की तकरीबात में युवा शक्ति और विकसित भारत 2047 के लिए नौजवान भारत के ताउन को उजागर किया जाएगा। पहली मरतबा वंदे मातरम लाल किले की फसील से गाया जाएगा। बांग्लादेश में भारत की हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी ने वज़ीर आज़म तारिक रहमान से ढाका में मुलाकात की। मुज़ाकरात के दौरान मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज की गई। मगरबी कोलम्बिया में 7.4 शिद्दत का सिलसिला आने की वजह से 47 अफराद हलाक और दर्जनों इमारतें मुनहदिम हो गईं। मशरकी चीन में डॉल्फिन तूफान के 22 शदीद बारिश और सैलाब आने की वजह से लाखों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। और FIH हॉकी आलमी कप 2026 नए फॉर्मेट के साथ इस हफ्ते बाद में शुरू होगा, जिसमें क्वार्टर फाइनल मुकाबले खत्म कर दिए गए हैं। अब खबरें तफसील से। टैक्सेशन और दीगर कवानीन तरमीमी बिल 2026 राज्यसभा में गौरखोज के बाद लोकसभा को लौटा दिया गया। लोकसभा इस बिल को पहले ही मंजूर कर चुकी है। इस तरह इस बिल को पार्लियामेंट की मंजूरी मिल चुकी है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने ऐवान बाला में यह बिल पेश किया। बहस का जवाब देते हुए मुतरमा सीतारमन ने कहा कि टैक्सेशन और दीगर कवानीन तरमीमी बिल 2026 का मकसद भारत के मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मुस्तहकम करना, मजीद सरमायाकारी को रागिब करना, रोजगार पैदा करना और मैन्युफैक्चरिंग सरगर्मियों को फरोग देना है। उन्होंने वाजह किया कि यह बिल यूपीआई सार्फीन पर किसी तरह का टैक्स या लेन देन के चार्जेस आयद नहीं करता। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि छोटे कारोबारियों और ग्राहकों को यूपीआई पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट चार्जेस अदा नहीं करने होंगे। पार्लियामेंट की जानिब से बैंकरों की बही खाता शवाहिद बिल 2026 को भी मंजूरी मिल गई है, क्योंकि राज्यसभा ने भी इसे आज मंजूर कर लिया। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने बिल पेश किया, जिसका मकसद मौजूदा बैंकिंग निजाम की जरूरतों को पूरा करने के लिए कानूनी फ्रेमवर्क को हम आहंग करना है। यह बिल बैंकरों के बही खाते और इसे हम असर डिजिटल बैंकिंग तरीकेकार से मुताबिकत पैदा करने के लिए शवाहिद से मुतालिक कानून फराहम करता है। बैंकरों के बही खाता शवाहिद बिल 2026 में इस बात की गुंजाइश मौजूद है कि बैंकरों के इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड को शवाहिद के तौर पर काबिले कबूल और मजाज माना जाएगा और वो कानूनी तौर पर नाफिजुल अमल होंगे। इस बिल पर बहस का जवाब देते हुए वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि यह बिल इस्लाह पर मबनी कदम है, जो मुल्क की तेज रफ्तार पेश कदमी में मदद करेगा। उन्होंने वाज़े किया कि बैंकरों के बही खाता शवाहिद कानून को 1891 में तरतीब दिया गया था, जब बैंकिंग निजाम पूरी तरह से कागज से चलता था। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि आज भारत ने अपनी मईशत को डिजिटल शक्ल देने में काबिल जिक्र तरक्की का मुजाहरा किया है। इस साल 80वीं यौम आजादी की तकरीबात में युवा शक्ति और विकसित भारत की तामीर में नौजवान भारत के ताउन के साथ साथ कौमी गीत वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने को उजागर किया जाएगा। कल नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए दफा के सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने कहा कि तारीखी लाल किले से वजीर आजम नरेन्द्र मोदी तकरीबात की क्यादत करेंगे। वजीर आजम कौमी परचम फहराएंगे और मुल्क से खिताब करेंगे। पहली मरतबा यौम आजादी तकरीबात में लाल किले की फसील से कौमी गीत गाया जाएगा। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर ममलकत सुरेश गोपी ने मुतला किया है कि हुकूमत ने पेट्रोल में 20% से ज्यादा एथेनॉल की आमेजिश से मुतालिक कोई फैसला नहीं किया है। वजीर मसूफ ने राज्यसभा में एक सवाल के तहरीरी जवाब में यह बात कही। जनाब गोपी ने कहा कि मुस्तकबिल में एथेनॉल की आमेजिश बढ़ाने के सिलसिले में कोई भी फैसला सिर्फ तफसीली साइंसी और तकनीकी मुताले और सभी मुतालिका फरीकों के साथ सलाह मशवरे के बाद ही किया जाएगा। یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بنگلہ دیش میں بھارت کے ہائی کمشنر دنیش ترویدی نے وزیراعظم طارق رحمان کے ساتھ اپنی پہلی ملاقات کو نتیجہ خیز قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے صرف سرحدیں ہی نہیں بلکہ خواب بھی مشترکہ ہیں۔ جناب ترویدی نے کل ڈھاکہ میں بنگلہ دیش کے وزیراعظم طارق رحمان اور وزیر داخلہ صلاح الدین احمد کے ساتھ دو طرفہ الگ الگ میٹنگیں کی۔ بھارتی ہائی کمیشن کے مطابق مذاکرات کے دوران مختلف شعبوں میں دو طرفہ شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے جناب ترویدی نے کہا کہ بھارت وزیراعظم نریندر مودی اور بنگلہ دیش کے وزیراعظم رحمان کے درمیان ایک میٹنگ کا خواہش مند ہے۔ کولمبیا کے مغربی علاقوں کے مختلف شہروں میں کل 47 افراد ہلاک اور درجنوں عمارتیں منہدم ہو گئیں۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب جنوبی امریکی ملک میں 7.4 شدت کا ایک طاقتور زلزلہ آیا، جس کے نتیجے میں لوگ ملبے تلے دب گئے اور متعدد افراد زخمی ہوئے۔ اطلاعات کے مطابق زلزلے کے باعث لوگوں کو اپنی گھروں سے نکل کر راجدھانی بوگوٹا تک محفوظ مقامات پر منتقل ہونا پڑا۔ امریکی جیولوجیکل سروے اور کولمبیا کے متعلق ادارے نے بتایا کہ زلزلے کا مرکز سین جوز ڈیل پالمر تھا، جو چوکو خطے میں واقع تقریباً 4,800 آبادی پر مشتمل ایک کمیونٹی ہے، جو مغربی بوگوٹا سے تقریباً 250 میل کی دوری پر واقع ہے۔ امریکی زولوجیکل سروے کے مطابق زلزلہ 66 میل کی گہرائی میں آیا۔ یہ زلزلہ پڑوسی ملک ایکویڈور میں بھی محسوس کیا گیا۔ مشرقی چین میں ڈالفن طوفان کے باعث شدید بارش اور سیلاب آنے کی وجہ سے ہزاروں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ حکام نے خبردار کیا کہ زمین سے ٹکرانے کے بعد طوفان کی شدت کم ہونے کے باوجود خطرات برقرار ہیں۔ کل صبح تک فوجیان صوبے میں زمینی اور سمندری علاقوں کے خطرات والے مقامات سے تقریباً 1,68,000 افراد کو منتقل کیا جا چکا تھا۔ شنگھائی میں گزشتہ روز شام تک خطرے والے قرار دیے گئے علاقوں سے 2,15,000 سے زیادہ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا تھا۔ ایف آئی ایچ مردوں اور خواتین کے ہاکی عالمی کپ 2026 کے مقابلوں میں ڈھانچہ جاتی تبدیلی کی گئی ہے۔ روایتی کوارٹر فائنل مرحلہ ختم کر دیا گیا ہے اور دو کراس اوور پولز کے ذریعے ٹیمیں سیدھے سیمی فائنل میں پہنچیں گی۔ بیلجیم اور نیدرلینڈ مشترکہ طور پر اس ٹورنامنٹ کی میزبانی کریں گے۔ یہ ٹورنامنٹ 15 سے 30 تاریخ تک جاری رہے گا۔ نئے فارمیٹ کے تحت ٹیموں کے لیے ابتدا سے غلطی کی گنجائش بہت کم ہوگی، کیونکہ ابتدائی مرحلے کے نتائج اگلے مرحلے پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ بھارتی مردوں کی ٹیم کو انگلینڈ، پاکستان اور ویلز کے ساتھ پول ڈی میں رکھا گیا ہے، جبکہ بھارتی خواتین کھلاڑی پول ڈی میں چین، انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کی ٹیموں سے مقابلہ کریں گی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ پارلیمنٹ نے ملک کے مینوفیکچرنگ ایکو نظام کو مستحکم کرنے، سرمایہ کاری راغب کرنے اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کی خاطر ٹیکسیشن بل کو منظور کر لیا ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے یقین دہانی کرائی ہے کہ یو پی آئی لین دین پر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا۔ 80ویں یوم آزادی کی تقریبات میں یوا شکتی اور وکست بھارت 2047 کے لیے نوجوان بھارت کے تعاون کو اجاگر کیا جائے گا۔ پہلی مرتبہ وندے ماترم لال قلعے کی فصیل سے گایا جائے گا۔ بنگلہ دیش میں بھارت کے ہائی کمشنر دنیش ترویدی نے وزیراعظم طارق رحمان سے ڈھاکہ میں ملاقات کی۔ مذاکرات کے دوران مختلف شعبوں میں دو طرفہ شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ مغربی کولمبیا میں 7.4 شدت کا زلزلہ آنے کی وجہ سے 47 افراد ہلاک اور درجنوں عمارتیں منہدم ہو گئیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
0: میڈیا میج 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کی اردو سروس۔ شب کا ایک بجا چاہتا ہے ہماری تیسری مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ صبح 9:30 پر آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، شب بخیر، جے ہند۔
2: نمسکار، آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں سر فیروزی۔ संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यह विधेयक पेश किया था। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई पर एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। संसद ने बैंककार बहिसाक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को राज्यसभा ने मंजूरी दे दी है। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यह विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करेगा। इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है। लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य कार्य प्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है।
3: इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। साथ ही न्यायाधिकरणों के प्रशासन और कामकाज में सुधार करना, एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना करना और संबंधित अधिनियमों में परिणामी संशोधन करना भी है।
2: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी दलों के नेताओं से अपील की है कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि शिक्षा अनुसंधान और व्यवहारिक प्रशिक्षण को मजबूत करने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार की कृषि रणनीति के तीन प्रमुख लक्ष्य खाद्य सुरक्षा, पोषण और किसानों की आजीविका हैं। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के छात्रों की छात्रवृत्ति और फेलोशिप के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल से जुड़े प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की शुरूआत करते हुए श्री चौहान ने कहा कि छात्रवृत्ति सीधे और समय पर विद्यार्थियों तक पहुंचनी चाहिए। भारतीय और अमेरिकी नौसेना विस्फोटक आयुध निष्क्रियकरण अभ्यास 2026 कल कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू हुआ। यह अभ्यास 14 अगस्त तक चलेगा। इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं की विशेषज्ञ गोताखोरी और विस्फोटक आयुध निष्क्रियकरण टीमों के बीच अंतर संचालन क्षमता बढ़ाना तथा व्यावसायिक सहयोग को सुदृढ़ करना है। जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान 2026 और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में डोडा जिला प्रशासन ने तिरंगा रैली का आयोजन किया। रैली का मुख्य आकर्षण 1600 मीटर लंबा विशाल तिरंगा था। एफआईएच हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आइए अब सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद ने कराधान और अन्य विधेयक संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यह विधेयक पेश किया था। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेनदेन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई पर एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। संसद ने बैंक कार बहिसाक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को राज्यसभा ने मंजूरी दे दी है। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा कि ये विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा। इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी दलों के नेताओं से अपील की है कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।

0: जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान 2026 और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में डोडा जिला प्रशासन ने तिरंगा रैली का आयोजन किया। रैली का मुख्य आकर्षण 1600 मीटर लंबा विशाल तिरंगा था, जिसे बड़ी संख्या में उत्साहित विद्यार्थियों ने पकड़ रखा था। रिजर्व बैंक ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स 2019-20 सीरीज 9 और 2020-21 सीरीज 5 को समय से पहले भुनाए जाने के मूल्य की घोषणा कर दी है। इंडिया बुलियन एंजल्स एसोसिएशन लिमिटेड के पिछले 3 कारोबारी दिनों में सोने के औसत मूल्य के आधार पर भुनाए जाने की कीमत 14,957 रुपये प्रति यूनिट तय की गई है। दक्षिण अमरीकी देश कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप में 47 लोगों की मौत होने और दर्जनों इमारतें ढहने की खबर है। मलबे में दबने से कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। भूकंप के कारण लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े, यहां तक कि राजधानी बोगोटा में भी लोग घरों से बाहर निकल आए। अमरीकी भूगर्भीय सर्वेक्षण और कोलंबिया की संबंधित एजेंसी ने कहा कि भूकंप का केंद्र बोगोटा से लगभग 250 मील पश्चिम में चोको क्षेत्र के सैन होजे डेल पालमार में था, जहां लगभग 4,800 लोग रहते हैं। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में आज कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। एफआईएच हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हिमाक्षी पंवार। द पार्लियामेंट हैज पास्ड द टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026, with Rajya Sabha returning it to Lok Sabha after discussion yesterday. The Lok Sabha has already passed the bill. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman had moved the bill. The bill seeks to amend the Payment and Settlement Systems Act 2007, the Income Tax Act 2025 and the Finance Act 2026. The legislation will replace the Income Tax Amendment Ordinance 2026, which was promulgated on 5th June this year. Replying to the discussion, the Union Finance Minister said that the objective of the bill is to strengthen India's manufacturing ecosystem, attract further investment, generate employment and promote manufacturing activities. She said the second major reform relates to providing tax exemptions to foreign companies, procuring data services from specified data centers in India and enhancing ease of doing business. The minister clarified that the bill does not impose any tax or transaction charge on UPI users. The parliament also passed the Bankers Books Evidence Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it yesterday. Lok Sabha has already passed the bill. Lok Sabha Speaker Om Birla made a personal appeal to the floor leaders to cooperate in the smooth functioning of the House and participate in the discussion on the key bills. Mr. Birla stated this during the Business Advisory Committee meeting held at Parliament House yesterday. He said the people's issues cannot be left waiting in the corridors and they must be reflected, debated and resolved on the floor of this House. Speaking to reporters at the Parliament premises after the BAC meeting, Union Parliamentary Minister Kiran Rijiju said the government is ready for a detailed discussion in Parliament regarding the recent student protests and related issues. Indian Council of Medical Research is organizing a two-day second edition of SHINE, which is Science, Health and Innovation for Next Gen Explorers, a nationwide school outreach initiative from today. The two-day program will be hosted across 83 locations nationwide, providing school students with an opportunity to engage with students, explore scientific research and experience the world of health and innovation firsthand. The Director General of ICMR, Dr. Rajiv Behl, encouraged them to make the

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। वक्त हो चला है 2:10 और 7 सेकेंड और ये वक्त है कार्यक्रम गीत बहार का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद ने कराधान और अन्य विधेयक संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यह विधेयक पेश किया था। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई पर एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। संसद ने बैंककार बहिसाक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को राज्यसभा ने मंजूरी दे दी है। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा कि ये विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा।
1: इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।
2: परमिट्स ऑथेंटिकेशन थ्रू मैनुअल, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स।
0: लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधि और न्याय मंत्री, न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच ये विधेयक प्रस्तुत किया। श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य कार्य प्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है।
3: इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। साथ ही न्यायाधिकरणों के प्रशासन और कामकाज में सुधार करना, एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना करना और संबंधित अधिनियमों में परिणामी संशोधन करना भी है।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी दलों के नेताओं से अपील की है कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने और चर्चा में अपने विषय बदलने का आरोप लगाया।

है। पार्टी के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में कहा कि श्री गांधी का उद्देश्य चर्चा न करना और अराजकता फैलाना है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। विस्फोटक आयुष निष्क्रियकरण अभ्यास 2026 कल कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू हुआ। यह अभ्यास 14 अगस्त तक चलेगा। इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं की विशेषज्ञ गोताखोरी और विस्फोटक आयुध निष्क्रियकरण टीमों के बीच अंतर संचालन क्षमता बढ़ाना तथा व्यावसायिक सहयोग को सुदृढ़ करना है। जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान 2026 और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में डोडा जिला प्रशासन ने तिरंगा रैली का आयोजन किया। रैली का मुख्य आकर्षण 1600 मीटर लंबा विशाल तिरंगा था। एफआईएच हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होगा। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। समय हुआ है रात्रि के 3:10 और ये समय है आपके मनपसंद कार्यक्रम गजलों और गीतों का, जिसमें आज आपके साथ मैं हूं मनोज। श्रोताओं, ये सुनते हैं सबसे पहले ये गजल पंकज उधास साहब की मधुर आवाज में।

श्रोताओं, ये प्यारी सी गजल अभी आपने सुनी पंकज उधास साहब की आवाज में। आई सुनते हैं अगली गजल पंकज उधास साहब की ही आवाज में।

श्रोताओं, गजलों की दुनिया में जगजीत सिंह की पत्नी चित्रा सिंह का भी एक अलग ही नाम है। आइए सुनते हैं ये गजल चित्रा सिंह की मधुर आवाज में।

0: श्रोताओं, गजलों और गीतों के इस कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं ये अंतिम गजल भूपेन हजारिका साहब की आवाज में।
1: भूपेन दा का परिचय कराना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इस एक शख्सियत में, इस एक पर्सनैलिटी में बहुत सी शख्सियतें हैं। वो संगीतकार भी हैं, गायक भी हैं और शायर भी हैं। ये सारे गीत जिनका मैं हिंदी में परिचय कराने की कोशिश कर रहा हूं, ओरिजिनली उन्होंने असमिया भाषा में लिखे थे। इनके बंगला अनुवाद भी वो गा चुके हैं और अब ये हिंदी अनुवाद में।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार।
0: आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। श्रोताओं, सुबह के 4 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।
3: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

0: अभी आप पान सोलह बी पौनमल द्वारा प्रस्तुत श्री गुरुवायूर पुरैशा सुप्रभातम सुन रहे थे। इसके साथ ही भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। सुबह के 4:20 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 11 अगस्त सन 2026। सुबह के 4:53 और 55 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से थोड़ी देर में सुबह 5 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 5:05 पर आप अंग्रेजी में समाचार सुन सकते हैं। सुबह 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। आओ योग करें कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे योग, भ्रामरी प्राणायाम और भुजंगासन। 5:20 पर आप सुनेंगे देशभक्ति गीत और 5:30 पर समय होगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी का। सुबह ठीक 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार। सुबह 6:10 पर आप सुन सकते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। 6:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चिंतन और 6:45 पर समय होगा रामचरितमानस का। रामचरितमानस में आज आप सुनेंगे अयोध्या कांड का भाग 14। 6:55 पर आप सुन सकते हैं संस्कृत में समाचार। सुबह 7 बजे समय होगा हिंदी समाचारों का और 7:05 पर अंग्रेजी समाचारों का। सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संगीतिका। 7:30 का समय होगा कार्यक्रम गीतों भरी का और 8 बजे आप सुन सकेंगे हिंदी समाचार। 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज अंग्रेजी में समाचार और 8:30 पर आप उर्दू समाचार सुन सकते हैं। सुबह 8:45 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा।

मिट्टी दी महक सुबह 10 बजे आप सुनेंगे हिंदी समाचार और 10:05 पर अंग्रेजी समाचार। सुबह 10:10 का समय होगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। श्रोताओं, सुबह के 5 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।

बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथमा भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुरते अमरदास। राम दस हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद न। सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरे आए घर नाम निधि आवे ताए।

ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ।

महाराज आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास उल चौका मुआफ करनी सच्चे पातशाह जीओ जिना जिना गुरमुखा प्रेमिया वल्लों कड़ा प्रसाद भेटा।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।